मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 जून सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में 5:57 हो चुके हैं। आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। अब आप दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
1: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ. बिनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई

करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

खुशी को पाने का रास्ता है प्रभु का चिंतन। हे प्रभु, मैं आपसे सुख शांति की कामना करती हूँ, आप मेरे कष्टों को दूर कीजिए।

जिस प्रकार एक धूप जला देने से उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, उसी प्रकार अगर हम प्रभु का ध्यान करते हैं तो उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा सदैव हम पर बनी रहती है।

0: अभिया पंडित गोपाल शर्मा, अनूप जलोटा, उमाकांत रमाकांत गुंडेचा और पंडित जसराज के स्वर में ये भक्ति रचनाएं सुन रहे थे। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब समाप्त होता है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है विचार विंदु कार्यक्रम। आइए सुनते हैं CF एंड्रूस के विचार।
4: अपने परम प्रिय चार्ल्स फ्रियर एंड्रूस के संबंध में महात्मा गांधी कहा करते थे, अगर मेरे पास समय हो तो मैं जीवन भर एंड्रूज के गुणों का गान करता रहूं। मेरा ये विश्वास है कि भारत में CF एंड्रूज से अधिक सत्यवादी, उनसे अधिक विनीत और उनसे अधिक निष्ठावान देश सेवक दूसरा और कोई नहीं है। गांधी जी की कसौटी पर खरा उतरना किसी के लिए भी सरल नहीं था, फिर एक विदेशी के लिए तो ये और भी कठिन था। एंड्रूज जो भी सेवा कार्य करते थे किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, केवल स्वांतः सुखाय किया करते थे। शांति निकेतन के अपने प्रारंभिक दिनों में वे आश्रम के अनुशासन में अपने आप को पूरी तरह ढालने के लिए सबके जूठे बर्तन साफ करने में भी संकोच न करते। सेवा का तुच्छ से तुच्छ कार्य भी वे सहर्ष करते रहते थे। ये विचित्र विडंबना है कि जहाँ एक ओर लोग उनके प्रति अपूर्व श्रद्धा रखते थे, वहीं दूसरी ओर कोई दबी जबान कहता कि वे खद्दरधारी ब्रिटिश खुफिया हैं, तो कोई कहता कि उनका भारत प्रेम दिखावटी है। ये सब सुनकर उनका भावुक मन बहुत आहत होता, फिर भी वे धैर्यपूर्वक अपनी अग्नि परीक्षा देते रहे, क्योंकि उनका विश्वास था कि घृणा का प्रत्याख्यान नहीं होता, प्रेम ही इसे मिटा सकता है, वही चिरंतन सत्य है। अपने विरोधियों और शत्रुओं से प्रेम करो, वे जो तुम्हें अभिशाप देते हैं उन्हें शुभकामनाएं दो। एक बार शांति निकेतन में उनकी भेंट एक ईसाई प्रोफेसर से हुई, जो ये अच्छी तरह जानते थे कि दीनबंधु एंड्रूज एक अत्यंत आस्थावान ईसाई पादरी हैं। बात बात में उनके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए प्रोफेसर बोले, यहाँ कोई गिरजाघर तो नहीं है, अतः आपको रविवार की साप्ताहिक उपासना न कर पाने के कारण बहुत दुख होता होगा। एंड्रूज ने कक्षा के लिए पास आते अपने विद्यार्थियों की ओर स्नेहपूर्वक देखते हुए कहा, प्रिय बंधु।

0: दैनिक कहो या साप्ताहिक, मेरी उपासना यही है। वे कहा करते थे, कर्म ही सत्य है, मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही उसे काटना पड़ता है। श्रमिकों और कृषकों का उत्पीड़न रोकने का प्रयास करने के अतिरिक्त जिन सामाजिक कुरीतियों के विरोध में वे निरंतर संघर्षरत रहे, वे थीं जातीय भेदभाव और किसी भी प्रकार की हिंसा। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी शर्तबंद कुली प्रबंध की समाप्ति। जब दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का संग्राम चल रहा था, तब दीनबंधु एंड्रयूज़ अपनी जीवन भर की कमाई के 300 पाउंड गोखले जी को लोकहित के लिए दान में देकर दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर बहुत काम किया। वे फिजी गए, ऑस्ट्रेलिया गए, पूर्वी अफ्रीका गए, ब्रिटिश गायना गए। गरज ये कि जहां जहां भारतीयों पर संकट पड़ा, वहां वहां जाकर वे समस्याओं को सुलझाने में सहायता प्रदान करते रहे। एक बार जब वे पूर्वी अफ्रीका में युगांडा रेलवे द्वारा यात्रा कर रहे थे, वहां के कुछ गोरे एक स्टेशन पर उनके डिब्बे में घुसकर ये कहते हुए कि क्या तुम ही वो गोरे आदमी हो जो हम गोरों के खिलाफ लिखते रहते हो, उनकी दाढ़ी नोचने लगे और चलती ट्रेन में उन्हें बाहर की ओर धक्का देने लगे। उन्होंने लपक कर खिड़की को अगर पकड़ न लिया होता तो जान से ही हाथ धो बैठते। इस घटना का वृत्तांत जब अखबारों में छपा, तब ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह प्रश्न पूछा गया कि श्री एंड्रयूज़ को इस तरह अपमानित करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है। इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया कि श्री एंड्रयूज़ ने ये इच्छा प्रकट की है कि जिन लोगों ने उनके प्रति ये क्रूर व्यवहार किया है उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जाए, क्योंकि उन्होंने अपराधियों को क्षमा कर दिया है। छोटी छोटी बातों पर जब वे लोगों को लड़ते झगड़ते और हिंसा पर उतारू देखते, तो हमेशा यही कहते, मैं ये निवेदन करूंगा कि आप प्रतिहिंसा के लिए नहीं वरन क्षमादान के लिए तत्पर रहें, घृणा के लंबी रात में देर तक ठहरने के लिए नहीं बल्कि ईश्वर प्रेम के तेजस्वी सूर्य प्रकाश में आने के लिए सामने आएं।
1: अभी आप सुन रहे थे सीएफ एंड्रयूज़ के विचार। विचार बिंदु कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कृषि जगत कार्यक्रम। आइए सुनते हैं जैविक उर्वरकों के प्रयोग में ध्यान देने योग्य बातें। इस विषय पर डॉक्टर अजय कुमार से अरविंद कुमार की बातचीत।

0: किसान भैया, खेती किसानी अपन परंपरा रही है, जीवन पद्धति है और भैया जिले का आधार भी है। हम कहें कि जो पुरान परंपरा है, समय बदला, युग बदला, तो ओकरे साथे साथे खेती किसानी का पद्धति भी बदली भैया। अब नया नया कृषि यंत्र आ गए, नया नया बीज आ गए बाटे और नई पद्धति के साथ प्रगतिशील खेती किसानी होने लगी। अंधाधुंध रासायनिक खाद का प्रयोग भी शुरू हो गए बाटे, लेकिन एक सीमा के बाद रासायनिक खाद का प्रयोग अपने माटी का संरचना बिगाड़ देते। हम कहें कि माटी का संरचना बनी रहे, एकरे खातिर जैविक उर्वरक का अपने खेती किसानी में प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण चीज बाटे। तो जैविक उर्वरक का अपने खेती किसानी में प्रयोग में कौन कौन बात है जोने की ध्यान दिया जाए, जोने से कि हमारे सभी का खेती बहुत बढ़िया हो, एकर जानकारी देवे के खातिर आज मृदा के बहुत जानकार भैया डॉक्टर अजय कुमार जी आए बाटे। आपका भैया अपने स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम किसान भाई आपसे ही जानना चाहिए कि ये जैव उर्वरक या जीवाणु खाद या जीवांश खाद जोने के हम आप सभी बतावा जाता है, ये का है, एकरे बारे में बताओ भैया।
1: उपजाऊपन के लिए भूमि में कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का होना जरूरी है, परंतु पौधों

0: की खुराक बनने के लिए इन पदार्थों को जैविक क्रियाओं से गुजरना पड़ता है। ये जैविक क्रियाएं निर्भर करती हैं मिट्टी में उपलब्ध जीवाणुओं पर। ये जीवाणु वायुमंडल से भी नाइट्रोजन लेकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार जीवाणु कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्वों को, चाहे वे भूमि में हों अथवा विभिन्न खादों में, अपनी प्रतिक्रियाएं द्वारा गला सड़ाकर ही पौधों को के प्रयोग के योग्य बनाते हैं। भूमि का अम्ली या क्षारी होना भी जीवाणुओं और अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करता है। ये जीवाणु कृत्रिम रूप से तैयार किए गए विभिन्न प्रकार के जीवाणु खाद द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। भूमि में सूक्ष्म जीवों की सम्मिलित सक्रियता के लिए जो दशाएं अनुकूल होती है, उनमें जीवाश पदार्थों की उपस्थिति, नमी, वायु संचार, बफरिंग अर्थात निरंतर उदासीन के आसपास पीएच मान।
1: जी, एक चीज़ डॉक्टर अजय कुमार जी, आप चूंकि मृदा वैज्ञानिक हैं, माटी का बहुत जानकार मने हैं, हम किसान भाई आपसे ही जानना चाहिए कहाँ से कि बहुत वैज्ञानिक भाषा में तो इनके जीवांश खाद, जीवाणु खाद या जैविक उर्वरक बोला जाता है। अपने खेती किसानी से जे भी किसान भाई लगा हैं, खेती किसानी कह रहा बाटें, अधिकांश अपने खेती किसानी करे वाले किसान भाई आज भी थोड़ा कम पढ़ा लिखा बाटें, तो हमारे सभी के भाषा में आपसे ये सवाल है कि ये जैव उर्वरक जने के आप कहा जाता है या जीवाणु खाद ही का है, ये भैया बतावें।
0: प्राकृतिक रूप से मिट्टी में कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में स्थिर फास्फोरस को उपलब्ध अवस्था में बदल देते हैं। जीवाणु खाद ऐसे ही जीवाणुओं का उत्पाद है जो पौधों को नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाता है। जीवाणु खाद इस प्रकार है, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने वाले ये दो प्रकार के होते हैं
1: जी,
0: एक सहजीवी होता है और एक असहजीवी होता
1: भैया
0: है।
1: भैया इस सहजीवी और असहजीवी का होता है के बारे में तन खुल के बता दें।
0: सहजीवी इस समूह के जीवाणु पौधों की जड़ों में गांठे बनाकर रहते हैं। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेकर गांठों में स्थिर कर पौधों को उपलब्ध करते हैं तथा बदले में पौधों से भोजन एवं जल लेते हैं। इस प्रकार दोनों एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं।
1: जी जी,
0: जैसे राइजोबियम सहजीवी जीवाणुओं का समूह है जो दाल वाली फसलों अर्थात दलहन फसलों की जड़ों या तनों की गांठों में पाया जाता है। असहजीवी इस समूह के जीवाणु विविध पोषी होते हैं तथा भूमि एवं पौधों की जड़ों की सतह पर स्वतंत्र रूप से रहते हैं। कुछ ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करते हैं। ये जीवाणु पौधों की जड़ों से निकले हुए पदार्थ जैसे शर्करा, अमीनो अम्ल और विटामिन आदि को ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग में लेते हैं
1: जी।
0: इसमें पाए जाने वाले जीवाणु खाद एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम तथा नीलहरित शैवाल हैं। इसके अलावा फास्फोरस घोलक फास्फेटिका, जिसे पीएसबी कल्चर भी कहते हैं
1: जी। ये तो भैया आप बताएं, एक चीज़ डॉक्टर अजय कुमार जी, बात बतकही में आप ये बताएं कि राइजोबियम का प्रयोग जैसे दलहन के फसल में ही होता है, तो क्या दलहन के अलावा जो तिलहन या अन्य फसल हैं उनमें भी राइजोबियम का प्रयोग होता है?
0: ये दलहनी फसलों की जड़ों में गांठों बनाने वाली सहजीवी बैक्टीरिया है
1: जी,
0: जो वातावरण से सीधे नाइट्रोजन स्थिर करते हैं, बदले में पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। ये नुकसान नहीं पहुँचाते बल्कि 15 से 20% तक उपज बढ़ाते हैं तथा भूमि में नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। राइजोबियम की विभिन्न प्रजातियां अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग प्रयोग की जाती हैं
1: जी,
0: अर्थात हर एक दलहनी फसल के लिए विशेष होती है। इसके अलावा भूमि में जो नाइट्रोजन को स्थिर करती है वो अगली फसल के लिए लाभ मिलता है। राइजोबियम जो है वो दलहन के अलावा तिलहन और अन्य फसलों में भी प्रयोग किया जाता है
1: जी।
0: दलहन में जैसे मूंग, उड़द, अरहर, चना, मटर, मसूर, इन सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। तिलहन में मूंगफली है, सोयाबीन है, इसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य में जैसे रिचका है, बरसीम है और सभी प्रकार की बीन्स जो हैं उसमें भी हम राइजोबियम कल्चर का प्रयोग कर सकते हैं।
1: कहे का मतलब ये भैया कि दलहन के साथ साथ तिलहन और अन्य फसलन में भी राइजोबियम का प्रयोग हमारे सभी किया जाता है या किया जा सकता है। एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण अब ये आ जाते भैया, हम सभी के जो उनकी परंपरागत खेती किसानी करे वाला किसान है भैया, कि ये जाना जाए कि आज के युग में जो आप बताए हैं कि राइजोबियम कल्चर, तो राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करते समय कौन कौन बात का ध्यान देवे के चाहिए जौने से कि हमारे सभी का फसल बहुत बढ़िया हो, एक बारे में बताऊँ भैया।
0: अम्ली या क्षारी मिट्टियों में राइजोबियम कल्चर का प्रभाव कम रहता है
1: जी।
0: ऐसी दशा में बीजों पर कल्चर उपचारित करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट की परत चढ़ा देने से मिट्टी का

0: या क्षारीयता का जीवाणुओं पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है।
1: जी
0: इसके अलावा एजोटोबैक्टर है जो जिसको हम धान्य फसलों में प्रयोग करते
1: ये
0: हैं।
1: क्या है भैया, एजोटोबैक्टर जो नाम बताएं, एक ही बताओ भैया ये क्या होते हैं?
0: एजोबैक्टर जीवाणु मृदा में स्वतंत्र रूप से रहकर, जैसे मैंने बताया था कि ये असहजीवी हैं, स्वतंत्र रूप से रहकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। साथ
1: जी
0: ही जिब्रेलिनेसिस, साइटोकाइनेसिस, इंडोल एसिटिक एसिड तथा एंटीबायोटिक भी उत्पन्न करते हैं,
1: अच्छा
0: जो
1: भैया
0: पौधों की वृद्धि में सहायक होने के साथ रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ाते हैं।
1: जी
0: पौधों को नत्रजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। इसके प्रयोग से भी 10 से 15% उपज बढ़ती है
1: अच्छा
0: तथा
1: भैया
0: 20 से 30 किलोग्राम जो है नत्रजन प्रति हेक्टेयर जमा करता है ये वायुमंडल से लेकर के। एजोटोबैक्टर विभिन्न फसलों जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, गन्ना, सरसों, कपास, सब्जियों, मसालों, तिलहन फल एवं फूल में और
1: जी
0: वानिकी
1: जी
0: पौधों में भी प्रयोग किया जाता है।
1: जी इसके अलावा डॉक्टर साहब आप तो कई चीज़ों का नाम बताएं, आप मृदा वैज्ञानिक हैं, आपसे ये जानना चाहिए जैसे कुछ चीज़ आप बताएं तो मैं एक जो आप बताएं एजोस्पाइरिजम ये क्या होते भैया और एकर प्रयोग कैसे होते हैं बताओ।
0: एजोस्पाइरिलम ये भी नत्रजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया है जो धान, गन्ना, रागी, ज्वार, बाजरा जो फसलों आदि में 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नत्रजन जमा कर उपज को भी बढ़ाता
1: जी
0: है।
1: हम कह रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार जी आप आयन और बहुत बढ़िया जानकारी दें, जानकारी देवे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे जैविक उर्वरकों के प्रयोग में ध्यान देने योग्य बातें विषय पर डॉक्टर अजय कुमार से अरविंद कुमार की बातचीत। कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आइए सुनते हैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह की वार्ता, हीट स्ट्रोक का होम्योपैथिक उपचार।
1: आज का विषय धूप आघात, सन स्ट्रोक। सन स्ट्रोक दो शब्दों सन एवं स्ट्रोक से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ सूर्य से आघात। इसे लू भी कहा जाता है। लू लगने से मात्र मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी प्रभावित होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग धूप आघात की मनुष्य पशु पक्षियों पर संभावना और बढ़ा देती है। लू क्यों लगती है? मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः 95 डिग्री फारेनहाइट से 98.6 फारेनहाइट के मध्य रहता है। शरीर के ताप को हाइपोथैलेमिक नामक ग्रंथि नियंत्रित करती है। बाहरी वातावरण का तापमान शरीर के सामान्य तापमान से अत्यधिक होने की स्थिति में अधिक ताप शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिसे हाइपोथैलेमस कुछ हद तक तो पसीना शरीर से निकालकर शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। परंतु जब शरीर लगातार उच्च तापमान वाले वातावरण के संपर्क में अधिक समय तक बना रहता है तो हाइपोथैलेमस की सक्रियता निम्न हो जाती है, जिससे शरीर से ताप बाहर नहीं आ पाता। लू लगना अर्थात सनस्ट्रोक की स्थिति बन जाती है। इस स्थिति को हाई ग्रेड सेंस भी कहते हैं। धूप आघात के लक्षण, स्वेटिंग, पसीना शरीर से नहीं निकलता, शरीर का ताप बढ़ता जाता है, हाथ पैर के तलवे अत्यधिक गर्म हो जाते हैं एवं जलन बनी रहती है, रक्तचाप की कमी होने लगती है, सर दर्द के साथ शरीर टूटना, आंख लाल हो जाना, चेहरा तमतमाने लगना, चक्कर आना इसके सामान्य लक्षण है। धूप आघात की उच्च स्थिति में दस्ताना उल्टी होने से शरीर में जल की कमी भी हो जाती है और रोगी बार बार बेहोशी में चला जाता है। लू लगने की अवस्था है। सामान्य अवस्था में रोगी के शरीर हल्का पसीना स्रावित होने लगता है, थकावट एवं कमजोरी महसूस होने लगती है, भूख की कमी हो जाती है, इससे नाड़ी की गति भी तीव्र हो जाती है। इस अवस्था में थोड़ा आराम एवं प्राथमिक उपचार से रोग मुक्त हो जाता है। भयंकर सरदर्द, त्वचा के रूखापन, सांस लेने में तकलीफ, चेहरा लाल हो जाना यह गंभीर अवस्था की श्रेणी में आता है। अति गंभीर अवस्था में रोगी के शरीर का तापमान 105 डिग्री या 106 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच जाता है। रक्तचाप के साथ ही

0: शरीर की शिथिलता पड़ जाती है, शरीर नीला पड़ने लगता है और उल्टी दस्त चालू हो जाता है। यह लू लगने की अंतिम अवस्था है जिसमें रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। लू लगने का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लू लगने पर रोगी का हृदय, किडनी, लीवर अत्यधिक प्रभावित होता है। रोगी के रक्त में मौजूद लाल रक्त कणिकाएं टूटने लगती हैं। इसे हाइपरथैलेमिया भी कहते हैं। साथ ही रक्त में पोटेशियम स्तर भी बढ़ जाता है। इस स्थिति को हाइपरकलेमिया कहते हैं। प्राथमिक उपचार सुरक्षा ही बचाव है। यह नियम इस रोग पर भी लागू होता है। चूंकि यह रोग धूप के प्रभाव से गर्म हवाओं के संपर्क में आने के बाद ही होता है, इसलिए जहां तक संभव हो धूप एवं गर्म हवाओं के संपर्क से बचें। लेकिन इस भाग दौड़ की जिंदगी में ऐसा संभव नहीं है, इसलिए धूप के चश्मे लगाना, सर ढक के रहना, सूती कपड़ा पहनकर चलना, साथ ही तरल पेय पदार्थ जैसे नारियल पानी, नींबू पानी, जलजीरा, पुदीना जल, बेल का शरबत, सत्तू का एवं आम का पना का सेवन लाभप्रद होगा। समय समय पर नमक की कमी को पूरा करने के लिए ORS, इलेक्ट्रॉल, ग्लूकोज अतिरिक्त पेय पदार्थ के रूप में लेना चाहिए। तले भुने चीज, बासी फास्ट फूड से पूर्णतः परहेज करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इसके बावजूद भी लू के लक्षण उभर रहे हैं तो बिना विलंब किए पंजीकृत चिकित्सक की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। होम्योपैथिक में इस रोग के लिए ग्लोनाइन, जेलसीमियम, नेट्राम्योर, कल्केरिया फॉस, काली सल्फ, रस्टॉक्स, आर्सेनिक, बेलाडोना धूप आघात के लिए प्रमुख होम्योपैथिक औषधि है। इसके साथ लक्षणों के आधार पर भी होम्योपैथिक दवा दी जाती है। प्रिवेंटिव के रूप में बेलाडोना 30 का इस्तेमाल करना अत्यधिक कारगर है।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह की वार्ता, हीट स्ट्रोक का होम्योपैथिक उपचार। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में आयोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करने पर आधारित आयोजन का सजीव प्रसारण आप सुन सकेंगे दिन में 3:55 पर। सुबह सुनिएगा जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7 बजे सुनिएगा श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। 7:10 पर फिल्मों से भजन प्रसारित किया जाएगा। शास्त्र संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर पंडित गणेश प्रसाद मिश्र का ख्याल गायन, दिन में 12:15 पर पंडित गोपाल दास का क्लेरोनेट वादन और रात 10:30 पर पंडित नारायण राव व्यास का गायन प्रसारित किया जाएगा।

सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर आदित्य राय से भजन सुनिएगा। सुबह 10:05 पर लोक माधुरी कार्यक्रम में राधेश्याम कुशवाहा और रंजना त्रिपाठी लोकगीत की कलाकार होंगी। और 10:30 पर लोकगीत में आप सुनेंगे उदय राज सिंह, मोहिनी श्रीवास्तव और प्रशांत मिश्रा के स्वर में लोकगीत। सुबह 11:00 सुनिएगा कार्यक्रम एक ही कलाकार। 11:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

दिन में 12:30 पर हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने का प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। दोपहर 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी फरहानूर से गीता सिंह की बातचीत, खाना पकाने की।

शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे सिया राम मिश्र से रामायण पाठ। शाम 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में डॉक्टर राम जी मिश्र से काव्य पाठ सुनिएगा। सबरस कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:30 पर और रात 9:30 पर सुनिएगा गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां। ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

काक भुशुंडी ने पक्षीराज गरुड़ को बताया, जैसे गुरु अथवा वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होता, वैसे ही भक्ति के बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। संतोष की प्राप्ति से कामनाओं से मुक्ति मिलती है। जब तक कामनाएं जगती रहती हैं, तब तक स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता।

अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से हो रहा था। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्मों से भजन। आइए सुनते हैं नीलकमल फिल्म का ये भजन। आशा भोसले की आवाज़ में संगीत दिया है रवि ने और रचना है साहिल लुधियानवी की।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्मों से भजन। अभी आपने सुना नीलकमल फिल्म का ये भजन, और लीजिए अब सुनिए अलका याग्निक की आवाज़ में ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मों से भजन, और अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से। माफ कीजिएगा, हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में चल रहे कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 15 छात्रों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर घटना की जांच शुरू। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर जताया दुख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया घटनास्थल का जायजा। घायलों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद और अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, नवाचार का नया केंद्र बना है फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग। और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन को दी मंजूरी। और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर बाद एक बहुमंजिला इमारत में चल रहे कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 15 छात्रों की मृत्यु हो गई, जबकि अन्य कई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। इस हादसे की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ दौरा छोड़कर लखनऊ आए और सीधे घटनास्थल पर जाकर स्थिति की जानकारी ली और बाद में केजीएमयू जाकर घायलों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले पर पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। इस इमारत में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था जिसमें कोचिंग सेंटर, गेम जोन और शोरूम थे। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि राज्य के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी और आग लगने के कारणों का पता लगाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी देर रात लखनऊ पहुंचे। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद उन्होंने केजीएमयू जाकर घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। रक्षा मंत्री ने घटना को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मामले की जांच कराकर जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने घटना की जांच के लिए 2 सदस्यीय जांच दल बनाया है। वहीं सरकार ने लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अफसरों को निलंबित कर दिया है। मामले को लेकर पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र प्रताप शुक्ला, तुषार कृष्ण जायसवाल और सुरेश कुमार

0: गिरफ्तार कर लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती सहित कई मंत्रियों ने लखनऊ के इस अग्निकांड को दुखद बताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल फिरोजाबाद में 658 करोड़ रुपए से अधिक की 81 और अलीगढ़ में 462 करोड़ रुपए की 85 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को चाबी और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, चेक तथा उपकरण वितरित किए। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद के उद्यमियों और श्रमिकों की सराहना करते हुए कहा कि फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग नवाचार का एक नया केंद्र बना है, इसने चीन को पछाड़ दिया है।
1: सनातन धर्म के अंदर बात होती है, हर सनातन धर्मावलंबी फिरोजाबाद की चूड़ियों की ओर देखता है और सुहाग की इस नगरी को आज यहाँ का कारीगर, यहाँ का उद्यमी एक नई ऊंचाई दे रहा है। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूँ, ये डबल इंजन की सरकार उनके साथ मिलकर के कार्य करेगी, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहन उपलब्ध करवाएगी।
0: प्रादेशिक समाचार अब आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आज के समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 हस्तियों समेत 56 विभूतियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: उत्तर प्रदेश की जिन हस्तियों को पद्मश्री मिलेगा उनमें कला के क्षेत्र में अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव, शिक्षा के क्षेत्र में मंगला कपूर के नाम शामिल हैं, जबकि कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। इससे पहले पिछले महीने 25 मई को श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
0: केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने में वस्त्र मंत्रालय बड़ा योगदान निभाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कल गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान निट्रा के 52वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में संस्थान की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीट भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज भारत प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ ही अन्य देशों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार अनुसंधान पर जोर देने के साथ ही स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन दे रही है, जिसमें निट्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
3: 2.5 लाख स्टार्टअप हो गए, हर सेक्टर में है, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें स्टार्टअप नहीं। कभी पंजाब का पराली लोगों के लिए एक समस्या थी, चाहे CBG प्लांट लगे चाहे निट्रा उसे फाइबर में परिवर्तित कर दे पराली।
0: पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी दे दी है। मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि इस नई ट्रेन के चल जाने से पीलीभीत के साथ लखीमपुर खीरी, सीतापुर सहित संपूर्ण तराई क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि ये ट्रेन बदायूं, बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत, पूरनपुर, मैलानी, गोला, गोकर्णनाथ, लखीमपुर, सीतापुर, सिधौली, मोहिबुल्लापुर होते हुए पीलीभीत को राजधानी लखनऊ से जोड़ेगी। श्री प्रसाद ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताते हुए

0: उन्होंने कहा कि इस ट्रेन के संचालन से यहां का कार्य और व्यापार पर्यटन भी बढ़ेगा। प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और बस्ती समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल दोपहर बाद गरज चमक के साथ हुई हल्की बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में चल रहे कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 15 छात्रों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर घटना की जांच शुरू। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर जताया दुख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया घटनास्थल का जायजा। घायलों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद और अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, नवाचार का नया केंद्र बना है फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग। और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन को दी मंजूरी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित गणेश प्रसाद मिश्र का ख्याल गायन, राग है भटियार।

अभी आप सुन रहे थे पंडित गणेश प्रसाद मिश्र का ख्याल गायन राग था भटियार। आपके साथ तबला संगत कर रहे थे श्रवण कुमार भट्ट, हारमोनियम पर श्रीकांत वैश्य। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देशगान।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान LNG विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां, विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी। ये हमारा सपना

0: ना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैं रैप का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे।

0: यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे चार भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
0: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले 6ठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए SIT गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध

0: होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अधिकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज प्रिंसिपल ऑफ नेशन फर्स्ट has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends 4 officials in connection with Lucknow fire incident. 4 accused arrested. 4 ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirmed death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
3: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है, और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
2: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said, world leaders recognized India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building.
3: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
2: मिस्टर मोदी सेड Nearly 25 crore people had moved out of poverty in recent years, leading to the emergence of a large new middle class and boosting economic activity.
3: 25 crore log garibi se bahar nikle hain, new middle class mein aaye hain, to iska fayda keval un parivaron tak nahi rehta, balki middle class ka bhi isme fayda hota hai. क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, उसे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं, यानी गरीबी कम होना

0: Once again, Prime Minister Narendra Modi says principle of nation first has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends four officials in connection with Lucknow fire incident. Four accused arrested. Four ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirm death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ में नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में आग लगने के वाकये के सिलसिले में चार ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया है। चार मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। कीमियावी खाद लाने वाले चार बहरी जहाज अब नए हुर्मुज को पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे हैं। कतर के हुक्काम ने रास लफान एलएनजी धमाके में 12 भारतीय शहरियों की मौत होने की तस्दीक की है। और यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की कयादत करेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। नई दिल्ली में एक प्राइवेट मीडिया हाउस के जेरे एहतमाम एक समिट से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि गुज़श्ता दहाई के दौरान मुल्क की कामयाबियां भरोसे, इस्तेकाम और आलमी सतह पर वसीतर बहबूद के तई अहद की बदौलत हासिल हुई हैं।
2: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
1: G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस में हालिया शिरकत का तस्करा करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आलमी रहनुमाओं ने मुल्क के मफादात को मुकद्दम रखने के तई भारत के पुख्ता अज्म को तस्लीम किया है और ये एक ऐसा फलसफा है जिसका मुल्क की पॉलिसियां और तरक्याती एजेंडा तय करने में अहम रोल रहा है। सरकार के गुज़श्ता 12 साल को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी के फरोख और मकामी अशिया के लिए हिमायत जैसे इकदामात इसलिए कामयाब हो सके कि लोगों ने मुल्क की तामीर के जज्बे को अपनाया।
2: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
1: जनाब मोदी ने कहा कि हालिया बरसों में तकरीबन 25 करोड़ अफराद गुर्बत से बाहर आए हैं जिससे एक नया बड़ा मुतवस्सित तबका उभरा है और इक्तिसादी सरगर्मियों को तकवियत मिली है।
2: 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, न्यू मिडिल क्लास में आए हैं।

0: तो इसका फायदा केवल उन परिवारों तक नहीं रहता बल्कि मिडिल क्लास का भी इतना फायदा होता है, क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, उसे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं। यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है, नई एस्पिरेशन की प्रेरणा है।
1: सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाजात तकसीम करने की तकरीब के दौरान पद्म अवार्ड्स 2026 अता करेंगी। पद्म अवार्ड्स 3 जुमरों, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में अता किए जाते हैं और मुल्क के आला तरीन शहरी एजाजात में शामिल हैं। आज मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में सदर जमहूरियत 65 पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस साल हुकूमत ने कुल 131 पद्म अवार्ड का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स शामिल हैं। अवार्ड्स हासिल करने वालों में 19 खवातीन शामिल हैं और 16 अफराद को बाद अजमर्ग ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। टेनिस के सरकर्दा साबिक खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूती, फिल्म गुलूकारा अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा उन 56 शख्सियात में शामिल हैं जिन्हें सदर जमहूरिया आज पद्म अवार्ड से नवाजेंगी। इन अवार्ड्स की शुरुआत 1954 में की गई थी और हर साल योम जमहूरिया के मौके पर इनका ऐलान किया जाता है। मज़कूरा अवार्ड्स गैर मामूली काम के एतराफ में तफवीज़ किए जाते हैं और आर्ट, समाजी काम, अवामी उमूर, साइंस, इंजीनियरिंग, तिजारत व सनत, अदविया, अदब व तालीम, खेल, सिविल सर्विस जैसे मुतअद्दी शोबों में ये अवार्ड्स अता किए जाते हैं। आकाशवाणी न्यूज़ दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: आकाशवाणी का खबरों का शोभा आकाशवाणी पर पीपल्स पद्मा की सीरीज के तहत खसूसी प्रोग्राम नश्र कर रहा है। इस सीरीज के तहत पद्म अवार्ड्स याफ्ता शख्सियात की जिंदगी और खिदमात पर मबनी एक बसीरत अफरोज प्रोग्राम पेश किया जाता है।
3: मैं रैप का काम सीखा, मूवी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये प्रोग्राम आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 पर सुबह 9:10 से सुना जा सकेगा। इसके अलावा आकाशवाणी के ऐप न्यूज़ ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी दस्तियाब रहेगा। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने लखनऊ में पेश आए आग लगने के हादसे के तनाजुर में रियासती हुकूमत के 4 ओहदेदारान को मुअत्तल कर दिया है। मस्कूरा हादसे में 15 तलबा हलाक हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 6 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया है और इनमें से 4 अफराद को कल रात गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
5: रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी आग बुझाने वाले महकमे और बिजली महकमे के 4 अहलकारों को मुअत्तिल कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने 6 नामजदों मुलजिमों और दीगर कसूरवार अफराद के खिलाफ BNS और उत्तर प्रदेश फायर सर्विस एक्ट के मुतालिका दफात के तहत FIR दर्ज की है। आग लगने के इस वाक़े की आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है और खसूसी जांच टीम बनाई गई है जो 7 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कल सपहर आग लगने के इस सानहा में कम अज कम 15 अफराद की मौत हो गई थी, जिनमें बेशतर 16 से लेकर 25 साल की उम्र के तलबा थे। 9 तलबा जख्मी हुए जिन्हें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में दाखिल किया गया है। बेशतर अमवात दम घुटने की वजह से हुई। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के वजीर अमित शाह आज नई दिल्ली में भारत की कौमी ज़रई इमदाद बाहमी मार्केटिंग फेडरेशन नेफेड के नीलामी पोर्टल का आगाज करेंगे। नीलामी के अमल में शफाफियत को मुस्तहकम बनाने और कामकाज को सहल बनाने की समत ये एक अहम कदम है। उम्मीद है कि मस्कूरा पोर्टल से नीलामी से मुतालिक सरगर्मियों को मरबूत करने

0: और किसानों, मेंबर इदारों और मुतालिका फरीकों के मफाद में नेफेड के मजमूई कामकाज को वसत देने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म फराहम हो सकेगा। बाद में जनाब अमित शाह नेफेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अरकान के साथ एक मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में नेफेड अपनी सरगर्मियों और पेशरफ्त के बारे में एक प्रेजेंटेशन पेश करेगी। नेफेड का मुस्तकबिल का खाका भी पेश किया जाएगा। केमिकल्स और कीमियावी खाद महकमे की वजारत ने कहा है कि यूरिया, डाइअमोनियम फॉस्फेट, डीएपी और सल्फर की खेप लाने वाले चार मालबरदार बहरी जहाजों ने गुज़श्ता हफ्ते आबनाए हुर्मुज को कामयाबी के साथ पार कर लिया और अब ये मुल्क में अपनी अपनी मुकर्ररा बंदरगाहों की तरफ जा रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा में पारादीप बंदरगाह और गुजरात में मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। वजारत ने कहा है कि कीमियावी खाद की इस दरामद से मौजूदा ज़रई ज़रूरियात की तकमील को मजीद तकवियत मिलेगी। वजारत ने यह जानकारी दी है कि मुल्क में कीमियावी खाद का मजमूई स्टॉक 196 लाख टन है, जबकि पिछले साल की इसी मुद्दत में ये 168 लाख टन था। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ कल नई दिल्ली में बातचीत की, जिसमें बाहमी ताल्लुकात को मामूल पर लाने में पेशरफ्त समेत दोतरफा रवाबित के अहम पहलुओं पर तवज्जो मरकूज की गई। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों के मीटिंग के मौके पर यह बातचीत हुई। जनाब डोभाल ने मीटिंग में इस बात पर जोर दिया कि मुस्तहकम और तामीरी दोतरफा ताल्लुकात से तरफैन के दरमियान बाहमी एतमाद और बेहतर मुफाहिमत कायम करने में मदद मिलेगी। दोहा में भारतीय सिफारतखाने ने यह ऐलान किया है कि कतर के हुकाम ने इस बात की तस्दीक की है कि इतवार की रात को रास लफान में हुए हादसे में 12 भारतीय शहरी हलाक हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सिफारतखाने ने सोगवार खानदानों से ताजियत का इजहार किया और महलुकीन के लिए दुआ की। पोस्ट में मजीद बताया गया है कि कतरी हुकाम ने तस्दीक की है कि हादसे में जख्मी होने वालों की हालत मुस्तहकम है और वो जेरे इलाज हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस हादसे में होने वाले जानों के जिया पर दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि दोहा में वाकई भारतीय सिफारत खाना इस हादसे से मुतासिर होने वाले भारतीय शहरियों के खानदान की मदद के लिए कतरी हुकाम के साथ करीबी इश्तराक से काम कर रहा है और उनके राबते में है। कतर के सबसे बड़े गैस के मरकज में हुए धमाके के बाद कम अज कम 13 अफराद हलाक और 16 जख्मी हुए हैं। दाखिली उमूर की वजारत ने बताया कि दोहा में रास लफान जोन में वाकई शहर के अहम रकीक कुदरती गैस एलएनजी की प्रोसेसिंग के मकाम पर ये तकनीकी हादसा पेश आया। कतर के तवानाई के वजीर ने कहा कि इस धमाके से मुल्क की बरामदात मुतासिर नहीं होंगी। यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। इसमें सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की कयादत करेंगे। मर्दों के सिंगल जुमरे के पहले राउंड में आलमी नंबर 14 लक्ष्य सेन का मुकाबला बेल्जियम के जूलियन काराजी से होगा, जबकि किदाम्बी श्रीकांत चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू का सामना करेंगे। मिक्स डबल्स में ध्रुव रावत और मीनाक्षी की जोड़ी इंडोनेशिया के वीरावन एहसान आदम और सेरेना कानी के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। मर्दों के एफआईएच हॉकी प्रो लीग के इफ्तिताही मैच में आज भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। चीन के हुलुम्बियर में मुनक्किदा एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ये पहला मुकाबला होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत एक काबिल भरोसा मीशत के तौर पर दुनिया में तेजी से उभर रहा है। पिछले 12 बरसों में शुरू की गई फलाही स्कीमों से आवाम को फायदा पहुंचा है। वजीर खारजा और डॉक्टर ए जयशंकर ने मंगोलिया के अपने हम मनसब से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तालीम सकाफत और कई तरक्याती प्रोजेक्टों समेत अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है। अजीत डोभाल की सदारत में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मशीरों की 2 रोजा मीटिंग कल नई दिल्ली में शुरू हुई। कौमी सिक्योरिटी की बदलती हुई सूरत हाल और सिक्योरिटी खतरात के तनाजुर में नई टेक्नोलॉजी के रोल पर हुई बातचीत, ये खबर भी आज के अखबारों ने खसूसियत के साथ शाये किया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के

श्रोताओं लौटते हैं अपने कार्यक्रम में और आते हैं अपने विषय पर। श्रोताओं, आज का हमारा विषय है विश्व ओलंपिक दिवस। मानव जीवन और विकास में खेल की भूमिका बहुत महत्व रखती है। खेल केवल मनोरंजन के साधन नहीं है, यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक गुणों के विकास में मदद करता है। खेलों का महत्व केवल बचपन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन भर हमें ऊर्जावान और अनुशासित बनाए रखने में सहयोगी है। श्रोताओं, आज है 23 जून यानी कि विश्व ओलंपिक दिवस। हर साल 23 जून को मनाया जाता है। यह दिन खेल, स्वास्थ्य और एकजुटता का जश्न मनाने का दिन है। यह अवसर पूरी दुनिया के लोगों को क्रियाशील बनने के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। क्या है ओलंपिक खेल? ओलंपिक गेम्स के खेलों का महाकुंभ भी कहा जाता है। इन खेलों का आयोजन 4 साल में एक बार होता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में से एक है। इसमें 200 से अधिक देशों के हजारों एथलीट कई प्रकार के खेलों में भाग लेते हैं। ओलंपिक दिवस एकता और खेल भावना का सम्मान करने के लिए समर्पित है। यह दिन हर साल 23 जून को मनाया जाता है और हमारे जीवन में खेलों के महत्व की याद दिलाता है। ओलंपिक खेलों का मुख्य उद्देश्य खेलों के माध्यम से युवाओं को शिक्षित करना, शारीरिक व नैतिक गुणों का विकास, आपसी समझ, मित्रता एवं निष्पक्ष भावना द्वारा एक शांतिपूर्ण व बेहतर दुनिया के निर्माण में योगदान देना है। ओलंपिक खेल पहली बार साल 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित किया गया था। तब से यह खेल हर 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। ओलंपिक खेलों के जन्मदाता पियर डी कोबर्टिन हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को की थी, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजिन में स्थित है। ओलंपिक के झंडे में 5 रिंग बने होते हैं, जो नीले, डार्क पीले, काले, हरे और लाल रंग में होते हैं।

श्रोताओं, ओलंपिक खेल चार प्रकार के होते हैं, जिसमें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, पैरालंपिक पैरालंपिक ओलंपिक और यूथ ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेलों में खेलों की मनमोहक दुनिया और खिलाड़ियों की असाधारण प्रतिभा देखने को मिलती है। इस खेल के माध्यम से विश्व शांति को बढ़ावा देना और विभिन्न देशों के खिलाड़ियों को एक साथ लाकर यह दिखाना है कि एकता में ही शक्ति होती है। जी हां श्रोताओं, और आज आपको बता दें, एक खास दिन और भी है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, जो कि प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 पारित किया। यह दिन समुदाय और विकास प्रक्रिया में सार्वजनिक सेवा के

महत्व को उजागर करने के लिए लोक सेवकों के उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने और युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में करियर चुनने के लिए प्रेरित करता है। श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और कल आपसे मिलेंगे नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए कार्यक्रम को समाप्त करने की। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। प्रस्तुति थी सुंदरम तिवारी की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
4: अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: प्रस्तुत है फिल्म संगीत, लीजिए सुनिए सौतन की बेटी फिल्म का ये गीत। किशोर कुमार की आवाज में, संगीत दिया है वेदपाल ने, रचना है सावन कुमार की।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत लीजिए। अब सुनिए प्यार झुकता नहीं फिल्म का ये गीत, शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, रचना है SH बिहारी की।

श्रोताओं, अभी आपने सुना प्यार झुकता नहीं फिल्म का ये गीत, और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: 96.6 मीटर्स यानी 743 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए महोबा और सिद्धार्थनगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं महोबा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित श्रोतिये का।
2: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग के तहत महोबा में योग सप्ताह का आयोजन किया गया। जिले के विभिन्न ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों पर योग शिविरों का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर योगाभ्यास किया। योग के माध्यम से स्वस्थ एवं निरोगी जीवन का संदेश दिया गया। योग प्रशिक्षक शकिन गुप्ता, सुनीता कुशवाहा ने प्रतिभागियों को कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया। योग सप्ताह के तहत 18 जून को नगर पक्षी विहार, 19 जून को जैन तीर्थंकर मंदिर तथा 20 जून को आधारशिला वृद्धाश्रम एवं 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर राजकीय स्टेडियम में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन राज्य मंत्री मनोहर लाल सहित बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर योग किया। योग शिविर में शामिल 85 वर्षीय शिव कुमार गोस्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है और आज विश्व में 177 से अधिक देशों में लोग योग अपना रहे हैं।
3: इस बार जो थीम है 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, कि वृद्ध जनों को जो है प्रोत्साहित करिए, वो मंदिरों में भजन पूजन रामायण गीता तो पढ़ते हैं, लेकिन मूल रूप से जब तक ये कि सारे वृद्ध जन योगाभ्यास नित्य करें, ताकि हम करेंगे वृद्ध जन तो हमारे बच्चे नाती पोते सब उसको देख करके करेंगे और चारों तरफ जो है एक निरोग का जो वातावरण है वो तो कायम होगा।
2: उन्होंने कहा कि इस वर्ष की थीम वृद्ध जनों के स्वस्थ जीवन को समर्पित है और योग के माध्यम से बुजुर्ग न केवल निरोगी रह सकते हैं बल्कि युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की ओर से महोबा में नया जिला विकास प्रबंधक कार्यालय स्थापित कर दिया है। इससे अब जिले में कृषि व ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। अभी तक हमीरपुर के जिला विकास कार्यालय की ओर से महोबा जिले में नाबार्ड की गतिविधियां संचालित होती थीं। महोबा की विशिष्ट चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड ने यहां कार्यालय खोला है, ताकि बेहतर पहुंच, हितधारकों के साथ निकट समन्वय स्थापित हो सके। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक डॉक्टर पुनीत कुमार बताया कि नाबार्ड पहले से ही महोबा में कई योजनाओं का समर्थन कर रहा है, जिसमें सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण, किसान समूह, वाटर सेड, विकास व आजीविका संवर्धन शामिल हैं। अब ऋण प्रवाह में सुधार होगा और जनपद के ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। अब तक मोरंग और गिट्टी के लिए पहचान रखने वाला महोबा जनपद जल्द ही जिरकोनियम जैसे बहुमूल्य खनिज के लिए भी जाना जाएगा। हरपालपुर और महोबकंड क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले जिरकोनियम भंडार की पुष्टि हुई है। इसके खनन का लाइसेंस बंगाल की माहेश्वरी माइनिंग कंपनी को दिया गया है। जिरकोनियम का उपयोग दंत चिकित्सा, आभूषण निर्माण, रासायनिक उद्योगों और उच्च तापमान वाले संयंत्रों में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में पहली बार इस खनिज का भंडार मिला है। इससे महोबा को नई पहचान मिलेगी। इसके खनन से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही खनन और उससे जुड़े उद्योगों में निवेश बढ़ेगा। महोबा देश के महत्वपूर्ण खनिज मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बनाएगा। जिरकोनियम उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश अब उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल के बाद देश का चौथा राज्य बनने जा रहा है। एकीकृत बागवानी मिशन योजना के तहत महोबा जिले में प्याज लहसुन के आधुनिक भंडार गृह बनाए जाएंगे। इन्हें खास तौर पर बांस और टीन से तैयार किया जाएगा। यह सभी प्राकृतिक तरीके से बनेंगे। सरकार इसके लिए किसानों को अनुदान देगी, ताकि पैदावार सुरक्षित रहे और किसान औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर न हो। जिला उद्यान अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि जिले में करीब 500 हेक्टेयर में प्याज और 200 हेक्टेयर में लहसुन की खेती होती है। हर साल भंडारण न होने से 10-15% फसल बर्बाद हो जाती है। नए भंडार गृह बनाने से किसान अपनी उपज रोककर अच्छे दाम मिलने पर बेच सकेंगे, जिससे उत्पादन बढ़ने को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए सरकार प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अनुदान भी देगी। योजना अंतर्गत कुल इकाई लागत का 50% या अधिकतम 30 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिया जाएगा। जिला उद्यान अधिकारी

0: ने किसानों से शासन की इस योजना का लाभ लेने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा को 697 करोड़ रुपए की 88 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। 13 साल बाद गोरखगिरी पहुंचे सीएम ने यहां रोपवे बनाने और इसे एडवेंचर टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में बनने वाली तोप मिसाइलों से पाकिस्तान और दुश्मन थर्रा रहा और यहां के देशावरी पान को पहचान और बीड़ा के जरिए क्षेत्र को वैश्विक पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए अर्जुन सहायक परियोजना, केन बेतवा लिंक और हर घर नल योजना का जिक्र किया, जिसने बुंदेलखंड की बहनों को पानी के संकट से मुक्ति दिलाई। महोबा जिले में शिक्षा और ज्ञान वर्धन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सदर विधायक राकेश गोस्वामी, विधान परिषद सदस्य जितेंद्र सिंह सेंगर एवं जिलाधिकारी गजल भरद्वाज ने संयुक्त रूप से राठ रोड स्थित राजकीय पुस्तकालय में 5 स्मार्ट लाइब्रेरी का फीता काटकर शुभारंभ किया।
1: महोबा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सिद्धार्थनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है डॉक्टर सावन श्रीवास्तव का।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा एनडीए सरकार के 12 वर्ष सफल पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में बड़े स्तर पर जनसंपर्क अभियान और जश्न मना रही है। इस अवसर पर भाजपा ने सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित बताया है। इस क्रम में भाजपा देश भर में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन और मीडिया संवाद आयोजित कर रही है। सरकार की इन बड़ी उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाने के लिए पार्टी द्वारा 5 विशेष बुकलेट भी जारी की गई है। पार्टी का संकल्प है कि इन नीतियों के आधार बनाकर साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जाए। जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी विकास खंड परिसर में भाजपा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि सांसद जगदम्बिका पाल व पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक जय प्रताप सिंह कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर खंड विकास अधिकारी कृतिका अवस्थी ने सभी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। इस दौरान सांसद व विधायक ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया, साथ ही केंद्र प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लोगों में साझा की।
3: भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष के कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के सभी विकास खंडों पे केंद्र सरकार की योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रदर्शनी के रूप में लगाया गया है और एक स्वास्थ्य शिविर 14 जून से 16 जून तक भी लगाया गया।
2: जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र में स्थित हिंदू भवन में पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 54वां जन्मदिन को सेवा, समर्पण और जन कल्याण की भावना के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर 55 यूनिट रक्तदान किया। इस दौरान उपस्थित हिंदू संगठन के लोग व भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुख्यमंत्री के दीर्घायु होने की कामना भी की। जनपद सिद्धार्थनगर की थाना सोरतगढ़ पुलिस व सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है कि अपराध व अपराधियों पर निरंतर अंकुश लगाने को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अभिषेक महाजन के नेतृत्व में जिले की पुलिस व सहयोगी पुलिस टीम सक्रिय है। सोरतगढ़ थाना अध्यक्ष नवीन कुमार सिंह, SI संतोष यादव, मैं पुलिस टीम मुखबिर की सूचना पर गंचौरा तालाब के पास एक युवक को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए युवक के पास से पुलिस ने चोरी के सोने चांदी के आभूषण व 5,000 रुपए नकद बरामद किया। जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा तहसील क्षेत्र में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय महुई से नवनिर्मित अतिरिक्त कक्षा कक्ष का भव्य उद्घाटन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर मुख्य अतिथि ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण किया। इसके साथ ही विद्यालय की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत की मनमोहक प्रस्तुति की गयी, जिसकी मुख्य अतिथि द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गयी। सिद्धार्थनगर जिले में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के गांव चलो अभियान के तहत मिठवल ब्लॉक के ग्राम पंचायत बघौली में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री विधायक जय प्रताप सिंह ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पूर्व मंत्री विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। केंद्र सरकार 12 वर्ष पूर्ण होने पर सिद्धार्थनगर जिले में पहुंचे प्रदेश सरकार के के मंत्री अनिल राजभर ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार के द्वारा 12 साल में किए गए कार्यों की उपलब्धियों को मीडिया के सामने रखा और बताया गया कि किस प्रकार से इन 12 सालों में केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की योगी सरकार द्वारा लगातार विकास के कार्य किए गए।

0: सिद्धार्थनगर जिले में आगामी मानसून और संभावित बाढ़ की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों को लेकर बांसी स्थित राप्ती नदी तट पर राज्य स्तरीय बाढ़ राहत एवं बचाव मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान SDRF प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस विभाग, नगर पालिका तथा आपदा मित्रों ने संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव कार्यों का प्रदर्शन कर आपात स्थिति से त्वरित कार्रवाई की तैयारियों का जायजा लिया। सिद्धार्थनगर से सटे भारत नेपाल सीमा के आने जाने वाले रास्तों की निगरानी अब CCTV कैमरों के माध्यम से होगी। क्रिटिकल गैप योजना अंतर्गत भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 23 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। लगाए गए इन CCTV कैमरों और ककरावा बॉर्डर के अंतर्राष्ट्रीय गेट के चेक पोस्ट पर अस्थायी कमरा और शौचालय का निर्माण का लोकार्पण जिलाधिकारी ने किया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देश गान।

अभी आप देश गान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: हैं। हमारा अगला कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेशे खिदमत है उर्दू कार्यक्रम।
1: सलाम उन पर तहे तेग भी जिन्होंने कहा, सलाम उन पर तहे तेग भी जिन्होंने कहा, जो तेरा हुक्म, जो तेरी रजा, जो तू चाहे। ऐसी हस्तियों पर सलाम भेजते हुए आपके प्रोग्राम की मेज़बान रबाब अंजुम रामपुर रेडियो मरकज से आपकी खिदमत में हाजिर है। सलामे सुबह कबूल करें। समिन माह मुहर्रम, इस्लामी साल का पहला माह। मुहर्रम जिसके मायने हैं मुअज्जम, मोहतरम और मौजिज। इस माह का शुमार अशहरे हरम में से है जिनकी अजमत और फजीलत किताब सुन्नत में आई है। ये वो हुरमत वाला महीना है जिसमें हर नेकी और हर नेक अमल का, हर इबादत का सवाब दोगुना कर दिया जाता है। मुहर्रमुल हराम उन चार महीनों में से एक है जिनकी हुरमत और अजमत को अल्लाह ताला ने कायनात बनाते वक्त ही लिख दिया था। इस माह मुहर्रम की 10 तारीख, जिसे हम यौम आशूरा भी कहते हैं, इसकी अहमियत, इसकी खासियत, इसकी फजीलत दुनिया के बनने से लेकर हमेशा रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाकई करबला के बाद इस दिन की अहमियत हमने पहचानी, बल्कि यह दीगर बात है कि शहादत हुसैन ने इस दिन की अहमियत और अजमत को दुबाला कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश 10 मुहर्रम को ही हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जबल जूदी पर इसी दिन ही आ ठहरी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इसी 10 तारीख को मछली के पेट से बाहर आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 10 मुहर्रमुल हराम को ही आग से खलासी मिली। और यही वो दिन था जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मुलाकात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी दिन अपनी कौम समेत फिरौन से निजात पाई और फिरौन इसी दिन दरियाए नील में गर्क हुआ। इसी दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इसी दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाइश के बाद बादशाहत मिली। इसी रोज़ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बाद इम्तिहान शिफा मिली। इसी दिन हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया। और यही वो दिन है जिसमें जिगरगोशे रसूल हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने बातिल से टकराकर जाम शहादत गले लगाया। और यही वो दिन होगा कि जब कायनात की बिसात लपेट कर क़यामत बरपा कर दी जाएगी। इसलिए इस दिन की अहमियत हमेशा से रही। यौम आशूरा की फसीलत इस बात से भी जाहिर होती है कि इस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले से भी रोज़ा रखा जाता था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आशूरे का रोज़ा रखने का हुक्म दिया था। जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज कर दिए गए तो इख्तियार दिया गया कि जो चाहे रोज़ा रखे और जो चाहे ना रखे। इस दिन रोज़ा रखने का सवाब ये है कि साले गुज़िश्ता के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इब्तिदा में सिर्फ 10 मुहर्रम का ही रोज़ा रखा जाता था, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो मालूम हुआ कि यहूद भी रोज़ा रखा करते हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी मुखालफत में मज़ीद एक रोज़े इजाफा करने का हुक्म दिया और कहा, यौम आशूरा के साथ या तो 9 तारीख को रोज़ा रख लिया जाए या 11 तारीख को यौम आशूरा के साथ रोज़ा रख लिया जाए। तो इन दो रोज़ों की अहमियत और इफादियत और अजमत बहुत बढ़कर है, बहुत सवाब है। और इसके अलावा चंद काम और भी हैं जो इस माह में किए जाएं, जो इस माह में किए जाएं।

अभी आप आदित्य राय के स्वर में ये गीत सुन रहे थे। सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुबह के 10 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचा का उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कल हुई इस बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज पिछले सप्ताह होर्मुज जल डमरू मध्य को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाड़ा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल है। फीफा विश्व कप 2026 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप आई के मुकाबले में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया। इसके साथ ही फ्रांस के नॉकआउट चरण में पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है लोक माधुरी कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं राधेश्याम कुशवाहा और साथी और रंजना त्रिपाठी। पहले आपको

अभी आप रंजना त्रिपाठी के स्वर में लोकगीत सुन रहे थे। लोक माधुरी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीत। कलाकार हैं उदय राज सिंह और साथ ही मोहिनी श्रीवास्तव और प्रशांत मिश्र। पहले आपको सुनवाएंगे उदय राज सिंह और साथी के स्वर में ये देवी गीत।

श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं वंदना श्रीवास्तव। आज सुरों के कारवां का रुख एक ऐसे फनकार की तरफ है जिनकी आवाज़ में रेशम जैसी नरमी और मखमली खनक है।

श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं वंदना श्रीवास्तव। आज सुरों के कारवां का रुख एक ऐसे फनकार की तरफ है जिनकी आवाज़ में रेशम जैसी नरमी और मखमली खनक है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गज़ल और फिल्मी संगीत के बेताज बादशाह तलत अजीज की। आइए इस सुरीले सफ़र की शुरुआत करते हैं फिल्म बाजार की इस सदाबहार गज़ल से, जिसे खयाम साहब के संगीत और मखदूम मोहिद्दीन के अल्फाजों ने अमर कर दिया है।

श्रोताओं, रात फूलों की सुनकर रूह महक उठती है। तलत अजीज की कामयाबी में मुजफ्फर अली की क्लासिक फिल्म उमराव जान का बहुत बड़ा हाथ है। इस फिल्म में शहरयार साहब की गजल को जब तलत साहब ने अपनी आवाज दी तो लगा जैसे वक्त ठहर गया हो।

श्रोताओं, तलत अजीज सिर्फ एक बेहतरीन गायक ही नहीं बल्कि एक उम्दा कलाकार भी हैं। उन्होंने महेश भट्ट की मशहूर फिल्म डैडी और धारावाहिक साहिल में अभिनय के जलवे भी बिखेरे। फिल्म डैडी का एक गीत ऐसा है जो हर उस शख्स की दास्तां बयां करता है जो जिंदगी के उतार चढ़ाव से जूझ रहा हो। आनंद बख्शी के लिखे इन शब्दों को तलत साहब ने जिस शिद्दत से गाया है वो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में अरिजीत सिंह को सुनिए फिल्म डंकी में।

और अब शांतनु मोइत्रा के संगीत निर्देशन में सुनिए स्वानंद किरकिरे की रचना। फिल्म का नाम है पीके और आवाजें हैं शान और श्रेया घोषाल की।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप इस समय आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से सुन रहे हैं। और अब फिल्म बागी 2 में सुनिए जुबिन नौटियाल को। गीत सईद कादरी का है और संगीत मिथुन का।

0: अभी आप श्रेया घोषाल और स्वरूप खान को सुन रहे थे फिल्म पद्मावत में। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 12 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि नई तकनीक, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और साइबर खतरे तेजी से डिजिटल होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक में मुख्य रूप से गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्म

0: सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं की जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष की नागरिकों की प्रतिबद्धता से उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: पिछले 12 वर्षों के

0: विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष की नागरिकों की प्रतिबद्धता से उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 99% शुल्क तुरंत समाप्त हो जाएंगे और भारत से निर्यात बढ़ेगा। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय कथित शिक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 254 अंक गिरकर 76,840 पर, जबकि निफ्टी 90 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। दिन में 3:55 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में आयोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी करने पर आधारित आयोजन का सजीव प्रसारण सुनेंगे। खेल दर्पण कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे रात 10:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात में 10:30 पर सुनिएगा पंडित नारायण राव व्यास का ख्याल गायन और दिन में 12:15 पर आप सुनेंगे पंडित गोपाल दास का क्लैरिनेट वादन। रात में 9:30 पर गजलों पर आधारित प्रोग्राम सुनिएगा कहकशा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर कलाकार होंगी सुषमा त्रिपाठी। संस्कृत कार्यक्रम होगा शाम 7:31 पर। आज इस कार्यक्रम में डॉ. रामजी मिश्र का काव्यपाठ प्रसारित किया जाएगा। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई राधेश्याम कुशवाहा और साथियों के गाए लोकगीत सुनेंगे और रामायण पाठ सुनाएंगे सिया राम मिश्र। हमारा सबरस कार्यक्रम होगा रात में 8:30 पर। अभी आप आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

सुनिए पंडित गोपाल दास का क्लैरिनेट वादन, प्रस्तुत है क्लैरिनेट पर राग शुद्ध सारंग। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री महावीर प्रसाद भट्ट।

क्लैरिनेट पर राग शुद्ध सारंग सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री महावीर प्रसाद भट्ट। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। पेश है प्रोग्राम हेलो फरमाइश। पेश कर रही हैं मधु कुमार।

0: हेलो फरमाइश, कार्यक्रम अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्ते।
0: नमस्कार
1: रेखा यादव कुकुरा हड़िया प्रयागराज से बोल रही हूँ।
0: जी। रेखा जी हंडिया से हमें अक्सर कॉल करती हैं, तो रेखा जी आज आपकी कौन सी फरमाइश है?
1: मैम, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीते जाएंगे हम तुम अगर संग है।
0: जी हाँ, अगर संग जो मजबूत रहता है तो जिंदगी की आप हर जंग जीत सकते हैं। बहुत सही बात इस गाने में कही गई है, तभी रेखा जी को ये गाना बहुत पसंद है।
1: यस मैम, जिंदगी का हर एक गाने में हर एक शब्द बोला गया है
0: जी
1: इसमें।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो रेखा जी, आपकी इस पसंद के गाने को हम सुनवाने जा रहे हैं, लीजिए सुनिए।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: गुलाब प्रजापति कन्होजा कला बाबूगंज प्रयागराज।
0: जी गुलाब जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: अभिमान मूवी का कोई एक गीत।
0: अमिताभ बच्चन और जया भादुरी की बड़ी चर्चित फिल्म रही है, गाने भी बहुत अच्छे थे इस फिल्म के, सारे गाने बहुत अच्छे थे। और देखिए, हमारे इस कार्यक्रम में बहुत दिनों से अभिमान फिल्म के गीत की फरमाइश भी नहीं आई थी, जो कि अब गुलाब जी ने कर दी है। तो चलिए सुनते हैं अभिमान का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: मैम, मेरा नाम है मधुकना जी, पुलिस लाइन जहाँ चौराहा प्रयागराज।
0: जी मधु जी, कौन सा गीत सुनेंगी?
1: हम दिल दे चुके सनम का। मैम,
0: हम दिल दे चुके सनम का कौन सा गाना है?
1: इसका टाइटल साथ सुना दीजिएगा मैम।
0: अच्छा, बहुत अच्छा गीत आपने चुना है मधु जी। और किसी का नाम लेना चाहती हैं तो ले लीजिए।
1: मेरे हस्बैंड का नाम है गोविंद कनौजिया, मेरे दो बच्चे हैं गौरी और हनी,
0: जी
1: और बहन का नाम है बाला कनौजिया। पुलिस लाइन
0: गौरी,
1: जहाँ
0: हनी और
1: प्रयागराज।
0: बाला कनौजिया और साथ में गोविंद कनौजिया जी हैं। तो चलिए मधु जी, आपकी पसंद का हम दिल दे चुके सनम फिल्म का सुनते हैं ये गीत।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी प्रयागराज और मैं हूं मधु। आपके गीतों के साथ कार्यक्रम चल रहा है हेलो फरमाइश, तो अपना नाम भी बता दीजिए। हेलो
1: पोस्ट हटिया तहसील हटिया थाना हटिया गांव मुगराम जिला प्रयागराज से प्रेमचंद यादव बोल रहे हैं।
0: जी प्रेमचंद जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है शेरशाह
0: जी,
1: और गाने के बोल हैं

0: साथ दिखूंगा मैं तुमको वही, जो ना दिखूं तो बता देना।
1: तो आपको सुनवाते हैं शेरशाह फिल्म का ये गाना, लीजिए सुनिए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर आप सब सुन रहे हैं कार्यक्रम है।

0: हेलो, फरमाइश। और मैं हूँ मधु, आपके गीतों के साथ। अपना नाम बता दीजिए।
1: हाँ नमस्ते मैडम, मैं बोल रहा हूँ रमेश
0: गुप्ता
1: बोल रहा हूँ मैडम, और रहने वाला जिला फजाराज गाँव नाम चक्षापुर इसमें बात कर रहा हूँ
0: जी।
1: मुंबई से रहते हैं, कल्याण पाटा मुमरा
0: जी। बताइए क्या फरमाइश है आपकी।
1: आज हम एक गाना सुना, फिल्म का नाम है रंग, गाने बोले दिल।

अभी आप हेलो फरमाइश प्रोग्राम सुन रहे थे। पेश कर रही थी मधु कुमार। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ निफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निफेड किसानों की सेवा कर रहा है।
1: नाफेड ने एक प्रकार से नाफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74,00,000 किसानों की सेवा कर रहा है।
0: इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल

0: दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के आरोपों के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को SIT का गठन किया था। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमेरिका ने भारत की M777A2 अल्ट्रालाइट होवित्जर तोपों के रखरखाव के लिए 23 करोड़ डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी लगातार बढ़ रही है और वो प्रस्तावित बिक्री को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक ने आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की गिरावट आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 525 अंक गिरकर 76,570 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the second Civil Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The President will confer 65 Padma Awards today. National Security Advisor Ajit Doval today stressed on the need to be cognizant of the new security threats and challenges. Speaking at the 16th BRICS National Security Advisors meeting in New Delhi, Mr. Doval said that non-traditional threats have transcended national borders. He emphasized that innovative disruptive technologies, more camouflaged variants of terrorism and cyber threats are getting increasingly digitized. He said the discussions during the 16th BRICS National Security Advisors meeting will focus on non-traditional security challenges.
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges. Non-traditional threats have transcended national borders and have developed defeat systems against conventional responses. Innovative disruptive technologies, more camouflaged variants of terrorism, cyber threats in a world which is getting increasingly digitized, they all constitute an important threats for us.
1: Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have paid tribute to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his martyrdom day. In a social media post, the Vice President described Dr. Mukherjee as a visionary leader, renowned educationist and staunch patriot. Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah today said that the National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited, NAFED, is helping around 74 lakh farmers in the country. He said this while launching NAFED's auction portal, nafix.in, at Atal Akshay Urja Bhavan in New Delhi.

0: Mr. Shah also paid tribute to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his death anniversary. The Home Minister praised Dr. Shyama Prasad Mukherjee for being an advocate of nationalism, cultural nationalism and Indian culture. The Special Investigation Team, SIT, probing allegations of embezzlement of donations received by the Ram Temple in Ayodhya, has submitted its preliminary inquiry report to the Uttar Pradesh government. The report was submitted by Lucknow Divisional Commissioner Vijay Vishwas Pant to Additional Chief Secretary Home Sanjay Prasad. Officials said the investigation is still underway and further facts are being gathered. The UP government constituted the SIT on the 13th of this month following a request from the Temple Trust after allegations surfaced regarding the misappropriation of donations received at the Ayodhya Ram Temple. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today held a review meeting in New Delhi in view of the El Nino effect on the weather and its impact on agriculture. The meeting was attended by the agriculture ministers of several states, secretaries, district collectors and officials. Discussions focused on necessary preparations in the event of low rainfall, alternative crop plans and protecting the interests of farmers. Union Minister of State for Minority Affairs and Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, George Kurian, has resigned from the Union Council of Ministers. President Draupadi Murmu has accepted the resignation of Mr. Kurian with immediate effect. The Enforcement Directorate ED is conducting searches at 18 premises in Chennai, Tiruchirappalli, Coimbatore and Madurai in connection with the alleged teacher recruitment exam manipulation case. The ED said the action is based on an FIR registered by the Central Crime Branch in the year 2017. It added that the police had filed a charge sheet in the case in 2021. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.7% lower in afternoon trade today. The Sensex lost 525 points to 76,570, while the Nifty shed 172 points to 23,931 when reports last came in. Sectorally, metal, IT and banking stocks led the declines, while pharma and healthcare stocks witnessed buying interest. In football, FIFA World Cup, Algeria thrashed debutants Jordan 2-1 in a Group J encounter in Santa Clara, USA today. In another match, Norway defeated Senegal 3-2 in their Group I clash today at the New York Stadium and sealed their progress into the round of 32. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर एक कसीरुल मंजिल इमारत में एक कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 15 तुलबा की मौत हो गई और कई दीगर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए केजीएमयू ट्रामा सेंटर में दाखिल कराया गया। हादसे की इतला मिलते ही वजीर आला योगी आदित्यनाथ अपना अलीगढ़ दौरा छोड़कर सीधे लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने जाय वकू का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। बाद अजा उन्होंने जख्मियों से मुलाकात के लिए केजीएमयू का दौरा भी किया। वजीर आला ने पुलिस के डायरेक्टर जनरल और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को पूरे वाकये की तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी देर रात लखनऊ पहुंचे। जाय वकू का मुआयना करने के बाद उन्होंने जख्मियों से मिलने और उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए केजीएमयू का दौरा किया। वजीर दिफा ने वाकये को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि जिम्मेदारी का तयन करने के लिए तहकीकत की जाएगी। दरियसना वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर हुकूमत ने वाकये की जांच के लिए दो रुकनी जांच कमेटी तश्कील दी है। लखनऊ आतिशजदगी के वाकये में पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हमारे नामा निगार ने इतला दी है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार किया गया। हमारे नामा निगार ने बताया,
2: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। इस फायर ब्रिगेड पुलिसकर्मी, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि राज्य के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी और आग लगने के कारणों का पता लगाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, गवर्नर आनंद

0: सरस्वती। अरे सरस्वती बहनी,
1: हाँ
0: हम
1: गंगा,
0: कहा तुमसे राम राम।
1: राम राम चंपा।
0: हाँ?
1: और पनघट सुने बैठी सब बहनी हरन के, चंपा और सरस्वती के
0: राम राम
1: राम।
0: और बताओ सरस्वती बहनी, हाल चाल घर द्वारे के?
1: बस बहुत बढ़िया बाटे, लेकिन हम घाम से बहुत ज्यादा परेशान हो गई चंपा बहनी।
0: कहा तू है,
1: देखा घाम इतना पड़त बाटे ना, इतना लू भी चलत है ना, तो कबो कबो हम लू के चपेटे में आई जाती।
0: अच्छा तब हम देखा थी तुहार तबीयत कुछ गड़बड़ लागत बाटे।
1: हाँ
0: तोरे हम तुम्हें देखे हैं दूर से मुंह से, तोरे पता चली है कि तुहार कुछ तबीयत गड़बड़ बा।
1: बिल्कुल सही कहा।

0: देखा, हम सबे कहा थी कि ध्यान रखे के चाहिए,
1: हम्म,
0: ध्यान रखे के चाहिए, लेकिन इतना काम हो जाता है और नया नया काम निकलत रहा था, तो मतलब कि कुछ काम पूरा हो जाता, कुछ काम नहीं होत, और कुछ काम दिमागे में घूमत रहा था कि एका करे के है, एका करे के है, और कर नहीं पाए तो ओकर तनाव हो जाता दिमाग में, मन में,
1: बिल्कुल।
0: है ना। तो जैसे लगत है कि उलझन उलझन से लगत है ना, तो मन ऐसे खिन्न हो जाता है।
1: अच्छा,
0: तो
1: और देखा सोचती बहनी,
0: हाँ
1: या समय देखा बारिश कहूँ कहूँ तो होत बाटे, लेकिन मुना किसान भैया हरे जोन हैं वो सब अगोरत हैं कि कब भगवान दउरा जब बरसें, हम सब धान के रोपाई शुरू कर दी। कहें कि सबके खेतन में देखा बीज कितना अच्छे से लहरात है, हरा हरा एकदम बीज लहरात है खेतन में, बस उस सबका इंतजार यह है कि दउ राजा बरसे, हम सब जल्दी धान के रोपाई शुरू कर दी कि नहीं।
0: हाँ बिल्कुल सही
1: कहे कि
0: कहा था।
1: हर चीज समय पे ही अच्छा लागत है ना, अब 10 दिन 15 दिन 1 महीना पीछे धान के बैठाई तो का हुई,
0: बिल्कुल सही कहा तू।
1: बेकार हुई ना होगा, एक
0: हाँ
1: महीना
0: हाँ
1: पीछे फिर बैठाई तो आगे फिर नुकसान हुई होगा ना।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा तू। और सब कोई अगोर के बैठा है ना कि कब जल्दी से हम सब अपन काम आगे बढ़ाए, है ना,
1: बिल्कुल
0: काहे कि नुकसान हो जाता है। तो हम सोचे थे कि काहे ना हम सब यही बात पे चर्चा के लिए जाए बहनियरन से कि समय प्रबंधन कैसे करी।
1: बिल्कुल। देखा सस्ती बहनी, समय वो चीज़ होता है कि जो हम सब एक बार खोई दी तो वापस नहीं आवत है, जैसा कि पैसा है, चला हम सबके कहूँ पैसा कहूँ चला गए, कहूँ गिर गए, कहूँ डूब गए, कुछ है तो उस हम
0: तब
1: दोबारा
0: तकलीफ तो
1: तकलीफ
0: बहुत होता,
1: वाला समय
0: लेकिन
1: होता, लेकिन हम सब ये होता कि दोबारा उका हम सब मेहनत कई के कमाई लेवे,
0: बिल्कुल। और हम
1: मुना
0: सब
1: समय जो
0: यही
1: हम कमाई
0: तसल्ली
1: देते
0: अपने
1: हैं।
0: आप के दे थी कि देखा अब चला रुपया पैसा फिर कमाए जा सकत है ना, लेकिन समय ऐसे मूल्यवान चीज है कि देखा हीरा जवाहरात से भी कीमती है ना,
1: बिल्कुल
0: काहे कि गया हुआ समय कबो लौटत नहीं,
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: सही। और देखा बहनी, जैसे समय की बात क्यों, जब हम सब भाई घर में, तो अगर हमने सब खाली समय बांटा हमें सबके पास, तो मैं का करी, कुछ अपन काम है सिलाई का है कढ़ाई
0: हाँ
1: का है कौन भी काम है, तो का करी ना, कि जैसे चार बहनी हरे हैं कि या बैठ के दूसरे घर में या फिर कहूँ बैठ के
0: हाँ
1: बतियावती के बारे में कुछ का बात करती, तो उससे अच्छा है कि बारे में बातों ना ही हुई, अपन काम हुई और चार पैसा के इनकम भी रही, अपन आगम
0: हाँ
1: भी हो जाए।
0: आमदनी हो जाए।
1: हाँ
0: हाँ और
1: आगे
0: देखा
1: का
0: देखा काम तो हम सबे करे चाहिए तो बहुत काम रहा था, चाहे हम सबे गृहिणी होए चाहे घर से बाहर जाके काम करे वाली
1: सही
0: महिला
1: बात
0: होए हम
1: है।
0: सबे, है ना। तो काम सबके होते, घरे में कम काम नहीं होते, है ना। बहुत जिम्मेदारी रहते लड़कियन बच्चन के, बड़े बुजुर्गन के, है ना। तो देखा अगर हम सबे अपने काम की प्राथमिकता तय कर लेवे कि देखा ई काम हमके सबसे पहले करे के है,
1: जैसे हम
0: और
1: सबके
0: रोज रात के चंपा ई सोचें कि
1: हाँ कि हम
0: हमें काल का करे के है
1: सवेरे
0: और कब
1: उठे,
0: कब करे के
1: हाँ
0: है और
1: सवेरे जब उठा तो
0: कैसे
1: कैसे कैसे
0: कैसे
1: करे,
0: करे के है।
1: हाँ
0: अगर हम सभी ऐसे सोई
1: एक
0: जाबे
1: दिनचर्या जब
0: कि
1: बना लेवे हम
0: हाँ कि
1: सब तो
0: काल
1: अपन
0: उठब
1: काम
0: काल सोचब, तो देखा आधा समय तो
1: वहीं चला जाता
0: जोने
1: है
0: कहा था ना
1: सोचती में।
0: कि समझ में ना आया था का करी का छोड़ी, तो फिर सब गड़बड़ हो जाता है।
1: बिल्कुल
0: तो देखा एकरे बदे समझदार जोन गृहिणी होते हैं एक सूची तैयार कर लेती कि देखा ये काम जरूरी है, ये काम
1: एक
0: हो जाए
1: पहले
0: के
1: पहले
0: चाहिए,
1: कह
0: है ना।
1: लेवे,
0: जैसे लड़का बच्चा स्कूल जाते हैं और घर के मनई बाहरे जाते तो उनका कपड़ा लत्ता धोब एकदम जरूरी है भैया, समय से ओका साफ कर दें, है ना, बर्तन उर्तन सब साफ सुथरी सब बहुत जरूरी घर के काम है। एकरे बाद अपने अगर कोनो बाहरी काम करती है हमारी बहनी और खेते उते में, है ना, वहाँ का भी काम रहते
1: आज जैसे
0: तो
1: यहाँ से देखो कितना तेज घाम होता है, तो बहनी अरे
0: हाँ
1: क्या करे, सवेरे भैया अरे
0: हाँ
1: थोड़े जल्दी उठ जाए
0: तय
1: सवेरे,
0: कह लें कि देखा ई काम सवेरे निपटावे
1: नहीं से
0: वाला है
1: घाम के हिसाब
0: और
1: से
0: बाकी काम
1: सवेरे
0: तो हम लौट के घरे छाया छाया में भी कर
1: उसका कई
0: लेबे।
1: लेवे छाए में बाटे
0: तो यही हम
1: और
0: कहा
1: देख।
0: थी चंपा कि एक थे मतलब प्राथमिकता तय कर लें कि कौन काम हम पहले कर ले और कौन काम हम
1: बाद में करी,
0: फुर्सत से फिर कुछ
1: हाँ हाँ
0: खाली हो
1: फिर
0: के बाद में भी करबे तो हमार काम चल जाए।
1: और देखा एक कबीरदास जी की कहावत भी है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परले पल पल में
0: पल में
1: परलय होएगी, बहुर करेगा कब।
0: कब, बिल्कुल सही कहा तू। ये देखा काल की कोई जानत नहीं
1: काल
0: कि हाँ हम सब टारत रहती भाई देखा, लेकिन टारत टारत देखा काल
1: हम सबके का बतावे काल का हुई
0: हाँ कबो
1: तो
0: कबो
1: का
0: तबीयत
1: अब।
0: खराब हो जाता है ना, और कबो कबो बाहरी निकल पड़ जाता है घर से कोनो जरूरी
1: कौन
0: काम से,
1: जरूरी काम
0: तो
1: हो जाता
0: काम
1: है
0: टारत रहा था और ऐसे जो ना हमार और आगे बढ़े में दिक्कत होता
1: बिल्कुल, और
0: है
1: कितना
0: ना।
1: नुकसान भी हो जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा तो चंपा बहनी। तो

0: का न केवल प्राथमिकता तय करें बल्कि ये सोचें कि कैसे कैसे अपने काम के समझदारी के साथ में और कम समय में निपटावे के हवे, है ना। तो एकरे बारे में भी विचार करें कि देखा काम तो हम ही के करे के बाटे, है ना। अगर हम अपने काम के अपने परिवारी जन के अपने घरे के सदस्यन के साथ में बांट सकती केहू के सहायता ले सकती तो उसे ना चूके।
1: घर में चार लोग हैं तो ये काम हो के लिए, ये काम हो के लिए, ऐसे का होले काम भी जल्दी हो जाए।
0: हाँ, मिल बैठ के
1: सब फुर्सत भी पाए।
0: हाँ, उनसे बात करके बताए के समझाए के कुछ काम के सहयोग ले लें, है ना। ऐसे अपने शरीर के आराम भी मिल जाता है और कुछ समय अपने शौक के पूरा करे भी मिल जाते है।
1: बिल्कुल का सही चंपा, बिल्कुल, है ना। तो इतना अच्छी अच्छी बात बतायू तो चला हम तुम्हें ठू नीक के गौ नहीं सुनवाई दी, चला तू हम झूमर सुनवाई दी शशि जैन बहनी से, चला तुहू सुना और बहनी हरे भी सुने।

0: सरस्वती बहनी
1: देखा कितना नीके तुम झूमर सुनवाए,
0: बिल्कुल
1: तार हाथ पे तुम थिरकत रहा देख
0: और देखा हमारा हाथ पैर तो थिरकते रहा और बहिनी हरण के भी बहुत आनंद आए हुए
1: बिल्कुल
0: तो अब चंपा बहिनी का सुनवावे जात हो
1: तुम्हें तो हम बातचीत सुनवाई दी
0: हाँ?
1: खाना पकाने की आधुनिक विधियाँ और बारीकियाँ। मैं देख फराह नूर से बात किए हैं गीता सिंह बहनी, तो चला तुम सुना और बहनी हरे भी सुने।
0: खाना, जी हाँ, खाना सिर्फ हमारे तन को पुष्ट नहीं करता है, खाना हमारे मन को तृप्त भी करता है। यानी कि तन और मन दोनों के लिए अमृत है खाना, भोजन। तो क्यों ना अपने खाने को पौष्टिक बनाने के साथ साथ स्वादिष्ट भी हम बनाते हैं। तो इसमें जो बारीकियां इस्तेमाल होती हैं उसके बारे में कुछ जान लिया जाए। जैसे कि हम जानते हैं कुछ खाना तो हम तल के पकाते हैं, कुछ को उबालते हैं और कुछ को भाप से बनाते हैं, तो कुछ को हम भून के बनाते हैं। ऐसा क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? क्या उनका स्वाद बनाने के लिए या उनकी जो पोषक तत्व हैं उनको बरकरार रखने के लिए? तो चलिए आज हम इसी विषय पे चर्चा कर लेते हैं कि वर्तमान समय में खाना पकाने की कौन सी आधुनिक विधियां हैं और क्या बारीकियां हम इस्तेमाल करें। तो आज हमारे साथ पनघट पे मौजूद हैं फरहा नूर जी। फरहा नूर जी, पनघट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: फरहा जी, आप हमें बताएं कि वर्तमान समय में हम किन विधियों को, किन तरीकों को अपनाएं ताकि हम एक ऐसा भोजन बना सकें जो हमारे शरीर के लिए, मन के लिए बहुत फायदेमंद हो।
2: आज हम आपको बताने जा रहे हैं आज की आधुनिक विधियों के बारे में जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे कि खाना बनाने में रोस्टिंग, ग्रिलिंग। आज के लोग जो हैं बीमार ज्यादा रहते हैं, उनको तेल की कमी का खाना बहुत पसंद आता है जो कम तेलों में बनता है। रोस्टिंग में हम सब्जियां रोस्ट कर लेते हैं, आलू को रोस्ट कर लिए और ब्रेड को रोस्ट कर लिए और करके अच्छे से खा लेते हैं, जिससे हमारा पेट भी भर जाता है, हष्ट पुष्ट भी रहते हैं। ग्रिलिंग खाना जो है एक नई तकनीक में आई है जिसमें हम भोजन को सीधे धीमी आंच पे धीरे धीरे बनाते हैं। जब वो बनने लगता है ना उसमें धुआं रहता है ना उसमें किसी चीज का वो जलने का वो रहता है और हम बनाते हैं ग्रिलिंग करके।
0: क्या क्या चीजें आप ग्रिलिंग करके बनाती हैं फरहा जी?
2: जैसे हम बना लेते हैं तंदूरी बैगन, वेजिटेबल टिका, सारी सब्जियों को एक साथ करके ग्रिल कर सकते हैं। और ग्रिल करना भी बहुत आसान है आजकल।
0: अच्छा,
2: आजकल
0: हाँ, हाँ।
2: और उसको बनाने में भी बहुत परेशानी नहीं होती है, आराम से बन जाता है। और बड़े बच्चे,

0: सभी को ये पसंद आती है क्योंकि इसका स्वाद एक अनोखा होता है। इसमें मसाले भी कम लगते हैं, तेल की मात्रा भी कम रहती है, जिसे बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद है।
1: अच्छा, तो फरहा जी, अब इस समय देखिए मौसम तो बदल रहा है और उस हिसाब से हम खान पान में बदलाव करते हैं। जैसे मौसम के हिसाब से हम अपने कपड़ों को बदल लेते हैं ताकि हम ठंड से बच सकें या गर्मी से बच सकें। उसी हिसाब से हम अपने भोजन में भी बदलाव करते हैं अक्सर, ताकि हमें अधिक ठंड न लगे और गर्मी में अधिक गर्मी न लगे। तो अभी जो मौसम बदल रहा है उसमें आप जानती हैं कि भारतीय खान पान में रोटी का तो बहुत महत्व है। तो ठंड में हम अक्सर बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, मड़ुआ की रोटी अक्सर बनाते हैं। तो कुछ बताएं इसके बारे में।
0: अभी हम आपको बाजरे की रोटी के बारे में बता रहे हैं, जो बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी ठंड में बहुत ज्यादा ही लोगों को पसंद है और खाते हैं। बाजरे की रोटी इसी मौसम में ही खाई जाती है। मक्के की रोटी के साथ हम साग का प्रयोग बहुत अच्छे से करते हैं और लोग इसको पसंद भी करते हैं, बाजरे की रोटी की और मक्के की रोटी के साथ साग। साग भी कई तरीके से बनते हैं, जैसे लोग सरसों का साग, बथुआ, पालक,
1: हाँ, आप सही कह रही हैं कि देखिए हम
0: मिला के
1: लोग
0: बनाए साग।
1: बथुआ, हाँ, चना, पालक, कई तरह के साग मिलते हैं इस समय बाजार में, और रोटी के साथ में ये साग जो है सोने पे सुहागा हो जाता है हमारे लिए। तो आप बता रही थी कुछ इसी के बारे में, हम जानना चाहेंगे और।
0: जैसे आजकल बहुत सारी जो हमारी बहनें हैं उनके पास टाइम भी नहीं रहता है, और बड़े लोगों की विधि बनाने की दूसरी रहती थी, अब की बनाने की विधि दूसरी हो गई है।
1: अच्छा,
0: जैसे अब हम लोग हैं नई तकनीक से बना रहे हैं, जैसे अच्छे से आटा को मिला लिए, बाजरे का आटा और के आटे, तो पन्नी लेते हैं, पन्नी में थोड़ा तेल लगा के फिर उसको रख के बीच में बेलन से बेल के हम लोग ऐसे बना लेते हैं, जो आसानी से बन जाता है। बाजरे की रोटी के साथ हम गुड़ का सेवन करते हैं, गुड़ घी का, तो ठंड में ये बहुत ही लाभदायक रहता है, जिसे लोग बहुत अच्छे से पसंद
1: शरीर
0: भी
1: में
0: कर रहे हैं,
1: गर्माहट रहती
0: शरीर में
1: है,
0: गर्माहट रहती है।
1: बुजुर्गों के लिए
0: हाँ,
1: भी
0: बुजुर्गों के लिए भी, और
1: फायदेमंद
0: बच्चे जो
1: है।
0: हैं थोड़ा बड़ों को देख के पसंद करते हैं कि हाँ हम लोगों को भी खाना चाहिए।
1: ये
0: और
1: तो सही बताया आपने फरहा जी। और इसके अलावा भी कुछ तकनीकों का आप जिक्र करना चाहेंगी?
0: हाँ, जिक्र क्यों नहीं करना चाहेंगे, जैसे आप ठंडी आ रही है और आलू के पराठे हुए, गोभी के पराठे हुए और बथुआ के पराठे हुए, लोग इनको भी बहुत दही के साथ पसंद करते हैं, साग के साथ पसंद करते हैं, अचार के साथ पसंद करते हैं। हम इसके बारे में आपको बताते हैं। पराठा तो कई प्रकार का बनता है, मगर गर्मियों में दूसरा रहता है, ठंडियों में दूसरा रहता है। जैसे आलू के पराठे हुए, बच्चों को पसंद आता है, गोभी मूली का पराठा हुआ बड़ों को पसंद आता है, और बथुआ का पराठा तो सारे बच्चे अच्छे से खा लेते हैं क्योंकि पौष्टिक भी होता है, अच्छा भी रहता है।
1: तो कुछ विशेष तकनीक आप बताएंगी जिसका आप इस्तेमाल करती हैं?
0: पराठे तो हम लोग आटे का ही बनाते हैं, गोभी को हम लोग घिस लिए, उसको रख दिए।
1: मेरा कहने का ये मतलब था फरहा जी, कई बार हम लोग जो है समय की कमी होने की वजह से क्या करते हैं कि जो हमारा जैसे गोभी है या मूली है उसे घिस लेते हैं और आटे में ही सीधे गूंथ देते हैं, और कई बार हम क्या करते हैं कि उसे
0: उसमें
1: अलग रखते
0: हाँ
1: हैं
0: अलग रखते हैं, भर
1: और
0: के बनाते हैं।
1: हाँ, तो समय को देखते हुए हम लोग उस तरह से करते हैं, लेकिन दोनों के स्वाद में भी अंतर आ जाता
0: हाँ, दोनों
1: है।
0: में अंतर रहता है,
1: हाँ, तो
0: भरने वाले का स्वाद अलग रहता है और मिला के गूंद के वाले का स्वाद अलग रहता है, और दोनों का अगर स्वाद अलग अलग ना हुआ तो अच्छा ही नहीं आएगा।
1: और क्या क्या बारीकियां फरहा जी आप हमें बताएंगे जिनका हम ध्यान रखें?
0: जैसे पराठा बनाने के लिए हम आटा को गूंदते हैं, उसमें थोड़ा नमक, अजवाइन, तेल डाल के बनाएंगे तो वो पराठा आपका फटेगा भी नहीं, चिपकेगा भी नहीं, वो आसानी से बेल जाएगा, बेलन से जब हम उसको बेलेंगे तो आसानी से बेल जाएगा।
1: अच्छा।
0: नहीं तो गोभी का पराठा फटने का भी डर रहता है, और बथुए का पराठा, बथुआ हम लोग उबाल के बनाते हैं, अच्छा लगता है, सर्दियों में तो इसको लोग बहुत अच्छे से खाते हैं।
1: अच्छा, तो ये तमाम तरीके तो आपने बताए, इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आजकल बाजार में तमाम तरीके के अलग अलग बर्तन भी उपलब्ध हैं खाना बनाने के लिए, है ना। तो जैसे हम लोग इडली बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं, है ना, कई चीजों को जो है भाप लगा करके बनाते हैं। तो ये अलग अलग जो बर्तन उपलब्ध हैं, तो ये क्या प्रासंगिक हैं आज के समय में? मतलब हमें कहीं ऐसा तो नहीं हम इन्हें खरीद के अपने घर में सिर्फ भीड़ लगाते हैं, या सच में इनसे कुछ

0: सहायता मिल जाती है खाना पकाने
1: नहीं
0: में?
1: नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इनसे अच्छे से पकाया जाता है, भीड़ नहीं लगाते हैं। कभी कोई आ गया, कभी कोई त्योहार आया, कोई मेहमान आ गया, तो हम लोग जल्दी में ढोकला बना दिए, तो वो बर्तन वेस्ट नहीं जाता है। ढोकली के लिए छलनी लेते हैं, एक बड़ा सा, थोड़ा सा बड़ा भगोना लेते हैं, उसी में रख के, फिर छन्नी पे रख के उसको अच्छे से ढक देते हैं, फिर ढोकला हमारा अच्छे से तैयार हो जाता है। इडली के लिए भी, वेजिटेबल भी ऐसे ही, हम मतलब सब्जियां हम लोग ऐसे ही उबाल लेते हैं। अगर सब्जियां उबाल लिए और उसको फिर से फ्राई करके बनाएं तो भी सब्जियां बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट हो जाती हैं।
0: अच्छा फरा जी, सिर्फ मतलब जो भाप से हमने पकाया उसमें तो हमारा जितना भी पोषक तत्व रहता है वो सब
1: हाँ,
0: सुरक्षित रहता है?
1: वो सब सुरक्षित रहता है
0: हाँ,
1: क्योंकि वो खराब होगा ही नहीं, इसलिए
0: ये
1: कि
0: तो
1: वो,
0: बहुत ही बढ़िया तकनीक है, क्योंकि अक्सर धुएं में कई सारे विटामिन भी चले जाते हैं। तो फरहा जी, जैसे हम धीमी आंच पे कुछ चीजों को पकाते हैं, है ना, तो ऐसी भी कुछ तकनीक है जिससे हम किन किन चीजों को धीमी आंच पे पका सकते हैं?
1: धीमी आंच पे पकाने के लिए जैसे हम सब्जियों की बिरयानी बनाएं या मटर पुलाव बनाएं, ये सब हम लोग, अब ठंडी आ रहा है तो मटर का सेवन तो लोग
0: बढ़
1: अधिक मात्रा
0: जाएगा
1: में हाँ
0: जी।
1: करेंगे ही, तो वेजिटेबल मतलब सब्जियों का कोरमा बनाएं, तो ये सब हम लोग धीमी आंच पे बनाएंगे क्योंकि धीमी आंच पे ये जलेगा नहीं, ना जलेगा और कम तेल में बन जाता है
0: हाँ,
1: जी।
0: जैसे कि कई लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ही परहेज करना पड़ता है, उनके लिए सही रहता
1: हाँ,
0: है तो।
1: परहेज खाने में हम लोग सॉफ्टिंग विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े से पैन में, पैन
0: हाँ
1: आजकल जो चला है बाजार में नया आया है,
0: हाँ
1: उसमें
0: हाँ
1: थोड़े से तेल की मात्रा में हम लोग अच्छे से सब्जियां बना सकते हैं और ये कम तेल में तेज आंच पे भी अच्छे से बन जाता है। इसका स्वाद भी वैसे ही रहता है जैसा आपको चाहिए और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, जिसमें हम बना सकते हैं पनीर का टिक्का बना सकते हैं धीमी आंच पे कम तेल में, मिक्स वेजिटेबल स्टार फ्राई भी कर सकते हैं, मतलब आलू को थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में काट के फ्राई कर सकते हैं, गोभी को, शिमला मिर्चा सब अच्छे से फ्राई करके नमक के साथ खा सकते हैं, पालक पनीर भी हम धीमी आंच पे बनाते हैं।
0: अच्छा, तो फरहा जी, आपने इतनी सारी अच्छी अच्छी जानकारी हम लोगों को दी, अपना समय निकाला और पनघट पे आई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद।
2: सरस्वती बहनी,
3: चंपा, देखा तू बातचीत सुन रही हूँ, अब समय है एक ठे तो का हम गारी गीत सुनवाई, है ना,
2: सुनाए दो
3: चला सुन लीन जाए
2: शशि
3: शशि
2: जैन
3: जैन जी
2: बहनी
3: से।
2: से।

0: सरस्वती बहनी तुम्हें तो नीक गाड़ी सुनवाए,
1: हाँ
0: मजा तो आई गई
1: हाँ
0: तुम्हें गाड़ी वाड़ी बहुत पसंद है ना
1: हाँ
0: काहे की।
1: अच्छा बतावा चंपा बहनी, लोगवा देत काहे गाड़ी?
0: बताए दे बाबू
1: बतावा बतावा।
0: अब शादी ब्याह में देखा होत ना है,
1: हाँ
0: भसुर लोग आवत हैं तब
1: हाँ
0: गाड़ी होत है, शादी वादी होत है तब गाड़ी होत है,
1: हाँ बिल्कुल सही
0: तिलक
1: कहा
0: उलक
1: थी।
0: चढ़ा था शायद सुने थे उसमें गाड़ी वाड़ी होत
1: हाँ
0: है।
1: और कितना अच्छा लागत है ना,
0: हाँ
1: मीठी मीठी गाड़ी ना। तो चला अब गाड़ी वाड़ी तो सुन ली तू है
0: हाँ
1: ना, अब चला तू ई बतावा कि जब छुट्टी पड़ी रही तेरे लइकवन के
0: हाँ
1: स्कूले से तो तू घर गई रहू
0: बिल्कुल, हम तो नैहरे गए
1: और
0: 10 दिन, गए
1: देखा।
0: ससुराल रहे 10 दिन, नैहरे गए रहे।
1: अच्छा और चंपा बहनी हम तो क्या अपन बात बतावा थे, हम हूँ अपने मायके चली गई रहे।
0: अच्छा
1: हाँ लगभग 20 से 25 दिन हुआ बिताए।
0: अच्छा
1: और जब वहाँ से हम आए तो अपने रसोईया के हाल देख के तो हम एकदम दंग रह गए।
0: कब है?
1: अरे हमार मन से धू जौन
0: अच्छा
1: है दिन भर ड्यूटी करे और जब
0: हाँ
1: सांझ के आवे जल्दी जल्दी दुई रोटी से

0: के खाए ले। अच्छा। साफ सफाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते रहे। अब हम जब आए तो इतना काम हमरे बदे, हम कही अरे तो माथा पकड़ लिए चंपा बहनी, हम कैसे इतना करब।
1: बिल्कुल, काहे कि देखा जो ने एक औरत संभाल लेते घर के बढ़िया से, किचन के रसोई के, वो एक आदमी उतना बढ़िया से, काहे कि दिन भर उतने तो अपन ड्यूटी करे खाए।
0: बिल्कुल सही कहा,
1: अपन दो रोटी बनाइन खाइन, अपन टिफिन दरी लेके चला गए, फिर शाम के आए फिर दो रोटी बनाइन खाइन, फिर थकी जाता आदमी तो का करे, कितना साफ सफाई।
0: वही चंपा बहनी, हम उनसे कहे कि अगर आप रोज साफ सफाई कर देते तो हमें कितना आराम हो जाता। लेकिन देखा उनके काम रहा था, है ना, और उनकर आदतों ना ही रहा था, है ना, और हम सब के आदत रहा था, और हम सब एक जिम्मेदार तरीके से रसोई के संभारत थे, है ना। तो देखा रसोई में साफ सफाई बहुत ही जरूरी है। एकर चर्चा चला बहनी हरन से भी कैलिन जाए कि देखा स्वच्छता जौन है जीवन में हर कोने कोने में हर एक आयाम का जौन है ध्यान देवे के चाहिए, और स्वच्छता हर ओर होवे के चाहिए।
1: बिल्कुल, है ना, रसोई घर में नहीं।
0: तो देखा रसोई घर में विशेष सावधानी बरते के चाहिए, काहे कि पूरा परिवार है ना, पूरे परिवार के सदस्य जौन है हमरे साफ सफाई रखे से उनपे असर पड़त है, सब निर्भर करत है। हम देखा साफ सफाई से खाना बनाए, साफ सफाई से पानी रखब, तो हमरे परिवार के सब सदस्य स्वस्थ रही है।
1: कुछ हम सब निकाले जाती है रसोई में, तो पहले हाथ धुल लिया अपन बढ़िया से, और तब ओकर निकाले, और पानी के देखो इसमें तो गर्मी है, देखो मटकम पानी कितना ठंडा रहा है, तो कई बदे पानी बड़ी वाली जो होता है डंडी वाली, हाँ। कलछी रख दें, हाँ। पानी निकाले बदे, तो उसे का होता है कीटाणु होते हैं वो पानी के अंदर ना ही प्रवेश कर पाई है।
0: और देखा मटका के भी समय समय पे धूप में सुखाए, हाँ, लेवा करे, ना कि पानी भर देवा गा है उनमें, तो बस भरते जाए पीते जाए, बीच बीच में चार दिन पांच दिन बाद में उसका धूप दिखाए दे, है ना। और जैसे कई घरन में आजकल मशीन लगी है पानी वाली, है ना, आरो, तो ओका भी सर्विसिंग समय समय पे कराते रहे, है ना। हाँ, तो ऐसे का होता अपन पानी पिए वाला भी स्वच्छ रहता। हम सब एक कई बार का करती नल से जौन पानी आवत है सीधे ओका पी लेती। आजकल तरह तरह के बीमारी उसे उत्पन्न हो जाते हैं, तो देखा पानी के भी खास ध्यान रखे, चाहे तो के गर्म करके या फिटकरी से, है ना, ओका शुद्ध कर ले तब ओका ग्रहण करे। यही तरीके से
1: रसोईया के जो डिब्बा होता है वो सबके हम सबके बराबर साफ करत रहे चाहिए, और दाल है चावल है उसका साफ करके अपन रख दे दो चार दिन के बदे, साफ करके फिर बनावे, फिर खत्म हुए फिर साफ करके रख दे।
0: और थोड़े सतर्कता बहुत जरूरी है चंपा बहनी रसोई घर में, कि देखा देखत रहे कि जो चावल है गेहूं है रसोई घर में, चाहे आटा बा, है ना, तो और जो मसाला वसाला बा, और जौन तेल आदि अचार खाद्य पदार्थ जौनो भी हो, सब का बहुत ध्यान रखे की जरूरत है। कई बार हम सब ऐसे नमी वाली जगह में रख देती अनाज के कि उसमें सड़न पैदा,
1: हाँ,
0: हो जाता
1: लग जाता है
0: ना, तो उसका देखत रहे कि कहीं हमारा अनाज खराब तो नहीं होता। आजकल देखा जगह का भी कमी हो जाता है, तो कहीं रखे के पड़ा था संभार के, तो उसका बराबर देखत रहे कि कहीं चूहा उसका खराब तो नहीं करत,
1: हाँ, है कीड़ा ना लागत है,
0: उसका समय समय पर जांचत रहे। और जैसे घर में अचार है मसाला है, देखत रहे कि कहीं नमी के कारण फफूंद उफूंद तो नहीं आवत है, है ना, कई बार मसाला जोन है एकदम खराब हो जाता है, और हम सब ओकर इस्तेमाल करत रहती, है ना, तो एक हाँ ओका जोन
1: है घर में जो कूड़ा निकलता है, हाँ, थोड़ा थोड़ा जो निकलता है सब्जी छिले हम लोग आलू छिले कुछ भी सब्जी हुए, तो का काकड़े कूड़ादान में रखे, वह कूड़ादान में रखे ढक्कनदार हुए,
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि ओकर महक होता ना कितना, मतलब पूरा अगर रात में देखा हम सब कभी कभार होता छूटल छूट जाता ढक्कन नहीं बंद कर पाए, तो सुबह उठो जब देखो रसोईया पूरा एकदम महक जाता है,
0: महक जाते, बिल्कुल सही कहा,
1: तो हमेशा ढक्कनदार जो होते हैं ओका यूज करें।
0: बिल्कुल सही कहा, तो डस्टबिन के इस्तेमाल करे से पहले जो है ध्यान रखे कि ढक्कन वाला होए, ये बहुत अच्छी बात बताओ, कहीं मक्खी मच्छर वहीं से पैदा होते हैं और सब खाद्य पदार्थ के जीवाणु विषाणु से दूषित करते हैं, है ना।
1: अब बिल्कुल साथ देखो बर्तन धोई थे हम सब, तो उसका ध्यान देवे चाहिए साफ पानी से धोई,
0: और जो माजे वाला जो है जूना है देखा ओका भी साफ सुथरा रखे,
1: बदलत रहे
0: समय समय पे, ओका भी बदलत रहे, कहे कि उमा भी बहुत जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं,
1: बिल्कुल,
0: है ना, तो ये सब ध्यान रखें, और नमी से सीलन से अपने खाद्य पदार्थ के बचावें, हाथ धो के खाना पकावें, पानी के भी हम बताए हैं कि ओकर ध्यान रखें,
1: समय पे रसोईया के साफ भी करत रहें,
0: बिल्कुल। और देखा अपने रसोईया में सूती के कुछ कपड़ा जरूर रखें, समय समय पे आप बार बार हाथ धोए के

0: पढ़ाते हैं
1: या कुछ तो, नहीं अब कुछ ऐसा पुछो कर दिया अब कुछ उतारे के बदे भी रखे हैं, काहे कि और कौन सा कपड़ा होता ना वो चिपक लेता है या फिर थोड़ा सा में आग लगा तो
0: पकड़ लेते
1: कपड़ा पकड़ लेते हैं।
0: और सूती कपड़ा से तो सफाई भी बहुत अच्छे से होता है और हाथ भी अच्छे से पोछाए जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और देखा बहनी हम ये कह चाहते कि रात के सोवे से पहले अपने चूल्हा के यानी रसोई के तो करे करे चूल्हा के भी जरूर पोछ ले। जैसे हम सभी रोटी बनाए ही तो कुछ आटा इधर उधर बिखर जाते है, ऐसे का होते है काकरोच ओकरोच आवे की शंका रहते, चूहा आवे की शंका रहते है ना, और इसे बहुत खतरनाक परिस्थिति उत्पन्न हो जाता है।
1: और देखा रात में फिर कहूँ जाए तो अपन जो होता है सिलेंडर का रेगुलेटर जो होता है ना वो का हमेशा बंद करके रखना चाहिए।
0: और देखा स्वच्छता की हम सब बात कर रही थी चंपा बहनी, तो ध्यान रखें कि जो ना स्वच्छता के साथ साथ सतर्कता भी जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: तो देखा तू इतनी अच्छी अच्छी बात बताऊ तो चला हम तुम्हें नीक के फिल्मी गीत सुनवा दी मिलन फिल्म से, चला तुम सुना बहनियारे भी सुने।

0: आ चंपा, एक थे जरूरी ईमेल संदेश सुन ला।
1: तो चला सुन लिया जाए।
0: पनघट जहाँ बातन में होता है अपनेपन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे, बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे। ये हम सब का आपस में जोड़े का एक अदृश्य डोर है। बहनी हरन, हमें बहुत खुशी हुए अगर आपो पनघट का हिस्सा बनी है।
2: हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत है और इमा आप नवा का जोड़े चाहत है। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
3: हमारा ईमेल एड्रेस है
4: pangatprogram@gmail.com। स्पेलिंग है PANGATPROGRAM@gmail.com। pangatprogram@gmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
3: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 800-4926-250। तो सखियन, देर कोने बात के तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सब के
5: बेसब्री से इंतजार रही।
1: चंपा,
6: हम सबके भी इंतजार है बहनी हरण के।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और चंपा देखा, अब स्कूल खुले वाला बा।
6: बिल्कुल।
0: तो देखा सब बहनी हरन एकदम तैयार हो जाए, लड़का बच्चा के जो ना कपड़ा स्कूल वाला,
6: कॉपी किताब,
0: हाँ
6: पेन
0: खोज के रख ले, और जो चीज के कमी हो ओका बाजार से खरीद ले। का कहत हो?
6: बिल्कुल सही कहत हो बहनी। और चला देखा, घड़ी सारा करत है, घरे चले के बेला होते। राम राम किया जाए बहनी हरन से।
0: राम राम बहनी हरे।

0: record of 16 goals to become the highest goal scorer in World Cup history. In a super clash, Argentina defeated Austria 2-0 in their Group J match in Arlington, United States last night to secure a place in the round of 32. With this win, Argentina has entered the knockout stage. Meanwhile, Algeria thrashed debutants Jordan 2-1 in a Group J encounter in Santa Clara, USA today. In hockey, the Indian men's hockey team will take on arch rivals Pakistan in the opening match of the FIH Pro League today. This will be the first encounter between India and Pakistan since their Asian Champions Trophy clash in Hulunbuir, China in 2024, where India emerged victorious with a 2-1 win. Benchmark domestic equity indices were trading nearly 1% lower in the afternoon session today. The Sensex plunged 653 points to 76,441, while the Nifty lost 220 points to 23,883 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Home Minister Amit Shah says Shyama Prasad Mukherjee's dream realized with abrogation of Article 370. National Security Advisor Ajit Doval says opening of Strait of Hormuz will strengthen energy security around the world. Enforcement Directorate conducts searches at 18 places in Tamil Nadu in connection with alleged teacher recruitment exam manipulation case. Lionel Messi becomes the highest goal scorer in FIFA World Cup history, leads Argentina into knockout stage, and in hockey, India to face Pakistan in opening match of FIH Pro League in London today. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा हुर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में एफआईएच हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मेहराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है। तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को

0: किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये कार्यक्रम आज एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉ मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
1: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
2: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
1: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीदकारों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
2: आने वाले दो सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से ना आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है, और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
1: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा ये संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
2: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत की, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
3: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
4: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक

0: खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिर और भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमरीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमरीका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमरीका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार 3rd दिन भी बारिश हो रही है।
3: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ श्यामा

0: प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से, और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना। हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओ, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना। लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओ, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओ, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर

0: प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओं, इस नाम के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि यह नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओं, अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओं, इसके पीछे बड़ा मनोरंजक किस्सा है। वहां के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं, जो पुरापाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीम बैठका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओं, आप जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओं, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओं, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों के दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीम बैठका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओं, भीम बैठका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी वसंती। श्रोताओं, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री वसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया, मां की गोद ने और नदियों की घाटियों में। हजारों हजारों साल से मां ने हमें

सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस मां के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन।
1: बसंती, अरे बसी, ओ बसी कहाँ है तू?
2: अरे बुआ क्यों चिल्ला रही हो? मैं यहाँ बुरांस के फूल चुन रही हूँ।
1: अरे क्या करेगी इनका तू है?
2: क्या करूँगी? गमकुआ इतर बनाऊंगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे शरबत बनता है? तो शरबत बनाऊंगी।
1: अरे बसी तू बिल्कुल बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हा? चल कर चल। अरे चल सब खोज रहे हैं तुझे। अरे चल ना जल्दी कर।
2: नहीं।

0: गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

मैं तो बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई बेटी। अरे तू विधवा हो गई।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई।

0: पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसीदी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चलो चलो।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका उपाय क्या है, क्या करें? हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए। कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

अब हम लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहां सुबह सवेरे झोला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही हैं। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रही थी। बसंती दीदी समझ गई कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।

0: आणि चल ना जल्दी कर ना,
1: जल्दी जल्दी पैर बढ़ा,
2: लकड़ियां काट के लानी है। अरे कहाँ जा रही हो बहनों, क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
3: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियां काटने।
2: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियां मत काटना।
4: वो भला क्यों? हाँ, तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
2: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
3: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
4: हाँ।
3: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
4: और क्या
3: है, आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
4: हाँ?
2: आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
3: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
2: आमा इसका जवाब तेरे पास है।
3: मेरे पास?
2: हाँ तेरे पास। आमा तुम इन सबको बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है?
3: कोसी बनी कैसे, ये कैसा सवाल? हाँ? है क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांश के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ?
4: और क्या?
3: है।
2: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
4: घटेगा।
3: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई। खाली हमारे समझने से क्या होता है, हम अकेले क्या कर सके हैं?
2: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
3: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
4: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो
0: चलो
4: चलो
0: चलो।
4: हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते हैं।
5: और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांवों में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं।

सभाएं की जाएं,

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे उमंग। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। 3 बजे हैं, हमारी आज की ये सभा अब समाप्त होती है। 3:55 पर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। श्रोताओं, हमारे विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। 3:55 हुए हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा आरंभ होती है। कृपया हमारे विशेष प्रसारण की कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

फिल्म संगीत कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाने जा रहे हैं कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज़ों में समीर की गीत रचना। संगीत नदीम श्रवण का, फिल्म का नाम सैनिक।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, धरती के गीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कृष्ण कुमार सत्यार्थी के गाए कुछ लोकगीत। इनके स्वर में पहले प्रस्तुत है एक देवी गीत।

धरती के गीत कार्यक्रम के कलाकार थे कृष्ण कुमार सत्यार्थी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। एक संदेश के बाद युवजन सुनेंगे

0: अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: 93.3 FM by the studio clock. शाम के बज चुके हैं 5:15 एंड यू हैव ट्यून्ड योर फेवरेट यूथ प्रोग्राम युवाणी, जहां मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट साक्षी पांडे,
1: और एक बार फिर मैं हूं आपका रेडियो होस्ट एंड दोस्त अभिषेक। और आज हम बात करने वाले हैं कैसे खास दिन की, जो उन लोगों को समर्पित है जो दिन रात हमारे आसपास समाज में और देश की सेवा में लगे रहते हैं।
0: क्योंकि दोस्तों आज है 23 जून और जैसा कि आप जानते हैं आज है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, यानी यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। फ्रेंड्स, दिस डे रिमाइंड्स अस दैट पब्लिक सर्विस इज नॉट जस्ट अ जॉब, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट टू सोसाइटी।
1: दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम अस्पताल जाते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, पुलिस हमारी सुरक्षा करती है, बिजली पानी जैसी सुविधाएं मिलती हैं, तो इसके पीछे कितने लोग मेहनत कर रहे होते हैं?
0: जी हाँ, शिक्षक, डॉक्टर्स, नर्स, पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी और ऐसे अनेक सरकारी कर्मचारी इन सभी सेवाओं में अपनी हिस्सेदारी निभाते हैं।
1: इसलिए साल 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 23 जून को यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे के रूप में मनाने का डिसीजन लिया था।
0: दोस्तों, इस डे का जो उद्देश्य है वो है लोक सेवा के महत्व को पहचान देना, जनता की सेवा में लगे लोगों का सम्मान करना और युवाओं को भी सेवा के क्षेत्र में आगे आने के लिए उन्हें प्रेरित करना।
1: इन सिंपल वर्ड्स, ये दिन हमें याद दिलाता है कि गुड गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस मेक अ नेशन स्ट्रॉन्गर।
0: और दोस्तों, अगर एक दिन के लिए डॉक्टर, शिक्षक, पुलिस या सफाई कर्मचारी काम पर ना आए तो आप बताइए कि क्या होगा।
1: सोचिए जीवन कितना कठिन हो जाएगा ना साक्षी। इसलिए कहा जाता है कि जो समाज की सेवा करता है वही राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान भी देता है।
0: दोस्तों, भारत में भी लोक सेवा की एक समृद्ध परंपरा रही है। हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे टीचर्स हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, रेलवे कर्मचारी हैं, सोल्जर्स हैं, वो अनेक सरकारी सेवक देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: और साथियों, आज के डिजिटल इंडिया के दौर में लोक सेवा भी स्मार्ट और डिजिटल हो रही है। ऑनलाइन सर्विसेज, डिजिलॉक, UPI, ई गवर्नेंस जैसी सुविधाओं ने लोगों का जीवन कितना आसान बना दिया है।
0: और यही तो है स्मार्ट गवर्नेंस फॉर बेटर फ्यूचर। तो दोस्तों, एक छोटा सा सवाल अभिषेक तुमसे भी।
1: बिल्कुल।
0: कि अगर एक दिन के लिए डॉक्टर्स, टीचर्स, पुलिस या सफाई कर्मचारी काम पर ना आए तो क्या होगा?
1: साक्षी, हमने देखा है कि जब भी हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, कभी अस्पताल जाते हैं या किसी ट्रैवल पर जाते हैं, तो रेलवे स्टेशन पे देखते हैं कि एक हुजूम, एक मेला हमें हर जगह दिखाई पड़ता है। तो अगर डॉक्टर्स काम पर नहीं होंगे तो कितने लोगों का इलाज बाधित होगा, शिक्षक अगर स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे तो बच्चों की एजुकेशन कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है, और अगर रेलवे स्टॉप हो जाए तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब।

0: जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये हमारे देश की जीडीपी में और देश की व्यवस्था को बनाए रखने में, उसे सुचारू रूप से संचालित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं।
1: यानी हम कह सकते हैं कि हमारा देश एक दिन पीछे हो जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: और ये हमें लगता है कि एक दिन, जैसे कि आप ही अपनी खुद की लाइफ में ये देख सकते हैं कि अगर आपने अपना असाइनमेंट अगर एक दिन दो दिन अगर आपने गैप कर दिया कि हम कल कर लेंगे, वो जो पेंडिंग वर्क होता है वो आपके ऊपर कितना लोड डालता है, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे का भी काम करना है और जो आपने पिछला छोड़ के रखा है उसको भी कंप्लीट करना है।
0: बिल्कुल। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये सीढ़ी दर सीढ़ी जो चीज़ें हैं ना, एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। अगर हमारा पिछला काम, पिछली व्यवस्था ठीक होगी तो हम कल को उसके अगले स्टेप को और अधिक बेहतर बना सकते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, तो हमें इससे समझ में आता है कि समाज सेवा जो होती है, यानी जो लोग सेवा लोग करते हैं वो कितना इम्पॉर्टेंट है, उनका काम कितना इम्पॉर्टेंट है। वो अलग लोग अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और अगर एक दिन ये रुक जाए तो जीवन कितना कठिन हो जाएगा।
0: हाँ, ये चाहे हम अपर बॉडी की बात करें या किसी बड़ी अथॉरिटी की बात करें या लोकल स्तर की बात करें, जब हम अपने आसपास कोई काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं या सोशल सर्विस की जब बात करते हैं, तो सभी इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और सभी का एक इम्पॉर्टेंस है जो अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो साक्षी, मुझे लगता है अभी हमारे पास बहुत सारी बातें हैं इस विषय पर बात करने के लिए, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और सुनवाते चलते हैं अपने श्रोताओं को ये गीत।

0: वेलकम बैक दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के बारे में, और हमने जाना कि लोक सेवा कितना इम्पोर्टेंट है, और जो लोग लोक सेवा में योगदान दे रहे हैं वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि अलग अलग फील्ड में वो अपना अलग अलग योगदान देते हैं, और कुल मिलाकर वो हमारे राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान देते हैं।
1: बिल्कुल
0: और अगर आप भी सिविल सर्विसेज, डॉक्टर्स, शिक्षक या किसी भी सेवा क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो याद रखिए, सक्सेस इज़ नॉट ओनली अबाउट अर्निंग मनी, इट इज़ अबाउट सर्विंग ह्यूमैनिटी।
1: और समाज की सेवा करने का मतलब साथियों सिर्फ एक अच्छी नौकरी नहीं होती है, क्योंकि हम काम तो जीवन में बहुत सारे करते हैं, बदल बदल के कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा नागरिक बनना, नियमों का पालन करना, अपने अंदर इंसानियत को जगाना, दूसरों की मदद करना, दयालु होना और अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी निभाना, उनके प्रति ईमानदार रहना, कहीं ना कहीं ये सब भी लोक सेवा के अच्छे उदाहरण हैं।
0: दोस्तों, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए।
1: और यही भावना लोक सेवा की असली पहचान है, निस्वार्थ सेवा और समर्पण।
0: दोस्तों, इस वर्ष जो लोक सेवा का जो थीम है, लोक सेवा दिवस का जो थीम है, वो है लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रभावी और समावेशी लोक सेवा। फ्रेंड्स, रिमेम्बर, पब्लिक सर्विस इज द ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल।
1: और सेवा का भाव केवल पद से नहीं आता साक्षी, बल्कि ये आता है हमारी व्यक्तिगत सोच से, हमारे कर्तव्यों से और हमारे कर्मों से।
0: बिल्कुल, जैसे कि अगर आप किसी जैसे हम बाह भी हमने कई बार डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सिविल सर्विसेज की बात की, तो अगर आप डॉक्टर हैं तो आप पेशेंट्स को आप देख ही रहे हैं अपनी ड्यूटी टाइम में, लेकिन अगर आप समाज को और सर्विस देना चाहते हैं, है ना, बिना अर्निंग के इंटेंशन के साथ, तो आप अलग से जो फ्री पेशेंट्स का इलाज कर सकते हैं
1: हाँ,
0: आप।
1: व्यक्तिगत तौर पर भी हम बहुत सारे योगदान अपना दे सकते हैं अपनी
0: हाँ
1: सोसाइटी में। जैसे कि अपर लेवल की बात करें तो गवर्नमेंट बॉडी या अथॉरिटीज़, बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ होती हैं जो हमारे लिए काम करती हैं, अपने राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करती हैं।

0: लेकिन सवाल ये है ना कि हम क्या कर सकते हैं व्यक्तिगत तौर पर अपने आसपास के क्षेत्र को सुंदर बनाने के लिए, उसको डेवलप बनाने के लिए। तो हम ऐसे साक्षी छोटे छोटे काम कर सकते हैं, जैसे दूसरों की हेल्प करके, अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पौधे लगा करके, उसको हरा भरा बना करके,
1: बिल्कुल
0: है ना। और कई बार ऐसा होता है कि नहीं, हम काम की तलाश में बहुत ज़्यादा भटकते हैं और ख़ुद की कंपेयर दूसरों से करते हैं और कहीं ना कहीं हम मायूस हो जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो हमें भी
1: अक्षय,
0: कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ ऐसे तरीके सोचने होंगे कि हम व्यक्तिगत तौर पर भी कुछ काम कर सकें और कहीं ना कहीं अपना जीवन आगे की दिशा में बढ़ा सकें।
1: जैसे अभिषेक ने कहा कि आप पौधे लगा सकते हैं, तो आप ही सोच सकते हैं कि ये लोक सेवा में कैसे योगदान दे रहा है। डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत ज़रूरी है ये।
0: बहुत ज़रूरी है।
1: क्लाइमेट चेंज पर आजकल बहुत डिस्कशन चल रहा है, ये कई
0: हाँ
1: सालों से चल रहा है, और इस पे जो और इसकी जो चिंता है वो काफ़ी बढ़ गई है ना। अगर आप एक पौधा लगाएंगे, है ना, अगर आप सिर्फ पौधा लगाना ही नहीं, क्लाइमेट चेंज में और भी चीज़ें हैं, है ना, तो अगर आप उस पर काम करेंगे तो इससे क्या होगा कि इनडायरेक्टली समाज पर असर पड़ेगा, है ना।
0: बिल्कुल।
1: टेम्परेचर कम होगा, एनवायरमेंट अच्छा रहेगा, तो समाज में रह रहे लोग भी अच्छे से जीवन जी सकेंगे। उनका जो उनको जो हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, मौलिक अधिकार के आर्टिकल 21, है ना, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, तो आप
0: बिल्कुल
1: उसमें योगदान दे सकते हैं, तो इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है।
0: बिल्कुल
1: साथ में आप जो इतने सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म, आजकल ई गवर्नेंस का टाइम चल रहा है अभिषेक, तो जो लोग उस तक उसके बारे में अवेयर नहीं है, वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं सही से, जो वृद्धजन हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, तो
0: हाँ
1: आप उनको समझा सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। उन तक अवेयरनेस फैलाकर, यानी कि यूथ, हमारा जो बेसिक यूथ्स है, वो इस तरह के ई प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बहुत सारी अवेयरनेस फैलाकर अपने आसपास, वो भी कहीं ना कहीं पब्लिक सर्विस में अपना योगदान दे सकता है। तो
1: बिल्कुल
0: साक्षी, बहुत सारी बातें की हमने और आगे भी करेंगे कुछ बातें। लेकिन दोस्तों, आइए इस संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस पर हम संकल्प लें कि हम एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और अपने समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देंगे।

0: तो दोस्तों, अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आज के प्रेरणा पुंज की। साथियों, इतिहास केवल बीते हुए समय की कहानी नहीं होता, बल्कि वो वर्तमान को दिशा और भविष्य को प्रेरणा देने वाला प्रकाश स्तंभ भी होता है। अब हम आज की प्रेरणा शक्ति के रूप में बात करेंगे एक ऐसे ही महान शिक्षाविद, राष्ट्रवादी चिंतक और दूरदर्शी नेता की, जिनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा का अनमोल स्रोत है। और वो नाम है बहुमुखी प्रतिभा के धनी और शिक्षाविद के रूप में विख्यात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी।
1: दोस्तों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि दृढ़ संकल्प, राष्ट्रभक्ति और शिक्षा के प्रति समर्पण के बल पर व्यक्ति समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
0: डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी प्रसिद्ध शिक्षाविद और न्यायविद थे, जिन्हें बंगाल का बाघ कहा जाता था।
1: बचपन से ही श्यामा प्रसाद जी बहुत मेधावी थे। उन्होंने अपनी शिक्षा में कई उपलब्धियां हासिल की और बहुत कम उम्र में ही शैक्षणिक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना ली।
0: और साथ ही 33 वर्ष की आयु में वो कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने और 8 अगस्त 1934 से 7 अगस्त 1938 तक वहाँ के कुलपति रहे। ये उपलब्धि आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि कम उम्र साक्षी किसी को काम को करने में हमारी उम्र कभी बाधा नहीं बन सकती, बल्कि प्रतिभा और समर्पण ही सफलता का आधार होते हैं।
1: डॉक्टर मुखर्जी का मानना था कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार उसकी शिक्षा व्यवस्था होती है। उन्होंने शिक्षा को लेकर डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण का साधन माना।
0: साथियों, आज जब युवा अपने करियर को लेकर चिंतित रहते हैं, तब डॉक्टर मुखर्जी जी का जीवन हमें ये संदेश देता है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना भी होना चाहिए।
1: दोस्तों, शिक्षा जगत में उत्कृष्ट योगदान देने के बाद उन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया और देश की सेवा के लिए राजनीति को माध्यम बनाया।
0: स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में उन्होंने उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में भी काम किया था, लेकिन जब उन्हें लगा कि उनके सिद्धांतों और राष्ट्रीय हितों से समझौता हो रहा है, तो उन्होंने अपने पद का त्याग करने में थोड़ा भी संकोच नहीं किया था।
1: यह घटना युवाओं को सिखाती है कि सिद्धांतों पर अडिग रहना और सही बात के लिए खड़े होना ही सच्चा नेतृत्व है।
0: डॉक्टर मुखर्जी भारतीय एकता और अखंडता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने देश की एकता को ही सर्वोपरि माना था।
1: दोस्तों, उनका प्रसिद्ध नारा था, एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। आज भी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के संदर्भ में ये उनका नारा याद किया जाता है।
0: देश की एकता के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने अनेक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अपने विचारों और संकल्प से उन्होंने कभी पीछा नहीं लिया।
1: अभिषेक, यदि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से सीखने योग्य बातों पर गौर करें, तो ऐसी कई बातें हैं, जैसे शिक्षा के प्रति समर्पण,
0: दूसरा कि राष्ट्रहित को व्यक्तिगत हित से ऊपर रखना,
1: और तीसरी बात ये कि साहस पूर्वक अपने सिद्धांतों पर डटे रहना। मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहूंगी, नेतृत्व क्षमता। उन्होंने बहुत कम उम्र में यह साबित किया कि यदि आपके पास दृष्टि, ज्ञान और समर्पण है, तो आप समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं।
0: बिल्कुल। और आज के युवा स्टार्टअप, तकनीकी, शिक्षा, प्रशासन या किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो डॉक्टर मुखर्जी जी का जीवन

0: वन उन्हें निरंतर सीखने, मेहनत करने और देश के प्रति जिम्मेदार बनने की प्रेरणा जरूर देता है।
1: दोस्तों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने शिक्षा, राष्ट्रवाद और जनसेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया।
0: उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए किए गए योगदान में निहित होती है।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर। हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
5: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
4: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
5: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
4: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
6: वेलकम बैक दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट की तरफ, जो कि युवाओं की जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है, यानी करियर। तो आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे एक और खास सेगमेंट है करियर की बात, जिसमें हम बात करते हैं आपके करियर से रिलेटेड, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं और कुछ डिस्कशन करते हैं कि कैसे उसमें हम आगे अच्छा परफॉर्म कर सकें।
7: और आज की इस बातचीत में हम अपने साथियों से बात करेंगे कि आखिर सपनों को कैसे दे सही दिशा।
6: बिल्कुल दोस्तों, आज के इस विशेष अंक में हम जो बात करने वाले हैं, जो लगभग हर युवा के दिल और दिमाग में रहता है, यानी जैसा कि अभिषेक ने कहा कि करियर की बात, कि आखिर कैसे सपनों को दे सही दिशा।
7: जी हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर चल रहा है, कहीं फॉर्म भरने की तैयारी है, कहीं एडमिट कार्ड का इंतज़ार, तो कहीं परीक्षा बिल्कुल पास आने वाली है। ऐसे समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सही दिशा, निरंतर मेहनत और आत्मविश्वास की।
6: अभिषेक, ये बात समझने की है कि अक्सर युवा करियर को लेकर को केवल नौकरी से जोड़कर देखते हैं, जबकि करियर का मतलब इससे कहीं बड़ा है, जिसे हम सभी को समझना चाहिए।
7: बिल्कुल साक्षी, करियर केवल रोजगार पाने का माध्यम नहीं हो सकता, बल्कि अपनी प्रतिभा, रुचि और क्षमता को समाज के हित में उपयोग करने का भी ये अवसर है। चाहे आप शिक्षक बनना चाहें, प्रशासनिक अधिकारी, पत्रकार, इंजीनियर, बैंक अधिकारी या उद्यमी, हर क्षेत्र में बहुत सारे अवसर मौजूद हैं।
6: दोस्तों, इस समय कई महत्वपूर्ण भर्तियां और परीक्षाएं युवाओं के सामने हैं। जैसे हाल ही में शिक्षण क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए UP TET और CTET और विभिन्न राज्य स्तरीय शिक्षक भर्ती परीक्षाएं भी महत्वपूर्ण अवसर लेकर आ रही हैं, लेकिन उसकी तैयारी हमें अभी से मजबूत करनी होगी।
7: और इसके अलावा समय समय पर कई अन्य भर्तियाँ निकलती हैं, लेकिन सवाल ये बनता है ना कि इतनी सारी परीक्षाओं के बीच तैयारी कैसे की जाए। तो ऐसे में सबसे पहले हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट करना चाहिए। हर परीक्षा का सिलेबस अलग हो सकता है, लेकिन कुछ बातें सभी के लिए समान होती हैं जो हमें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए।

0: जैसे नियमित अध्ययन करना,
1: टाइम का मैनेजमेंट करना,
0: करंट अफेयर्स पर पकड़ बनाना
1: और पिछले वर्षों के जो PYQs हैं, प्रश्न पत्र हैं, उनका अभ्यास करना,
0: और साथ ही साक्षी मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए।
1: तो दोस्तों, ये बात ध्यान रखने की है कि प्रतियोगी परीक्षाएं केवल ज्ञान की ही नहीं बल्कि धैर्य और मानसिक मजबूती की भी परीक्षाएं होती हैं।
0: कई बार साक्षी ऐसा होता है ना कि हम बात जब करियर की करते हैं तो बहुत सारे यूथ परेशान होते हैं, हतोत्साहित होते हैं, उनको लगता है कि जो अचीव करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी और टाइम मैनेजमेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारी पढ़ाई में, हमारी एजुकेशन में, वो कहीं ना कहीं लैग करता है, जो जिस पर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और जैसा कि हमने बात की करंट अफेयर्स और PYQs की मॉक टेस्ट, इसके बिना हम जब भी पेपर देने जाते हैं तो हमारा वो कॉन्फिडेंस नहीं आता एग्ज़ाम हॉल में जैसा कि हमें चाहिए होता है। तो इसलिए हमें मॉक टेस्ट और PYQs लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
1: साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें जो हैं, इनमें दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं जो हम हर जगह सुनने को हमें मिलती हैं, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। चाहे पढ़ाई कर रहे हैं आप, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आपके पास जॉब है, वहाँ आप अच्छा अचीव करना चाह रहे हैं, तो वहाँ भी आपके अंदर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आपके काम के लिए होनी ही चाहिए। तभी तो वही, जैसे कि हमने पिछले अपने सेगमेंट में बात किया था कि काम जब पेंडिंग होने लगता है ना, तो वो जब कहते हैं हमें अपने क्लासेस के बारे में बात करें, बैकलॉग लग गया है ना, तो वैसे ही आपके अभी तो आपका बैकलॉग लगेगा, अगर आपने ये चीज़ें नहीं सुधारी कि जॉब के बाद भी आपका काम पेंडिंग होता जाएगा, फिर वहाँ भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: और यही होगा कि आपके साथ वाले आगे बढ़ जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे।
0: तो कहीं ना कहीं कहने का आशय ये है कि जब अभी से हम टाइम मैनेजमेंट और अपनी रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी को बैलेंस करते हुए चलते हैं तो ये सीढ़ी ताउम्र हमारे साथ बनी रहती है और हर फेज में हमें साथ देती है। तो दोस्तों, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, बस एक सफल प्रयास अगर नहीं हुआ तो उसे एक अनुभव मानिए, हार कतई नहीं, क्योंकि हर टेस्ट हर एग्ज़ाम आपको कुछ नया सिखा कर जाता है।
1: दोस्तों, आज के भारी कंपटीशन के दौर में युवाओं के सामने अवसर भी अधिक हैं और चुनौतियां भी, लेकिन जो लोग निरंतर अभ्यास में रहते हैं, खुद को अपडेट रखते हैं और मेहनत से पीछे नहीं हटते, सफलता निश्चित तौर पर उन्हीं के कदम चूमती है।
0: तो साथियों, आने वाली परीक्षाएं आपके लिए अवसर होंगी, किसी भी तरह का प्रेशर नहीं लेना है, इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखिए, नियमित पढ़ाई कीजिए और स्वयं पर विश्वास बनाए रखिए।
1: इस बात को ध्यान याद रखते हुए कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और निरंतर प्रयास और अभ्यास आपको मंजिल तक जरूर पहुंचाते हैं।

0: तो उम्मीद है साक्षी, अपने श्रोता साथियों को आज का प्रोग्राम काफ़ी पसंद आ रहा होगा, जिसमें हमने बात की यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे के बारे में, प्रेरणा पुंज और सबसे ज़रूरी करियर के बारे में बहुत सारी बातें करी। तो जब हम बात करियर की करते हैं तो हम अपने श्रोताओं के लिए हर रोज़ एक करियर से, उनके करियर से जुड़ा, उनकी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम से जुड़ा हर रोज़ एक प्रश्न भी तो लेकर आते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो अब बात करते हैं हमारे कल के प्रश्न की। हमारा कल का प्रश्न था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 ए, आर्टिकल 371 ए, भारतीय राज्य के किस विशेष दर्जे से संबंधित है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है नागालैंड। हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 ए नागालैंड राज्य से संबंधित है, जो 1962 में 13वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद के तहत नागालैंड को कुछ विशेष सुरक्षा और अधिकार प्राप्त हैं, जैसे पारंपरिक कानूनों की सुरक्षा, जिसके तहत संसद द्वारा पारित कोई भी कानून नागाओं की धार्मिक, यानी नागा वहाँ की जो प्रजाति है, जो कम्युनिटी है, वहाँ की धार्मिक, सामाजिक प्रथाओं और पारंपरिक कानूनों पर तब तक लागू नहीं होता जब तक कि राज्य विधानसभा एक प्रस्ताव के माध्यम से इसे स्वीकार ना कर ले। और भूमि का अधिकार, यानी नागालैंड के लोगों को जमीन और प्राकृतिक संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण रहता है, और इसके अलावा नागरिक और आपराधिक न्याय। और अब बारी है साक्षी हमारे आज के सवाल की।
1: तो दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में उत्तर प्रदेश के किस नगर को नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। आप अपना उत्तर दे सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, जो कि है yuvvani@gmail.com, यानी yuvvani@gmail.com, और आप हमें अपना उत्तर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जो कि है 8004926250 पर।
0: और इसके अलावा साक्षी, हमारे फ्रेंड्स लोग हमें फॉलो कर सकते हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर, और वेब्स OTT जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी वो हमसे जुड़ सकते हैं और दुनिया में कहीं भी रहकर हमारे प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। और मुझे लगता है साक्षी, अब बारी हो चली है अपने श्रोता साथियों से विदा लेने का, क्योंकि घड़ी भी इशारा कर रही है। तो साथियों, चलते हैं, मिलेंगे फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक मुझे यानी अभिषेक को
1: और मुझे यानी साक्षी को दीजिए इजाज़त।
0: नमस्कार, नमस्कार।

युवजन अभी अपना युववाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। समाचारों की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG कैरियर, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। कतर में हुए धमाके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
1: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: इस बीच तमिलनाडु सरकार ने कतर में आग की घटना से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसिंग मटमुंग और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाव के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मुकाबला लंदन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के में पुर्तगाल का सामना अमेरिका और उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कार्यक्रम विवरण, पहले आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

पंचायत घर में 6:30 पर ग्रामीण जन सुनेंगे राधे श्याम कुशवाहा और साथियों के गाए लोकगीत, सियाराम मिश्र से रामायण पाठ।

पंचायत घर कार्यक्रम में ही डॉक्टर सुबोध यादव से प्रवीण कुमार मिश्र की बातचीत होगी, गर्मियों में पशुओं की देखभाल। संस्कृत कार्यक्रम में 7:31 पर आपको सुनवाएंगे डॉक्टर रामजी मिश्र का काव्य पाठ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 7:45 पर सुनिएगा सुषमा त्रिपाठी के गाए भजन और गीत। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा रात 8:00। सबरस कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे 8:30 पर। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां रात 9:30 पर। खेल दर्पण का प्रसारण समय रात 10:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 10:30 पर सुनिएगा पंडित नारायण राव व्यास का गायन। ये थी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना सुबह 6:05 पर। विचार बिंदु कार्यक्रम में 6:30 पर सुनिएगा रामकृष्ण परमहंस के विचार। कृषि जगत कार्यक्रम में 6:35 पर कृषक जन सुनेंगे डॉक्टर एजाज खान से बातचीत मृदा परीक्षण और भूमि समतलीकरण। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में 6:45 पर आपको सुनवाएंगे डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी की वार्ता सियाटिका और पैर दर्द का होम्योपैथी द्वारा उपचार। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ रोज की तरह सुबह 7:00। इसके बाद 7:10 पर आपको सुनवाएंगे फिल्मों से ली गई कुछ भक्ति रचनाएं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 7:30 पर पंडित कार्तिक कुमार का सितार वादन। शास्त्रीय संगीत के एक दूसरे कार्यक्रम में दिन में 12:15 पर आपको सुनवाएंगे उस्ताद अली अकबर खां का सरोद वादन। और शास्त्रीय संगीत के रात्रिकालीन कार्यक्रम में 10:30 पर सुनिएगा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे कल सुबह 8:45 पर। 9:00 आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 9:50 पर आपको सुनवाएंगे सौरभ कुमार गुप्ता के गाए भजन और गीत। वॉइस ऑफ प्रयागराज ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं कल सुबह 10:05 से। लोकगीत का कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे कल सुबह 10:30 पर।

कलाकार रामचंद्र मौर्य और साथी। एक ही कलाकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल 11 बजे से। 11:30 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। आपके फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश कल दिन में 12:30 पर प्रसारित किया जाएगा।

महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी कल दिन में 1:15 से सुना जा सकता है। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आपके लिए लेकर आएंगे कल दोपहर 2:30 पर। फिल्म संगीत का निर्णय लीजिएगा कल शाम 5:00। युवजन अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी सुन सकते हैं रोज की तरह कल शाम 5:15 से। पंचायत घर कार्यक्रम में कल शाम 6:30 पर ग्रामीण जन सुनेंगे मुशर्रफ अली और साथियों के गाए लोकगीत और देवदत्त तिवारी से नीति वचन सुनवाया जाएगा। हमारा खास कार्यक्रम बोलते नगमे लेकर आएंगे कल शाम 7:30 पर। वाचन स्वर होंगे नेहा गुप्ता और वंदना राठौर के। चित्रपट संगीत का निर्णय लीजिएगा कल रात 8:00। सबरस कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा 8:30 और रात्रि 9:30 पर चर्चा का विषय है। और रात 10:00 फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं। ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ।

0: अभी आप सुन रहे थे देश गान। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार होंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक कृष्ण प्रसादोपाध्याय। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुहु नवदेहल्यां नागरिक सम्मान समारोहस्य द्वितीय चरणे पद्म पुरस्कारान् प्रायच्छत्। गृहमंत्री अमित शाहः अकथयत् यत् अनुच्छेद 77 इत्यस्य निरसनेन श्यामा प्रसाद मुखर्जी वर्यस्य स्वप्नाः साकारीभूताः। सर्वोच्च न्यायालयेन 93 वर्षस्य

0: पंचो राम राम। और भैया का हाल चाल बा?
1: हम कहे तो मन्नु भाई, देखा गर्मी तो दिन दिन बढ़त बहो।
0: खूब बढ़त बा।
1: और साथे में यह है भैया कि देखा लू भी चले लाग।
0: जब लू चलत भैया खूब तपिस बा।
1: जौन जौन गरम गरम हवा चलत नहीं कि हमें भैया अगर तनिको लापरवाही भाई तो फिर बेरामी से बचाव मुश्किल।
0: बिल्कुल बिल्कुल एकदम, अभी अपने आप के खूब बचाई के रखें गर्मी से, खूब पानी पियत रहें। और भैया देखा जो है कि अपन खेती किसानी का भी तैयारी करत रहे।
1: मनु भैया एक बात जो कहक रहा कि भाई देखा आज पूरे देश में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाएगा।
0: 23 जून है भैया।
1: जी जी जी।
0: और आज के दिन संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भैया संयुक्त राष्ट्र का भूमिका देखा कितना जो है कि महत्वपूर्ण रही है।
1: जी जी।
0: पूरे दुनिया बदे। और ये जो दिवस है भैया ना, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2003 का जो संकल्प बन ओकरी द्वारा समुदाय जौन भी समुदाय बा भैया
1: है,
0: और सार्वजनिक सेवा का मूल्य और गुण के भैया एक तरीके से कहिला कि जश्न मनावे खातिर नामित किया गया बा।
1: जी जी।
0: ठीक है ना। और ई भैया ई दिन वो तारीख के वर्षगांठ का भी प्रतीक है जब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भैया श्रम संबंध जोन है वो पर जो है कि कन्वेंशन 1978 के अपनावा गए रहा। और भैया ई जोन कन्वेंशन बा ना, ई जोन एक तरीके का अधिनियम बा, नियम बा, ई दुनिया भर में जितना भी लोक सेवक हैं भैया उनकर काम काज का परिस्थिति का बा, स्थिति का बा, ओके निर्धारित करे का ओकर रूपरेखा भी तैयार करे का काम करते हैं भैया।
1: जी जी।
0: और देखा भैया एहमन जो है कि यो देखा जाता है कि विकास को जो प्रक्रिया बा है, विकास की प्रक्रिया में जो लोक सेवक लोग हैं भैया उनकर का योगदान बाटे भैया, उनकर काम जो है महत्व बाटे। ठीक है ना। और केहू अगर बहुत महत्वपूर्ण काम की है बा भैया तो ओकर सराहना भी किया जाता है, उनके जो है कि पुरस्कार भी प्रदान किया जाता। और साथे साथे भैया देखा जो युवा लोग हैं ना उनके सार्वजनिक क्षेत्र में अपन भविष्य बनावे के लिए प्रोत्साहित भी कई जात
1: बा। मतलब ये भैया मनु कि संयुक्त राष्ट्र के जो भूमिका बा ये पूरे विश्व के जो अच्छे काम करे वाले हैं उनका प्रोत्साहन देखबा। और
0: विशेष कई के जो लोक सेवक हैं।
1: हाँ, जो लोक सेवक हैं भाई देखिए जो सरकारी सेवा में प्रशासनिक सेवा में हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, हमारे तो सुरक्षा
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और नई योजना नई नीत बनावत है जिनसे कि देश का क्षेत्र का विकास हो, युवा वर्ग का लाभ हो, उनके लिए ये विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था बा। और हम कहते कि 23 जून के हर साल ये जो लोक सेवा दिवस मनावा जात इससे भी एक नई दिशा मिलत।
0: बिल्कुल नई दिशा मिलत है भाई। हम कहें कि अपने क्षेत्र में हैं, चाहे भैया हम कहें कि अपने अपन जौन दायित्व बा, अपन जौन पद बा ओकरी अनुसार जौन लोग महत्वपूर्ण कार्य करत हैं अगर ओकर पहचान होत है, ओके चिन्हित किया जाता है, ओकर सराहना किया जाता है, ओके प्रोत्साहित किया जाता है, तो ऐसे कहीं ना कहीं देखा तो दुनिया भर का जितना भी लोग हैं उनके कुछ न कुछ प्रेरणा मिलत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कि भाई देखा हमहू के अपने दायित्व के बढ़िया ढंग से निर्वाह करे के चाहिए।
1: एक बात यह हो तो देखा भैया कि आज एक बात और पंचायती में कि ग्रामीण युवा नया गाँव नई सोच।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया। देखा हो हम कहीं कि युवा तो कोनो भी देश कोनो भी राष्ट्र का एक प्रकार से कर्णधार होते हैं।
1: जी जी।
0: और युवा के अंदर इतनी ऊर्जा होते है, इतनी सामर्थ्य होते भैया ना, इतनी फुर्ती होते है
1: जी,
0: कि
1: जी।
0: अगर वो लग जाए भैया तो बड़ा से बड़ा जो है कि जो पर्वत है ना वो रास्ता दे देता है
1: भाई। देखा युवा के भरोसे ही देश का रीढ़ है।
0: और अपन देश तो भैया सबसे दुनिया में सबसे बड़ा जो ने युवा देश कहा जाता है, युवा का संख्या बहुत ज्यादा है। और यही युवा का संख्या देखा अपने गांव में भी बा, और गांव का भी कहीं ना कहीं विकास का जो उम्मीद बा।
1: जी जी।
0: ठीक है ना। और जो नया जो है कि जो भारत के कहा जाता है, जो नए ग्रामीण परिवेश का बात कहा जाता है, तो निश्चित तौर पे गांव के नई दिशा और दशा देवे में जो युवा लोग हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत लोग कई बार बाटे भैया
1: भाई देखा मनु एक बात समझा कि देश की आज़ादी में भी तमाम देश अपने देश के नौजवान युवा साथी शहीद हो गए, पूरा आंदोलन चलाए, देश को आज़ाद कराए।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया। हम कहीं कि देखा जो युवा लोग हैं ना तकनीकी रूप से भी सक्षम है।
1: जी जी बिल्कुल।
0: और देखा उनका सोच भी बिल्कुल आधुनिक और प्रगतिशील बा। और खेती किसानी भी देखा भैया आज के जमाने में तकनीक पर बिल्कुल निर्भर करत बा। प्रगतिशील खेती किसानी से ही जो ना गांव के विकास का रास्ता आगे बढ़ी
1: भाई। देखा मनु अब उस समय नहीं ना कि भाई दादा कहें सर सही ला दे। हाँ कि धान

0: एक सीजन में धान गेहूं सीजन सीजन ये
1: नहीं,
0: अब ऐसा नहीं है
1: देखा। कितना ऐसा गांव है भैया और
0: जी।
1: कितना ऐसा ऐसा युवा है एकदम बिल्कुल नई उम्र में अपने पूरे जोश और ऊर्जा के साथ देखा नया नया पैदावार करते हैं,
0: बिल्कुल
1: नई नई तकनीकी के अपनावत हैं और ऐसा ऐसा नकदी फसलन का खेती करते हैं भैया की अच्छा खासा आमदनी करते हैं और बहुत से लोगों खातिर प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जितनी भी नई तकनीक है लोग प्रयोग करते हैं
0: भाई। देखा मनु, पहले देखा गाँव में, अगर जो गाँव में 10 घर रहा, आज वहाँ गाँव में 100 घर बना, तो जमीन पर ही बना।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: अब जमीन जब कम भाई आबादी बढ़ी तो वही जमीन में पूरे आबादी के खान पान के व्यवस्था उत्पादन करे के बने। तो जब तक नई तकनीक और नई विधि न अपनावा जाए, या भाई देखा सह फसली खेती है वो है, ये सब तरीके के अपनाए के बाद ही सब ये पूरा हो सकत।
1: बिल्कुल, और एक बात हम ये कब देखा बहुत से युवा लोग काम कई रहा बाटे
0: जी
1: और
0: जी,
1: नए नए तरीका के नए नए विधि अपनाए के खेती किसानी करते हैं, एक प्रकार से नया मार्ग प्रशस्त करते हैं लोग
0: जी जी।
1: लेकिन एक बात ये कहना कि जैसे देखा कुछ जो युवा लोग हैं ना, हम कहीं की देखा जो पलायन होता शहर की तरफ, दोनों उदाहरण देखे की मिलता है। ऐसा भी उदाहरण है भैया कि देखा हो विदेश से पढ़ के लोग आवत हैं और गांव में आकर खेती अपन चकाचक करते हैं एकदम है, बागवानी करते हैं लोग, फूल का खेती करते हैं, डेयरी खोलते हैं लोग, तो अपन बुद्धि अपन विवेक अपन जोश अपन उत्साह हम कहीं कि अगर चाहे गाँव में ही लगावे युवा लोग तो बहुत बड़ा अपने खातिर भी अवसर बा और साथे साथे एक तरीके से प्रेरणा का स्रोत भी सब
0: प्रेरणा के स्रोत भी हैं, गांव के लोगों के रोजगार भी उपलब्ध कराई।
1: बिल्कुल,
0: और हम कहते कि जितने युवा वर्ग हैं अच्छी पढ़ाई चाहे तकनीकी पढ़ाई हो चाहे जो कोनो तरह का हो, अगर वो प्रयोग शहर के बजाय गाँव में करें तो उनके लिए आसान भी है, लागत भी कम है और गाँव का एक गांव को एक दिशा मिल जाएगी, गांव में जो बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार मिल जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बेरोजगार मिल जाए भाई। हम कहीं देखा सबसे बड़ी समस्या जो बाहर लोग जाते हैं जमीन को होते हैं
0: जी जी,
1: गांव में जमीन पड़ा है ओकर सदुपयोग करें ओकर प्रयोग करें। और नई पीढ़ी अगर देखा जाए युवा पीढ़ी तो भाई तकनीकी रूप से बहुत सक्षम है, वो तो देखा हो इंटरनेट का प्रयोग करके मोबाइल ही से पता नहीं कितनी जानकारी हासिल कर लेते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: नया नया बाजार खोज लेते हैं भैया।
0: भाई पहले देखा आवागमन की थोड़ी सी दिक्कत थी गाँव में, लेकिन आज बहुत दिक्कत लगभग समाप्त हो गई है, गाँव में भी रोड सड़क बन गई है
1: भैया,
0: रास्ता बन गया,
1: गली गली में देखा सड़क बन गया बा, हर खेत के पास चक्रोड बा बढ़िया से।
0: बिल्कुल, हम कहते मनु भैया एक बात और, आज देखा भाई मंगलवार दिन का दिन व रामायण पाठ का दिन हुआ, तो रामायण पाठ तो होबे करी, हमारे मन कहत रहा पहले कुछ गीत गाने सुनवा देते
1: हाँ,
0: तो
1: हाँ, फिर बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो देखा हो राधे श्याम कुशवाहा और संघातीन का एक विकास गीत बा भैया, तुहु सुना और पंचो सुने।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: मनो भैया गीत गौना ही तो हो श्री राधे श्याम कुशवाहा उनके संघाती का।
1: और देखा बिल्कुल विकास गीत रहा और बढ़िया एकदम तबियत हरियर हो गए।
0: जी जी
1: और देखा हो हम तो कहें कि खेती किसानी में खेतिए कुल बा भैया।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और वह भाई अपन देखा तो कुल मिला जुला के जो पिकनिक स्थान कहा जाता ना तो गाँव में भैया किसान खाती
0: जी
1: सबसे बढ़िया भैया दार्शनिक स्थल वह बा।
0: बिल्कुल
1: कि जय बार हो सके खेते के डाँडे जा।
0: हाँ, हाँ।
1: देखा और देखा जैसे यह समय भाई देखा नर्सरी चलत बा धान का, तो धान के नर्सरी का बराबर देख रेख कैल बहुत जरूरी है भैया।
0: भाई देखा देख रेख जरूरी बा मनु भैया। एक चीज और जाना जैसे शहर के मनई सवेरे संजट घूमे जात।
1: हाँ हाँ हाँ
0: टहल हाँ, तो गांव का किसान तो अपन खेते देख के टहल लेते।
1: हाँ, टहल भी लेते भैया जीव भी आत्मान हो जाता।
0: हाँ?
1: और देखा जो धान का नर्सरी होता ना बड़ा एक तरीके से मासूम होता है।
0: बिल्कुल।
1: और ओकर सवेरे देखवा तो रंग कुछ और रही और तनिको तल बिचल पड़ल नमी कम भाई भैया दोपहरिया का घाम खाए कि साजी का रंग बदल जाये।
0: हाँ।
1: तो संझा सवेरे होके देखे साथे साथे अगर लगे की नमी का कमी बा तो नमी बराबर रखे और अगर कोनो ओमन दिक्कत समस्या दिखत है भैया माला पतई पियर होत बा तो तुरंत होके संपर्क करके होकर निदान करें।
0: बिल्कुल निदान
1: जब तक रोपाई नहीं हो जाते भैया
0: तब तक ऊपर देख रेख जरूरी।
1: पानी एकदम चपह भरे रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। हम तो ये कहते कि भाई अगर साझी के जो भी नर्सरी लगाए हैं बेहन बा अगर साझे की सिंचाई कह दें तो पूरी रात नमी जो
1: हाँ,
0: सवेरे वाले में काहे के धूप तगड़ी भाई तो जल्दी सूखा
1: नहीं, नहीं संझा का ही सबसे बढ़िया रहते
0: हैं। सबसे बढ़िया साझे वाली हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल। भैया देखा हो खेती किसानी काम तो लाग रहते है।
0: बिल्कुल।
1: मतलब जीवन में कुछ आध्यात्म और आध्यात्मिक चिंतन भी जरूरी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और यही लिए देखा जो नीत का बात है चाहे रामायण पाठ है एक भी जीवन बड़ा महत्व है। तो आज देखा किसान भैया भरे अरे रामायण पाठ बा सियाराम मिश्र का
0: जी
1: हम
0: जी।
1: कहीं की हके सुनवा दिया
0: सुना दे, सुना दे।
2: समादरणीय समस्त पंच महानुभाव गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में विभीषण शरणागत की बड़ी मार्मिक चर्चा की। जिस समय राक्षसेंद्र रावण से प्रताड़ित होकर विभीषण अपने मन में वेदना लिए हुए प्रभु श्री राम की शरणागति की इच्छा से भगवान श्री राम की शरणागति के लिए आता है उसके मन में विभिन्न प्रकार की चिंतन की बातें उठ रही हैं और आकाश मार्ग से रामादल की ओर जिस समय आता है कि चले उहरसी रघुनायक पाही अकरत मनोरथ बहु मन माही देखी हूँ जाई चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुखदाता जे पद परसि तरी ऋषि नारी दंडक कानन पावन कारी जे पद जनक सुताउर लाए कपट कुरंग संग धरि धाये हरि उर सर सरोज पद जेई अहो भाग्य मैं देखी हूँ तेई जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई ते पद आज बिलो की हूँ इन नयन ने

श्री राम के चरणों का चिंतन करते हुए विभीषण प्रभु श्री राम के शिविर के समक्ष पहुंचे ही थे कि शत्रु का विशिष्ट दूत समझकर द्वारपालों ने उन्हें बाहर ही रोक दिया कि कपिन विभीषण आवत देखा और जाना को रिपुदूत विशेखा ताही राखी कपीस पही आए समाचार सब ताही सुनाए। बानरा सुग्रीव ने यह सूचना प्रभु श्री राम को दिया तब प्रभु श्री राम ने सुग्रीव जी से कहा कि हमें क्या करना चाहिए। उस समय सुग्रीव जी कहते हैं कि कह सुग्रीव सुनहु रघु।

सठयावा और राखी बांधी मोही अस भावा। सुग्रीव जी ने कहा, भगवान ये स्वेच्छाचारी विभिन्न प्रकार के वेश धारण करने वाले निशाचर हैं, हमारा भेद लेने के लिए आए हैं, इसलिए मेरी तो ये इच्छा है कि इन्हें बंदी बना लेना चाहिए। भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया सुग्रीव आपका यह उत्तर उचित है, राजनीति के अनुसार है, परंतु मेरा एक प्रण है कि सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तद्व्रतम मम। सुग्रीव जी ये मेरा प्रण है कि कूर कुटिल खल कुमति कलंकी कैसा भी व्यक्ति मेरे समक्ष आए ते सुन सरन साम है आए सकृत प्रणाम किए अपनाए मैं अपने शरण में आए हुए का परित्याग नहीं कर सकता कि शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हान। और इतना ही नहीं सुग्रीव जी, अगर ये विभीषण भेद लेने के लिए भी रावण के द्वारा भेजे गए हैं तो भेद लेन पठवा दस सीसा और तबहु न कछु भय हानि कपीसा और जो सभीत आवा सरनाई रखी हूं ताई प्राणी की नाई। इसलिए हे हनुमान जी आप सुग्रीव को साथ लेकर के सम्मान पूर्वक विभीषण जी को ले आइए कि उभय भांति तेहि आनौ हसिका कृपा निकेत जय कृपालु कहि कपि चले अंगद हनु समेत। और जब विभीषण जी प्रभु श्री राम के समक्ष पहुंचे तो प्रभु के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान मैंने आपके कृपालुता की चर्चा सुना है और मैं देखना चाहता हूं कि जो मैंने सुना है उसमें सत्यता कितनी है कि श्रवण सुजस सुनी आयो प्रभु भंजन भव भीर त्राहि त्राहि आरत हरन सरन सुखद रघुबीर। ये कहते हुए प्रभु श्री राम के चरणों में विभीषण गिर पड़े, प्रभु हम भी शरणागत हैं स्वीकार करो तो जाने। भगवान श्री राम दौड़ करके विभीषण को अपने हृदय से लगा लेते हैं कि अस कही करत दंडवत देखा तुरत उठे प्रभु हरस बिसेखा दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा भुज विशाल गहि हृदय लगावा अनुज सहित मिली ढींग बैठारी। विभीषण जी को भगवान श्री राम ने अपने समक्ष बैठाया, अपने समकक्ष बैठाया और समाचार पूछते पूछते विभीषण को लंकेश शब्द से संबोधित किया कि कहु लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठाहर बास तुम्हारा। भगवान श्री राम ने विभीषण को जो ही लंकेश कहा सुग्रीव जी चौंक पड़े कि प्रभु श्री राम सत्य संध हैं और जो कहते हैं वही करते हैं। आज प्रभु श्री राम ने विभीषण को लंकेश शब्द से संबोधित किया है, क्या बात है। परंतु प्रभु श्री राम ने दोबारा विभीषण को जो ही लंकेश कहा कि सुनु लंकेश सकल

ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। विभीषण जी के लंकेश शब्द से सुग्रीव जी ने सोचा कि मुझे प्रभु श्री राम को टोकना चाहिए। उठते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं, परंतु जिस समय भगवान श्री राम ने समुद्र का जल मंगा करके विभीषण का राज्याभिषेक करना चाहा, उसी समय सुग्रीव जी अपने आप को रोक न सके, उठकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, भगवान आज विभीषण आपकी शरण में आया है, आते ही आपने इसे लंकेश बना दिया, अगर कल रावण आपकी शरण में आएगा तो उस समय आप क्या करेंगे, आपके समक्ष धर्म संकट उपस्थित हो जाएगा। भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि सुग्रीव, मेरी अयोध्या का वैभव लंका के वैभव से कहीं अधिक है। अवधराज सुरराज सिहाही दशरथ धन सुनि धन दल जाही। अगर रावण को विभीषण को मैंने लंकेश बनाया है और रावण मेरे समक्ष आता है तो मैं उसे अवधेश बना दूंगा। हम आजीवन चारों भाई वन में निवास करके रावण को अवधेश अवश्य बना देंगे। अस कही राम तिलक तेहि सारा सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड जरत विभीषण राखेउ दीन्हेउ राज अखंड। जो संपति दस शीस अरपि कर रावण शिव पहलीन हो सोई संपदा विभीषण कहा अति सकुच सहित प्रभु दीनो। जिस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए राक्षसेंद्र रावण ने बारंबार अपने सिर की आहुति भगवान शिव को दी थी, सादर शिव कह शीस चढ़ाए एक एक के कोटिन पाए, उस सिर की आहुति से जो वैभव से प्राप्त हुआ था उस वैभव को भगवान श्री राम ने अत्यंत संकोच से विभीषण को दिया कि मैंने इसे कुछ दिया ही नहीं। विभीषण के प्रति भगवान श्री राम का कितना अनन्य प्रेम है। जिस समय भगवान श्री राम और राक्षसेंद्र रावण के युद्ध के मध्य में मेघनाथ की अमोघ वीर घातनी शक्ति से मूर्छित जीवाचार्य लक्ष्मण रणस्थल में पड़े हैं, भगवान श्री राम उस रणस्थल में लक्ष्मण जी को अपनी गोद में लेकर के विलाप करते हैं कि यहाँ राम लक्ष्मण नहीं निहारी बोले बचन मनुजे अनुसारी अर्ध रात गई कपि नहीं आयऊ राम उठाई अनुजे उर लायऊ सकऊ न दुखित देखि मोहि काऊ बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ कि मुझसे पहले जल भी न पिया और लक्ष्मण वह भाव भुला।

भगवान श्री राम का यह करुण क्रंदन सुनकर सारा बानर समूह व्याकुल हो उठा। प्रभु प्रलाप सुनिकान विकल भयउ बानर निकर। उसी समय सुग्रीव जी ने कहा कि भगवान लक्ष्मण के लिए आप इतना विह्वल क्यों हो रहे हैं? हनुमान जी आएंगे, लक्ष्मण जी को जीवन दान प्राप्त होगा। भगवान श्री राम ने कहा कि सुग्रीव क्या तुम सोचते हो कि मैं लक्ष्मण के लिए रो रहा हूँ? ऐसी बात नहीं है,

0: है कि सुग्रीव मुझे विभीषण की चिंता है। जिस समय प्रातः काल होगा लक्ष्मण का प्राणांत हो जाएगा, उसके साथ ही मेरा प्राणांत हो जाएगा। अयोध्या में भरत और लंका में सीता अपने शरीर का परित्याग करेंगे, उस समय सारे बानर भालू जंगलों में चले जाएंगे। ये बिचारा विभीषण कहाँ जाएगा, मुझे केवल इसकी चिंता है। अस्तु पंचों, भगवान श्री राम का यह चरित्र पूर्णतया अनुकरणीय।
1: हाँ मनु भैया,
2: बिल्कुल भैया, देखा सियाराम मिश्र का ये रामायण पाठ
1: जी जी,
2: और देखा कितना बड़ा प्रेरणादायक रहा। और भगवान राम का जो चरित्र बा ना, वो चरित्र के अपने चरित्र में ढालल और अपनावल ही सबसे बड़ी उनकर भक्ति है भैया।
1: मनु भैया एक बात और जाना कि ये रामचरित्र मानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने पता नहीं कितने दिन पहले लिखे, लेकिन आज भी आज के समय में आज के समाज के लिए वो एकदम प्रासंगिक,
2: एक एक शब्द भैया प्रासंगिक है और जीवन में उपयोग आवे वाला बात।
1: हम कहते कि जिसे जोने हिसाब से भाई बंधु का और परिवार का और समाज के बारे में लिखे हैं गोस्वामी जी, वो सब सामने।
2: बिल्कुल बिल्कुल भैया, ओकर बिल्कुल अनुकरण करे के चाहिए
1: जी जी।
2: भैया देखा एक थे और बहुत बढ़िया बात कही बा हम कहीं कि पंचन के सुनवाई दिया जाए
1: जी जी।
2: गर्मियों में पशुओं की देखभाल श्री सुबोध यादव से प्रवीण कुमार मिश्र का बात कही बा हम कहीं कि हके सुनवाई
1: दिया। बहुत जरूरी बा भैया, देखा गर्मी में जो उन पशु रखे हैं भैया पशुपालक भैया हरे हैं उनके लिए बहुत जानकारी की बात बा।
2: बिल्कुल बिल्कुल भैया।
3: किसान भाई देखा खेती किसानी के साथे साथे पशुपालन भी एक प्रमुख व्यवसाय बाटे। हम कही बहुत से किसान भाई यहाँ जो अनाज उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करत हिन और तमाम तरह से उससे जो जुड़ा व्यवसाय बाटे उका करत हिन। तो गर्मी के मौसम में पशुपालन कैसे की जाए, अपने पशु की देखभाल कैसे की जाए, एक बिना जानकारी दे के खातिर आज अपने बीच में डॉक्टर सुबोध यादव जी यहाँ आप विषय के जानकार हैं। आप कृषि वैज्ञानिक पशुपालन सुवार्ट्स कृषि विज्ञान के नैनी में कार्यरत हैं, आप विषय विशेषज्ञ हैं। हम कही डॉक्टर साहब आपके हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बाटे। सबसे पहले हमारे किसान भाई के बतावें कि गर्मी के मौसम में जो पशु हैं उनका देखभाल कैसे की जाए।
4: धन्यवाद। मैं सुबोध यादव वैज्ञानिक पशुपालन कृषि विज्ञान केंद्र सभी पशुपालकों को धन्यवाद देना चाहता हूं और आकाशवाणी प्रसार भारती के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूं कि ये मौसम ऐसा है, ये मौसम आप अपने पशुओं को खूब अच्छा खिलाएं पिलाएं, मगर सबसे ज्यादा इस मौसम में दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है जिससे पशुपालकों को बहुत हानि होती है। तो इससे क्या करें, पशुओं को सुबह शाम छायादार स्थान पर दोपहर को बांधें और सुबह शाम नहलाएं और दिन में 3 बार 35 से 40 लीटर ताजा स्वच्छ पानी दें। और अगर पशुपालकों को सुविधा हो तो कच्चे घर, जो कच्चे घर होते हैं मड़ैया टाइप की होती हैं, उसमें बांधें और खिड़कियों में जो जूट के बोरे आते हैं वो भिगा कर टांगें और जब भी उन्हें नहलाएं तो खुरेरा का प्रयोग जरूर, क्योंकि इस मौसम में जुएं और किलनी का प्रकोप अधिक रहता है। अगर खुरेरा का प्रयोग करेंगे तो उससे भी आप निजात पा जाएंगे। और देखना हमेशा स्वच्छ नीम का पेड़ो छायादार पेड़ो सुबह और शाम बांधे। और इसमें एक चीज़ और है, गर्मियों में टीकाकरण सबसे महत्व होता है। ये 3 बीमारियां जैसे खुरपका मुंहपका गलागोटू और लंगड़ी बुखार, इनका टीका बरसात शुरू होने से पहले 1 महीने लगना बहुत ज़रूरी है। अगर ये टीका आपने लगा लिया तो 1 साल तक आपके पशु बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तो ये टीका 15 मई से 15 जून तक लगता है। तो जब भी टीका लगाएं तो ये बात ध्यान रखें कि टीका सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद लगाएं और उस दिन नहला दें उस जानवर को। और कुछ कगिया जो ठंडे पदार्थ होते हैं जैसे दाना चोकर, तो वो खिलाएं पशुओं को। और पशुओं में कगियात इस समय हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, तो पशुओं को दोपहर को बिल्कुल नहीं नहलाएं।
3: डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छी जानकारी देहन कि जो टीकाकरण बाटे जो पशु के बाटे को दिन निकले से पहले या सूर्यास्त के बाद जो ना है करावें। हम कहीं ऐसे किसान भाई के का फायदा बा, साथे साथे एक बात यह बतावें कि गर्मी में जो खास करके जो दुग्ध उत्पादन के

0: पशुपालन की जात बाटे, दूध का जो उत्पादन बा वो बराबर रहे, तो एक ही बिना किसान भाई का उपाय?
1: इसके लिए सबसे पहले हरे चारे की पूर्ति करनी है। आप फरवरी मार्च में जैसे हाइब्रिड बाजरा बन एग्रो प्रो का आता है, मक्खन घास अनवांटा कंपनी की, हरे चारे की अगर आप पूर्ति करेंगी, मल्टी कट चारा होता है ये, तो पानी की अगर सुविधा है पशुपालकों को तो इस समय से चारे बोकर तो आप उसकी पूर्ति करके दुग्ध उत्पादन बढ़ा सकते हैं और ये जून जुलाई तक चारा आपका चलेगा।
0: बिल्कुल, हमके देखा हरा चारा से जो दुग्ध के उत्पादन बाटे वो कीन जाता है, लेकिन कह तरह के हरा चारा उपयोग का देख गर्मी के भी ज़्यादा बा और हरे चारे में सिंचाई की भी बहुत आवश्यकता पड़ा था जौन है, तो देखा जाता था कि गर्मी में जौन है अगर पानी थोड़ा सा विलम्ब होता तो पत्ती ऐठ जाती, तो कैसन जौन चारा बाटे वो पशु को दिया जाए, कब कटाई की जाए जौन है पशु के लिए?
1: एक चारा है मक्खन घास ये मल्टी कट चारा है, 4 से 5 कटाई ले सकते हैं, इसमें 70%

0: पानी की अगर सुविधा है पशुपालकों को तो इस समय से चारे बोकर तो आप उसकी पूर्ति करके दुग्ध उत्पादन बढ़ा सकते हैं और ये जून जुलाई तक चारा आपका चलेगा।
1: बिल्कुल हमके देखा हरा चारा से जो दुग्ध के उत्पादन बाटे वो कीन जाता है, लेकिन कई तरह के हरा चारा उपयोग का देख गर्मी के भी ज़्यादा बा और हरे चारे में सिंचाई की भी बहुत आवश्यकता
0: जी
1: पड़त है जो है। तो देखा जाता कि गर्मी में जो है अगर पानी थोड़ा सा विलम्ब होता तो पत्ती ऐंठ जाती, तो
0: जी
1: कैसन जो चारा बाटे वो पशु को दिया जाए और कब कटाई की जाए जो है पशु के लिए।
0: एक चारा है मक्खन घास, ये मक्खन घास ये मल्टी कट चारा है, 4 से 5 कटाई ले सकते हैं। इसमें 70% तक प्रोटीन की मात्रा भी रहती है, मगर इसमें भी सिंचाई की आवश्यकता रहती है। और शुगर ग्रेज करके एक चरी एमपी चरी है, उसमें भी आज 4-5 कटिंग ले सकते हैं। अगर आप हरे चारे की पूर्ति करते रहेंगे तो दुग्ध उत्पादन जितना आप आहार देते हैं उतना आप 20% हरा चारा भी उपलब्ध कराते रहें गर्मी में, तो पशुओं को दुग्ध उत्पादन घटेगा नहीं, स्थिर बना रहेगा।
1: बिल्कुल हमको एक किसान भाई की जानकारी देखे आदमी महा कि भैया जब लू लगा तो कुछ न कुछ उनका लक्षण समझ में आ जाता है कुछ भी, तो उपचार जल्दी कर लेते। जानवर में कैसे पहचान करें कि उनका गर्मी लग गई है, उनके लू का प्रकोप बा या हीट जो गर्मी का जो प्रभाव होता है ओके से प्रभाव उनके ऊपर पड़ चुका बाटे जैसे अस्वस्थ हैं ओके बारे में बताएं।
0: ऐसा है, सबसे पहले पशु पागुर बंद कर देगा, जो रौत करना पागुर, और नथनों में जो पानी आता है वो बंद हो जाएगा और खाना पीना छोड़ देगा, और श्वसन तंत्र हांफने लगेगा, जीभ जीभ से हांफने लगेगा, तो आप पहचान कर लेंगे ये गर्मी लू की प्रभाव पड़ गया है। उसके लिए आप क्या करें, सुबह शाम हो सके तो गुड़ का शरबत जरूर दें, तो लू से प्रकोप से बच सकते हैं। छायादार स्थान में बांधें सुबह और शाम, अच्छे स्थान पर, स्वच्छ स्थान पर बांधें, और दोपहर को हमेशा छायादार स्थान में पशु को बांधें, और दिन में 3 से 4 बार स्वच्छ पानी दें। और इसके साथ साथ ये भी है कि जो कार्य करेगा पशुपालक भाई वो भी अपना ध्यान रखते हुए ये कार्य करें।
1: बिल्कुल हमको एक बात तो देखा जाता है हमारे जो किसान भाई हैं खास करके जिनके यहाँ भी दुग्ध उत्पादन बाटे पशुपालन करे हैं, तो अपने गर्मी के मौसम में देखा जाता है कि दिन में कई बार उनका अपने पशुओं का नहवाई देता है जो नहाए पानी से, तो हमको ये कब सही समय बाटे और कितना बार उनका नहवावे कि जैसे नुकसान भी ना पहुँचे और गर्मी से भी बचा
0: बहुत
1: रहे।
0: अच्छा सवाल पूछा आपने, पशु को सुबह या शाम के टाइम नहलाना चाहिए। अगर आप दोपहर को नहलाते हैं तो जो आप नहलाएंगे नीचे जो पानी गिरेगा डबल कैजा तापक्रम हो जाएगा, उसका हीट पूरा बाड़े में फैल जाएगा। सबसे बढ़िया टाइम है सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे। दोपहर को कभी अपने जानवर को मत नहलाएं, हाँ हो सके तो खिड़की जहाँ बांधते हैं हम जानवर, वहाँ जूट के बोरे भिंगाकर टांग दें, जिससे ठंडी ठंडी हवा बाड़े में आती रहे।
1: ये गर्मी के मौसम में पशुओं के कह कह तरह के बीमारी लगा था और का उपचार बेटा से।
0: गर्मी के मौसम में बस ये तापक्रम, हम लोगों को तापक्रम उनका मेंटेन रखना है। और तो ये टीकाकरण की बात, ये 3 टीकाकरण गर्मी के मौसम में समय से करा लें तो ये बीमारियाँ नहीं आएंगी। एक चीज़ और, गर्मियों के मौसम में जूं और किलनी की प्रकोप ज़्यादा रहता है मच्छर का, तो उसके लिए शाम को नीम का धुआं, जानवर जहाँ बांधा है उससे थोड़ी दूर पर नीम का धुआं दे दें तो इस कीटनाशकों से निजात पा जाएंगी।
1: बिल्कुल हम कहीं देखा जाता है बहुत से किसान भाई यहाँ धुआं तो जे जानकार हैं देता हैं कुछ दवाई लगाए देते हैं पशुओं के शरीर में जो ना है तो कितना हानिकारक बाटे और ऐसे लगाए से का नुकसान पहुंच सका था शरीर उसके त्वचा पे जो पशु बाटे भी।
0: देखो ब्यूटेक्स दवा आती है 5 लीटर में 1 ml, अगर ज़्यादा मात्रा कर देंगे तो चमड़ी उधड़ भी सकती है। और जब भी ये लगाएं तो जानवर का मुंह कस के बांध दें खूंटे पर कि जो चाटने नहीं पाए, और 2 घंटे के बाद उसे नहला दें। वैसे इंजेक्शन आ गया है कि हाईटेक इंजेक्शन है, वो दोनों परजीवी अंता और बाह परजीवी दोनों की मार मारता है, वो पेट के कीड़े भी मार देगा, और बाहर जो किडनी जुआ है

0: वो भी मार देगा। मगर अक्सर देखा गया है आजकल कुछ नकली दवाओं का भी प्रयोग हो रहा है तो असर नहीं होता है। उसके लिए क्या करें, जब आप इंजेक्शन लगाएं या बीटॉक्स लगाएं तो कुछ किलनी बेहोश हो जाती हैं, तो उसके लिए कंघी जो आती है, कंघी से अपने जानवर को काढ़ कर एक जगह इकट्ठे करके उसमें किलनी और जुआ में आग लगा दें।
1: बिल्कुल, हम कहे जौन भी जानकारी डॉक्टर साहब आप बताएं दौन है, हम कहे मतलब किसान भाई निश्चय रूप से एकर लाभ उठाही और जो उनका पशुपालन है वो बेहतर ढंग से कर सकते हैं। आपके जानकारी दे के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ
2: हाँ
1: मंडू
2: भैया,
1: भैया
2: देखा गर्मी में पशुओं का देखभाल कोने ढंग से करें,
1: जी
2: और
1: जी
2: कैसे समझें, कैसे जाने कि हमारे पशु के गर्मी लग गए बा या गर्मी का चालू का असर हो गया बा, और अगर पहचान हो जाए, जानकारी हो जाए तो कोने ढंग से निदान करें। यह विषय पर जानकारी दिए सुबोध यादव जी, और उनसे देखा बातचीत किए प्रमोद कुमार मिश्र भैया।
1: भाई, देखा एक बात और है मन्नू,
2: हाँ
1: कि जौन भी पशुपालक भरे भैया हरे हैं वो एक केवल पशु नहीं बल्कि उनके लिए वो पशुधन है,
2: बिल्कुल बिल्कुल भैया जी,
1: और गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, उनके सुरक्षा, उनके संरक्षण, उनका पालन पोषण सब उनकी जिम्मेदारी होती है।
2: बिल्कुल भैया। और देखा हो अपन खेती किसानी मौसम पर बहुत निर्भर करत है, तो जैसे मौसम में गर्मी में पशुओं के ध्यान देवे के, वैसे अपन खेती किसानी का भी ध्यान रखें।
1: बिल्कुल
2: विशेष कह
1: बिल्कुल
2: के ये समय देखा जौन भी फसल बाटी खेत में है, विशेष करके सब्जी का जौन खेती बाटी है, तो बराबर होकर देख रेख करें कि नमी का कमी ना हो पाए भैया।
1: बिल्कुल
2: हैं
1: बिल्कुल
2: बराबर जो है कि नमी बरकरार रखें, जौने से कि अपन जौन फसल है ओके कोनो नुकसान ना हो के मुरझाए ना हो, और भैया उत्पादन बना रहे। साथे साथे देखा नर्सरी वाला जो है ओकर देख रेख करें, अगर केहू का नर्सरी पिछड़ गए हो भाई के भैया, तो अवहिन भी समय बा नर्सरी अपन लगाए लें, हैं
1: बिल्कुल
2: ताकि बहुत
1: बिल्कुल
2: ज़्यादा विलंब न करें। रहा सवाल हम कहीं कि देखा जब तक मानसून नहीं आवत बा, जब तक बरसात नहीं होत बा, तब तक भाई कोनो तरीके से अपन पानी का चलाए के अपन जो है कि खेती किसानी की व्यवस्था किए रहें।
1: भैया मन्नू भैया, देखा अब तो सिंचाई का भी तमाम साधन हो गया, केहू के पास पंप सेट हो गया,
2: हाँ हाँ
1: केहू के पास
2: बिल्कुल
1: वो हो गया, हाँ तो यहाँ हिसाब से भैया अरे जो करे के ओका तो अपन इंतजाम कह रहा है, फिर बरसात आए तो फिर वहाँ हिसाब से हो
2: बिल्कुल
1: जाए।
2: बिल्कुल बिल्कुल भैया। और देखा हो रोज की तरह से आज भी जो एक नंबर बा प्रतिक्रिया
1: हाँ
2: खातिर
1: हाँ
2: हैं, काहे कि देखा एक तरफा हो जाता जब खाली बात करा, और भाई पंचन से कोनो अगर सुझाव ना आवत है,
1: जी जी
2: कोनो संदेश ना आवत है, तो देखा किसान भाई के पंच भाई के कार्यक्रम कैसा लगा, कार्यक्रम में का सुझाव दिया चाहिए, कौन कौन नई नई चीज़ शामिल किया जाए, कौन चीज़ को उनके जानकारी चाहिए,
1: बिल्कुल
2: ये
1: बिल्कुल
2: पर अपन प्रतिक्रिया और सुझाव देवे बदे देखा जो नंबर है ना वो नंबर बता दिया जाते हैं, और
1: बिल्कुल
2: किसान
1: बिल्कुल
2: भाई एकदम कलम लेके है के नोट कर लें, 800-4926-2-50।
1: जी जी
2: ठीक है
1: जी
2: भैया,
1: एक दाएं और बता
2: आठ
1: दें।
2: शून्य शून्य 4926-2-50। हम कहें कि ए नंबर पर अपन कोनो भी सुझाव वो भेज सकत है, कोनो भी प्रतिक्रिया अपन भेज सकत है। और अब चले चलाओ के बेरा हो गया बात,
1: बिल्कुल
2: पंचन से
1: बिल्कुल,
2: आज्ञा लिया जाए,
1: तो पंचों
2: पंचों
1: राम
2: राम
1: राम।
2: राम।

ग्रामीणजन अभी अपना पंचायत घर कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से अब एक आवश्यक सूचना सुनिए। दिनांक 26 जून 2026 को सायं 6:30 से 7:15 तक विशेष फोन इन पंचायत घर कार्यक्रम हेलो पंचायत घर सजीव प्रसारित किया जाएगा। सभी ग्रामीण जनों से अनुरोध है कि वे अपने गांव संबंधी समस्याएं अथवा यदि कोई संदेश या धन्यवाद उपस्थित अतिथि जिला पंचायत राज अधिकारी श्री रविशंकर द्विवेदी जी तक पहुंचाना चाहते हैं तो वे 26 जून 2026 को सायं 6:30 से 7:15 के बीच इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 0532 297 04।

0562 और 0532-242-3649 व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर अपने संदेश भी हमें भेज सकते हैं। नंबर एक बार पुनः सुने 0532-2970462 और 0532-242-3649 व्हाट्सएप नंबर 8004926250 सूचना समाप्त हुई।

सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का पालन करें। दो पहिया वाहन चालक हेलमेट अवश्य धारण करें।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लखनऊ अग्निकांड मामले में एसआईटी और फॉरेंसिक टीम ने आज घटना स्थल से जुटाए साक्ष्य। प्रदेश सरकार ने 4 अधिकारियों को किया निलंबित, 4 आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने आज गृह विभाग को सौंपी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट। कहा, अभी जुटाए जा रहे हैं और सबूत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में प्रदान किए पद्म पुरस्कार। प्रदेश के अनिल कुमार रस्तोगी, मंगला कपूर, चिरंजी लाल यादव और रघुबत सिंह पद्मश्री से सम्मानित। और वाराणसी में रोपवे सेवा का किराया तय, न्यूनतम ₹10 और अधिकतम ₹50 में होगी यात्रा। काशी स्मार्ट पास धारकों को मिलेगी 20% की छूट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ

0: तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के मामले की जांच के लिए आज फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों ने संयुक्त रूप से घटनास्थल का निरीक्षण किया। विशेष जांच दल ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद केजीएमयू पहुंचकर घायलों से भी बातचीत की। वहीं फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाने के साथ ही जांच के लिए पूरी इमारत को सील कर दिया है। पत्रकारों से बातचीत में एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने बताया कि जांच में सभी विभागों की जिम्मेदारी को देखा जाएगा और सभी पहलुओं पर गहराई से गौर करने के बाद रिपोर्ट दी जाएगी।
1: माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विशेष जांच दल का जो गठन हुआ है उसमें अभी हम लोगों ने डिटेल घटनास्थल का निरीक्षण किया है। हमें कुछ जो शुरुआती साक्ष्य मिले हैं उसके बेसिस पर हमें फर्दर लोगों से पूछताछ करनी है, विक्टिम से भी बातचीत करनी है। हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट जो कि निर्धारित समय सीमा है मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर रात उच्च स्तरीय बैठक में दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित एसआईटी में संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और लखनऊ के एडीजी जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। जांच दल 7 दिन में रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगा। अलीगंज पुलिस की ओर से देर रात इस मामले में 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर इमारत के मालिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही नगर निगम के 2 और ऊर्जा विभाग और फायर डिपार्टमेंट के 1-1 अधिकारी को निलंबित किया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में घटना में जान गंवाने वालों के अंतिम संस्कार में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है।
2: बहुत ही दुखद घटना है हमारे जीवन की। परिजनों को तत्काल यूपी गवर्नमेंट ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचा दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2-2 लाख रुपए की सहायता पहुंचाई है और ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार पीड़ित परिजनों के साथ खड़ी है और भी जो भी आवश्यकता होगी हम पूरा कर जो भी कर सकते करेंगे। आगे घटनाएं न हो उसके उपाय किए जाएंगे और जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
0: लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अवैध निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। लखनऊ में अग्निकांड के बाद आज प्रदेश के सभी जनपदों में अग्निशमन सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन ने होटलों और कोचिंग सेंटरों में चेकिंग अभियान चलाया। वाराणसी के दुर्गाकुंड क्षेत्र में वाराणसी विकास प्राधिकरण पुलिस और फायर सर्विस की संयुक्त टीम ने निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर एक कोचिंग संस्थान को सील कर दिया। वहीं बस्ती, मेरठ, जौनपुर, अमरोहा, अंबेडकर नगर, फरुखाबाद, आगरा समेत अन्य जिलों में चेकिंग अभियान चलाकर नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है। एसआईटी के प्रमुख सदस्य और लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत ने टीम के अन्य 2 सदस्यों के साथ आज अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को ये प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बताया कि ये प्रारंभिक प्रतिवेदन है, एसआईटी की जांच अभी जारी है और सबूत जुटाए जा रहे हैं।
3: शासन द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है, जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 हस्तियों समेत 56 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट।
4: राष्ट्रपति ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए एसिड अटैक सर्वाइवर मंगला कपूर को पद्मश्री से नवाजा।
5: प्रोफेसर मंगला कपूर, साहित्य एवं शिक्षा, शास्त्रीय संगीत।
4: राष्ट्रपति ने कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव को पद्मश्री से सम्मानित किया। कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया। उनकी पत्नी प्रेमवती ने ये पुरस्कार स्वीकार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में

0: पुरस्कार पाने वाली प्रदेश की हस्तियों को बधाई दी और उनके योगदान को अमूल्य और सराहनीय बताया। इस वर्ष 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया था। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर लखनऊ के सिविल अस्पताल में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए उनका सर्वोच्च बलिदान प्रत्येक देशवासी के हृदय में सदैव राष्ट्रवाद की लौ प्रज्वलित करता रहेगा। UPTET 2026 की परीक्षा अगले माह 2 से 4 जुलाई के बीच होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र 30 जून से आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड किए जा सकते हैं। हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट और हज सुविधा मोबाइल ऐप पर 20 जुलाई तक पंजीकरण कराया जा सकता है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में डिजिटल रैंडम चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित यात्रियों की सूची जारी की जाएगी। वाराणसी में रोपवे सेवा का किराया तय कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक कैंट, विद्यापीठ, रथ यात्रा और गोदौलिया स्टेशनों के बीच न्यूनतम किराया ₹10 और अधिकतम ₹50 निर्धारित किया गया है। कैंट से गोदौलिया तक की पूरी यात्रा मात्र ₹50 में होगी। काशी स्मार्ट पास धारकों को किराए में 20% की छूट मिलेगी। देश की पहली शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे परियोजना कैंट से गोदौलिया तक लगभग 3.75 किलोमीटर मार्ग पर संचालित होगी। ज्येष्ठ माह के आखिरी बड़े मंगल पर आज प्रदेश के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतारें लगी हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लखनऊ में इस अवसर पर बड़ी संख्या में भंडारे लगाए गए हैं। प्रदेश के अधिकांश जनपदों में तेज गर्मी और लू का सिलसिला जारी है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने कहा कि अगले 4 दिनों तक पूर्वी जनपदों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। हालांकि 27 जून के बाद बारिश होने की संभावना है।
2: कोई सक्रिय मौसमी तंत्र न होने के कारण पछुआ हवाएं आ रही हैं, जिसके कारण की पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर हीट वेव या लू की स्थितियां बनी हुई हैं और इन स्थितियों के अगले 4 दिनों तक बिना किसी विशेष परिवर्तन के ऐसे ही जारी रहने की संभावना है। 28 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा का एक नया दौर आरंभ होगा और 29 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्कैटर्ड यानी कि कुछ जगहों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ अग्निकांड मामले में SIT और फोरेंसिक टीम ने आज घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य। प्रदेश सरकार ने 4 अधिकारियों को किया निलंबित, 4 आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने आज गृह विभाग को सौंपी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट। कहा, अभी जुटाए जा रहे हैं और सबूत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में प्रदान किए पद्म पुरस्कार। प्रदेश के अनिल कुमार रस्तोगी, मंगला कपूर, चिरंजी लाल यादव और रघुपत सिंह पद्मश्री से सम्मानित। और वाराणसी में रोपवे सेवा का किराया तय, न्यूनतम ₹10 और अधिकतम ₹50 में होगी यात्रा। काशी स्मार्ट पास धारकों को मिलेगी 20% की छूट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
3: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। संस्कृत कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर रामजी मिश्र का काव्य पाठ।
4: वाल्मीकि कवि कंठ भूषणा सीता सती कथा परिपूर्णा रामचरित वर्णन संपूर्णा जयति स्वदेशे संस्कृत भाषा।

सस्याभिज्ञानम् वाल्मीकि कवि कंठ भूषणा सीता सती कथा परिपूर्णा रामचरित वर्णन संपूर्ण जयति स्वदेशे संस्कृत भाषा भारत देशस्याभिज्ञानम् व्यासादीनां ज्ञान साधना अष्टादश पुराण संरचना भक्ति भोग भैराग्य ज्योत्सना व्यासादीनां ज्ञान साधना अष्टादश पुराण संरचना भक्ति भोग वैराग्य ज्योत्सना विविध पुराण कथा संयुक्ता महाभारतस्य अभिख्यानम् कालिदास भवभूति कल्पना भारविमाघ सुवाक्य चेतना हर्षवाण कवि भास रंजना सरस कवीनां मधुरालया भरत भारत संस्कृति गौरव गानम् कालिदास भवभूति कल्पना भारविमाघ सुवाग्य चेतना हर्षवाण कवि भास रंजना सरस कवीनां मधुरालाप भारत संस्कृति गौरव गानम् गद्य पद्य कवि काव्य सर्जना राजधर्म व्यवहार व्यंजना सदविचार सोपान दर्शना यंत्र तंत्र मंत्राणां माला मानवतानां अपि विज्ञानम् गद्य पद्य कवि काव्य सर्जना राजधर्म व्यवहार व्यंजना सदविचार सोपान दर्शना यंत्र तंत्र मंत्राणां माला मानवतानां अपि विज्ञानम् षड्दर्शन शास्त्राणां भाषा वर्ण छंदसामपि परिभाषा निगम निरुक्त कल्प संभाषा काव्यकोश विज्ञान समृद्धा राष्ट्र चेतनाया संज्ञानम् स्वीया देशा स्वीया भाषा सुसंस्कृता सुरभाषा सर्वाणां भाषा माता विश्वविख्याता इयं पवित्रा सुरभारत्या विश्वत्थानम् भारतदेशस्य विज्ञानम् पठन्तु भाषा मे नाम विचित्रताम् वदन्तु भाषा मे नाम पवित्रताम् पठन्तु भाषा मे नाम विचित्राम् वदन्तु भाषा मे नाम पवित्राम् लिखन्तु भाषा मे नाम सुमात्राम् सम्पठनीयाम् च सुलेखनीयाम् श्रीभारतान्तःकरणस्य ज्ञानम् पठन्तु भाषा मे नाम विचित्राम् वदन्तु भाषा मे नाम पवित्राम् लिखन्तु भाषा मे नाम समात्राम् सम्पाठनीयाम् च सुलेखनीयाम् श्रीभारतान्तःकरणस्य ज्ञानम् अन्यच्च देववाणी सदा भूतले भ्राजताम् हर्षदा दर्शदा सर्वसौख्यप्रदा वेद्य विद्याश्रया सर्वभाषाजनी सर्वदा साम्यवादस्य संवाहिका देववाणी सदा भूतले भ्राजताम् दाक्षिपुत्रप्रयासेन सत्तान्विता यास्कवर्येण व्याख्यायिता शोधिता साधु शब्दात्मिका सर्वथा शासिता निशितार्था गमेया समर्था स्वयं देववाणी सदा भूतले भ्राजताम् हर्षदा दर्शदा सर्वसौख्यप्रदा वेदविद्याश्रया सर्वभाषाजनी सर्वदा साम्यवादस्य संवाहिका देववाणी सदा भूतले भ्राजताम् कीर्तिविस्तारबुद्ध्याधिपैर्यापुरा सादरं वृत्तिदानेन सम्पोषिता आदिकाव्यस्य या विस्तृता जन्मभू भारती सा समाराधनीया शुभा देववाणी सदा भूतले भ्राजताम् श्रीमता व्यासवर्येण या स्वीकृता सत्कृता विश्वकाव्येन।

सुगम संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। कार्यक्रम जारी रहेगा, उससे पहले एक आवश्यक सूचना सुनिए। दिनांक 26 जून 2026 को सायं 6:30 से 7:15 तक विशेष फोन इन पंचायत घर कार्यक्रम हेलो पंचायत घर सजीव प्रसारित किया जाएगा। सभी ग्रामीण भाइयों और बहनों से अनुरोध है कि वे अपने गांव संबंधी समस्याएं अथवा यदि कोई संदेश या धन्यवाद उपस्थित अतिथि जिला पंचायत राज अधिकारी श्री रविशंकर द्विवेदी जी तक पहुंचाना चाहते हैं तो वे 26 जून 2026 को सायं 6:30 से 7:15 के बीच इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 0532-297-0462 और 0532-242-3649 व्हाट्सएप नंबर 800-492-650 पर अपने संदेश भी हमें भेज सकते हैं। नंबर एक बार पुनः सुने 0532-297-0462 और 0532-2423-649 व्हाट्सएप नंबर 8004926250। सूचना समाप्त हुई। सुगम संगीत के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनवाते हैं जयशंकर प्रसाद का लिखा गीत जिसे गाया है एक बार फिर सुषमा त्रिपाठी ने।

सुगम संगीत कार्यक्रम की कलाकार थी सुषमा त्रिपाठी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, अब पेश है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। मिलन की रात आई थी, चांद भी मुस्कुरा रहा था, तेरी बाहों का साया दिल को सुकून दे रहा था। बरसों की तन्हाई का सफर यहीं थम गया, जब तू मेरे करीब आया हर गम कहीं खो गया।

उल्फत की राहों में हम यूं हो गए, उल्फत की राहों में हम यूं हो गए, तेरी मोहब्बत के रंगों में हम हो गए। अब न कोई मंजिल है न कोई सफर, तेरे साथ चलकर हम पूरे हो गए।

बरसों की दुआओं का असर आज दिखा है, बरसों की दुआओं का असर आज दिखा है, मेरा हमसफर मेरे सामने खड़ा है। मिलन की इस घड़ी को कैसे बयां करूं, मिलन की इस घड़ी को कैसे बयां करूं, खुदा का सबसे हसीन तोहफा तुझे कहूं।

एक था टाइगर। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं के पलक मुच्छल और साथियों की आवाज़ों में, गीत रचना अन्विता दत्त की, संगीत सुहेल सेन का।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ। This is the future, man.

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर।

बेनी दयाल और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे हैं जाने तू फिल्म का ये गाना। गीत रचना अब्बास टायर वाला की, संगीत ए आर रहमान का।

0: Sala.
1: ये है चित्रपट संगीत कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति। समीर की गीत रचना, आनंद मिलिंद का संगीत। कुमार सानू और पूर्णिमा की आवाजें इस गाने में सुनने को मिलेंगी। और फिल्म का नाम कुली नंबर 1।

इस गाने के साथ ही आज का चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है सबरस। इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा की गाई ये भक्ति रचना।

सबर इस प्रोग्राम के आखिर में आपको सुनाने जा रहे हैं आबिदा परवीन की गाई एक सूफी गज़ल।

इसी के साथ आज का सबरस कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। कुछ ही पलों में आप समाचार संध्या सुनेंगे।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने

0: ने और एक सुरक्षित अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूडी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबु सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
3: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के 7वें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज, वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों

0: और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
1: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
1: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
1: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेक बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 ट्रिलियन तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे

0: विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
1: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज, एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के 2 समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at 2nd Civil Investiture Ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amrit Raj, actors Mammootty and R. Madhavan and singer Alka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that in a changing global landscape, BRICS has a vital role in deepening security cooperation and addressing shared challenges from terrorism and cybersecurity to emerging technologies. Prime Minister Modi met national security advisors and senior security officials of BRICS countries, that is Brazil, Russia, India, China and South Africa, in New Delhi this evening. In a social media post, he also highlighted that India's BRICS chairmanship will seek to advance practical cooperation, support the priorities of the Global South and contribute to a safer, more secure and inclusive world. Prime Minister

0: दी जाएगी। वजीर आजम मोदी ने नागरिक देवो भव पर जोर दिया है और अफसरान से जोर देकर कहा है कि वो शहरियों को हुक्मरानी में मरकजी अहमियत दें। आज नई दिल्ली में 2024 बैच के आईएएस के उन 183 तरबियती अफसरान से बातचीत करते हुए जिन्हें मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में बतौर असिस्टेंट सेक्रेटरी मुंसलिक किया गया है, जनाब मोदी ने नौजवान सिविल सर्वेंट से जोर देकर कहा कि वो विकसित भारत @2047 की जानिब भारत के सफर की क्यादत करें। वजीर आजम ने मुल्क की तामीर में खवातीन के बढ़ते हुए रोल को ये कहते हुए उजागर किया कि मौजूदा बैच में 40% से ज्यादा खवातीन अफसर हैं। जनाब मोदी ने नौजवान अफसरों से कहा कि वो मुसलसल मुल्क की तामीर में अपने ताउन का जायजा लेते रहें और अपने ओहदों के बजाय अपनी कारकर्दगी से हासिल होने वाले नतायज से इत्मीनान महसूस करें। उन्होंने इस बात पर एतमाद का इजहार किया कि उनकी तवानाई, सलाहियत और खुद को वक्फ करने का जज्बा भारत को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जाने में एक अहम रोल अदा करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में शहरी एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता किए। मुल्क के आला तरीन शहरी एजाजात में से एक पद्म अवार्ड्स 3 जुमरों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के तहत दिए जाते हैं। सहाफी पी नारायणन को अदब तालीम के जुमरे में पद्म विभूषण से नवाजा गया है, जबकि साबिक जज केटी थॉमस को समाजी काम के लिए पद्म विभूषण से सरफराज किया गया है। पेश एक रिपोर्ट।
1: इस साल हुकूमत ने कुल 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स शामिल हैं। साबिक टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूथी और प्लेबैक्स गुलुकारा अलका याग्निक समेत 7 लोगों को पद्म भूषण से नवाजा गया है। सियासतदान शिबू सोरेन को बादजमर्ग पद्म भूषण दिया गया है। 57 अफराद को पद्मश्री अवार्ड से सरफराज किया गया है, जिनमें क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा, अदाकार आर माधवन और प्रसार भारती के साबिक सीईओ शशि शेखर वेम्पति शामिल हैं। अदाकार सतीश शाह को बादजमर्ग पद्मश्री से सरफराज किया गया है। इस मौके पर नायब सदर सीपी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के अलावा दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है कि हुकूमत नीनों की वजह से कमजोर मानसून के इम्कानी असरात से निपटने की खातिर किसानों की मदद के लिए पेशगी तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि मुल्क में अब तक 43% कम बारिश हुई है और जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने का इम्कान है।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है 2 जुलाई तक के सप्ताह में कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। हम जो प्रभावित जिले कितने हो सकते हैं उसका आकलन भी किया गया है और अब तक जो संभावना है 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: जनाब चौहान ने कहा कि रियासतों को दालों और मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को फरोग देने का मशवरा है, जिनमें कम पानी की जरूरत होती है और सख्त मौसम में भी उनकी अच्छी पैदावार हो सकती है। उन्होंने कहा कि रियासतों के साथ तालमेल में साइंसी तरीक़ेकार फसलों की बरवक्त मनसूबाबंदी और ज़िला सतह की तैयारी को मुस्तहकम किया जा रहा है। नीति आयोग के नायब चेयरपर्सन डॉक्टर अशोक लाहिरी ने आज कहा कि पिछली सिमाही के दौरान भारत की मजमूई तजारत में 5.4% का इजाफा हुआ। डॉक्टर लाहिरी ने यह बात नई दिल्ली में तजारत पर नजर रखने वाली सिमाही रिपोर्ट का ताज़ा एडिशन जारी करते हुए कही। नायब चेयरपर्सन ने मजीद कहा कि पिछली सिमाही के दौरान भारत की बरामदात 1.84 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि दरामदात में 6.5% का इजाफा दर्ज किया गया। मगरबी एशिया की सूरतहाल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह बहरान आर्जी था। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दुनिया में जल्द ही अमन कायम होगा। आज जारी करदा रिपोर्ट में बुनियादी तौर पर अद्वियात की तजारत पर जोर देते हुए आलमी तजारत में भारत के रोल का तजिया पेश किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इम्तिहानात मुनक़िद करने वाली कौमी एजेंसी NTA ने आज अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान CUET

2026 के नतायज का ऐलान कर दिया है। इम्तिहान में शामिल हुए उम्मीदवार अब सरकारी CUET पोर्टल के जरिए अपने स्कोर कार्ड्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं। NTA के मुताबिक इस साल इस इम्तिहान में 11 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट ने आज 1993 के कोलकाता बाव बाजार बम धमाका केस में उम्र कैद के एक मुजरिम की कबल अज वक्त रिहाई के बारे में दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगा दी। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस संजीव सचदेवा पर मुश्तमिल बेंच ने मगरबी बंगाल हुकूमत की उस दरखास्त पर अबूरी राहत दी जिसमें हाई कोर्ट के 5 जून के उस हुक्म को चैलेंज किया गया था जिसके तहत 77 साल मुजरिम मोहम्मद राशिद खान की फौरी रिहाई का हुक्म दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद राशिद खान को भी नोटिस जारी किया। रियासत की जानिब से पेश होते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने इस मामले में इस्लाही नजरिए का गलत इतलाक किया क्योंकि इस धमाके में 70 से ज्यादा अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए थे। मोहम्मद राशिद खान के वकील MR शमशाद ने कहा कि उनके मुवक्किल 33 साल से ज्यादा अरसा जेल में गुजार चुके हैं और एक शरीक मुलजिम को 2014 में इस सिलसिले में रियायत दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुशाहिदा किया कि खान का रोल मुख्तलिफ था और उन्हें धमाकों का मास्टरमाइंड करार दिया। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने आज मंगोलिया के वजीर खारजा बैतमुख और सनत और कानकनी के वजीर के साथ मंगोल रिफाइनरी प्रोजेक्ट के जेर तामीर मकाम का दौरा किया। सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया दोस्ती के तहत जारी प्रोजेक्ट में नुमाया पेशरफ्त हो रही है। उन्होंने इन मंसूबों में शामिल मुख्तलिफ टीमों के साथ जारी काम की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर खारजा ने प्रोजेक्ट के मकाम पर भारत और मंगोलिया के वर्करों के साथ बातचीत की। उन्होंने इन मुश्किल हालात में इस तरह के अहम प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाने में उनकी मेहनत लगन और अज़्म को सराहा। वजारत खारजा ने आज कतर में होने वाले एक धमाके में 12 भारतीय शहरियों के हलाक होने की तस्दीक की। नई दिल्ली में नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि इस हादसे में 66 अफराद जख्मी भी हुए जिनका इलाज अभी चल रहा है। जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत नामे पर दस्तखत होने के बाद अब तक भारत से वाबस्ता 11 बहरी जहाज आबनाए हुरमुस से गुजर चुके हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बाकी भारतीय परचमबरदार जहाज भी जल्द ही इस रास्ते से गुजरेंगे। पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर से मुतालिक बयान पर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए तर्जुमान ने कहा कि ऐसे बयानात पाकिस्तान की अपनी नाकामियों और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की एक लायानी कोशिश है। उन्होंने कहा कि भारत इन मनगढ़ंत दावों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है और इन दावों को बिल्कुल ही अहमियत नहीं देता है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने आने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर जम्मू में अमरनाथ बेस कैंप में एक जामे मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। इस मशक के दौरान नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने मुश्तरक तौर पर बेस कैंप के पूरे अहाते में तलाशी और इलाके को महफूज बनाने की कार्रवाई अंजाम दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान ने अपने न्यूक्लियाई बुनियादी ढांचे की तवील मुद्दती और जामे निगरानी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इसके साथ ही अमरीका आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों की आमदोरफ्त पर आयद पाबंदियों में नरमी करेगा और माली रियायतें फराहम करेगा, ताहम ये सब सख्त अमरीकी निगरानी के तहत होगा। सोशल मीडिया पर जारी एक तफसीली बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की क़यादत ने जारी सिफारती मुज़ाकरात में अहम रियायतें दी हैं जिनका मकसद मगरबी एशिया में तवील कशीदगी के बाद एक जामे अमन फ्रेमवर्क कायम करना है। ताहम व्हाइट हाउस के इस बयान पर ईरान की हुकूमत ने फौरी एतराज़ किया और न्यूक्लियर निगरानी के दायरेकार के बारे में इख्तलाफ जाहिर किया। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ाई ने वाज़ेह किया कि ईरान ने मखसूस न्यूक्लियाई तनसीबात पर बैन अल-अक़वामी एटमी तवाना एजेंसी की निगरानी कबूल नहीं की। भारतीय महकमे मौसमियात ने कल तक दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और मगरबी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंचने का इम्कान है। दिल्ली NCR में मौसम में अचानक शदीद तब्दीली देखी गई क्योंकि खित्ते में तेज बारिश धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चल रही थीं। IMD के मुताबिक कौमी राजधानी में कम से कम दर्ज हरारत 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत
38.4 डिग्री

0: सेल्सियस रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब आईएमडी ने कहा कि 2 से 3 दिनों के दौरान बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ खित्ते में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। लंदन में एफआईएच प्रो लीग हॉकी के इफ्तिताही मैच में मर्दों की भारतीय हॉकी टीम ने रिवायती हरी पाकिस्तान को 3-4 गोल से हरा दिया। भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला ये मुकाबला इस टूर्नामेंट के सबसे अहम मुकाबलों में से एक था। लंदन मरहले के दौरान भारत जुमेरात को इंग्लैंड का सामना करेगा और 26 जून को एक बार फिर पाकिस्तान से खेलेगा। इसके बाद 28 जून को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मुकाबले के साथ अपना दौरा मुकम्मल करेगा। आज फीफा आलमी कप में ग्रुप मरहले के तहत मुख्तलिफ अहम मुकाबले खेले जाएंगे। ग्रुप के में हाउस्टन में रात 10:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। वहीं ग्रुप एल के तहत देर रात 1:30 बजे बोस्टन में इंग्लैंड और घाना आमने सामने होंगे। बाद में सुबह सवेरे 4:30 बजे टोरंटो में क्रोएशिया का मुकाबला पनामा से होगा। जर्मनी के शहर सूल में जारी आईएसएसएफ जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारत के लिए आज का दिन भी शानदार रहा और उसने मजीद 3 तमगे हासिल किए, जिनमें चांदी के 2 और कांसे का 1 तमगा शामिल है। शिवा नरवार ने मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए चांदी का तमगा जीता, जबकि युग प्रताप सिंह राठौर ने भी इसी मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म ने मोदी ने कहा है कि सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी जैसे चैलेंजों से निपटने में ब्रिक्स का अहम रोल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने शहर एजाज से मुतालिक दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता किए। सहाफी पी नारायणन, टेनिस के सरकर्दा खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूती और आर माधवन और गुलूकारा अलका याग्निक पद्म अवार्ड हासिल करने वालों में शामिल हैं। हुकूमत ने कहा है कि वो एल नीनो की वजह से कमजोर मॉनसून के असरात के इम्कान से निमटने के लिए किसानों की मदद की खातिर पेश की तैयारियां कर रही है। इम्तिहानात की निकास से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान के नतायज का ऐलान कर दिया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और मगरबी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब पेश है गजलों का प्रोग्राम कहकशां। इस कार्यक्रम में मैं हूं उज्जवल सिन्हा। गुजरते लम्हे यूं ही कहानी बन जाते हैं, गुजरते लम्हे यूं ही कहानी बन जाते हैं, कुछ चेहरे यादों की निशानी बन जाते हैं। जिन्हें रोकना चाहो वो ठहरते नहीं कभी, जिन्हें रोकना चाहो वो ठहरते नहीं कभी, वो वक्त के साथ ज़िंदगी की रवानी बन जाते हैं।

गुजरते लम्हों को मुट्ठी में कैद कौन करे, हर पल को उम्र भर आबाद कौन करे। जो आज है वही कल एक याद बनेगा, इन खूबसूरत एहसासों को बर्बाद कौन करे।

फूल चहकते पंछी सुहानी शाम है, महकते फूल चहकते पंछी सुहानी शाम है, तेरे साथ हो तो हर मौसम मेरा गुलफाम है। ओस की बूंदों में तेरी मुस्कान बस गई, ओस की बूंदों में तेरी मुस्कान बस गई, सुबह की पहली किरण में तेरी पहचान बस गई।

गज़लों का ये प्रोग्राम कहकशां आपकी नज़र हो रहा है आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, और कार्यक्रम में मैं हूँ आपका दोस्त उज्ज्वल सिन्हा।

आपका शुक्रिया शब्दों में बयां नहीं होता, आपका शुक्रिया शब्दों में बयां नहीं होता, हर एहसान का कोई हिसाब नहीं होता। जो लोग दिल में जगह बना लेते हैं, वो लोग जो दिल में जगह बना लेते हैं, उनसे रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता।

तेरे इश्क में कुदरत भी रंग बदलने लगी, तेरे इश्क में कुदरत भी रंग बदलने लगी, हर कली मेरे दिल की तरह मचलने लगी। जब जब बहार आई तेरा ख्याल आया, जब जब बहार आई तेरा ख्याल आया, फूलों ने मुस्कुराकर मेरा हाल सुनाया।

मेहंदी हसन की आवाज़ में आप सुन रहे हैं साहिल हमदमी का ये कलाम।

अलविदा कहकर भी तुमसे जुदा कहाँ होंगे, अलविदा कहकर भी तुमसे जुदा कहाँ होंगे, तुम्हारी यादों के साए में ही यहाँ होंगे। फासले चाहे जितने भी बढ़ जाएं, फासले चाहे जितने भी बढ़ जाएं, दिल के रिश्ते हमेशा जमा रहेंगे।

0: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी अल्मोड़ा की प्रस्तुति है।
1: खेल दर्पण।

0: खेल दर्पण के सभी श्रोताओं को संजय जोशी का नमस्कार। श्रोताओं, आज बारी है आकाशवाणी अल्मोड़ा की प्रस्तुति की, जिसमें हम आपको मिलवाएंगे ताइक्वांडो में सेकंड डैन ब्लैक बेल्ट और स्थानीय स्टेडियम अल्मोड़ा में ताइक्वांडो कोच साथ ही नेशनल रेफरी वंदना सिंह से। इसके अलावा 13 जूनियर एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे अखिलेश सिंह से, जो अब सीनियर टीम के लिए प्रयासरत हैं। इस माह 3 जून को विश्व साइकिलिंग दिवस भी मनाया गया और एडवेंचर स्पोर्ट्स में माउंटेन बाइकिंग के लिए जाने जाने वाली साइकिलिस्ट भारत भूषण शाह यानी भरत शाह, जो कि हाई एल्टीट्यूड मैराथन में भी प्रतिभाग कर चुके हैं, वो सीनियर सिटीजन होने के बावजूद माउंटेन बाइकिंग का लुफ्त उठा रहे हैं। वंदना सिंह द्वारा प्रशिक्षित बच्चों ने 13वीं नेशनल ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो हल्द्वानी में आयोजित हुई थी, उसमें उनके द्वारा प्रशिक्षित 8 बच्चे मेडल विजेता रहे। एक खिलाड़ी से कोच और फिर रेफरी तक के सफर पर जानते हैं उनकी इस यात्रा को। आप स्वयं एक खिलाड़ी भी रही हैं।
1: जी जी।
0: और खिलाड़ी से कोच तक का क्या सफर रहा आपका?
1: खेलना मेरा मतलब पैशन था, मैं भी चाहती थी मैं ओलंपिक तक खेलूं। मैंने 2018 में लास्ट इवेंट खेला था, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेली थी मैंने, जिसमें मेरा मेडल रहा था। और उसके बाद जो है मैंने जो कोचिंग है वो अब 2022 में मैं जो है स्टेडियम अल्मोड़ा स्टेडियम में लग चुकी थी। 2022 से मैंने अपने बच्चों को ट्रेन करना शुरू करा, आज करीब उनको 3 साल हो चुके हैं। तो ये उन लोग मेरे बच्चों के लिए पहला नेशनल था, बहुत अच्छा इन्होंने रिजल्ट दिया। मेरे 15 बच्चे गए थे जिसमें से मेरे

0: तीन गोल्ड, दो सिल्वर और दो ब्रॉन्ज रहे उसमें। बहुत ट्रेन अभी उनको करना है मैंने।
1: जी, एज ए खिलाड़ी से जब आप कोच बनी, तो कोचिंग के लिए क्या क्या परेशानी आपको शुरू में फेस करनी पड़ी अल्मोड़ा में?
0: ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। हमें यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फैसिलिटी हमें सब देती है। हमें बच्चों के लिए मैट प्रोवाइड करेगी, जो हमारी मैटें होती हैं वो करीब 1-1.5 लाख रुपए की भी मिलती है। और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही, बस हमें ट्रेन कराना पड़ा थोड़ा बच्चों का पढ़ाई से, और पेरेंट्स को हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ता है
1: जी
0: इसके लिए कि आप बच्चों को खेलने के लिए डालिए। ज़रूरी नहीं है उसका बच्चा जो है उन मेडल ही जीते, वही उसका एक अचीवमेंट है। बच्चा फिट रह रहा है, कोई
1: जी
0: गलत रास्ते में नहीं पड़ रहा है, ये भी एक कोच को देखना पड़ता है। सिर्फ हमारा मकसद बच्चों को मेडल लाके देना, ये ही ज़रूरी नहीं है।
1: वैसे तो कहें कि ताइक्वांडो जो है आत्मरक्षा के लिए बहुत
0: जी
1: अच्छा स्पोर्ट्स माना जाता है, और खासकर बालिकाओं को अगर हम देखा जाए तो महिला इस स्पोर्ट्स को ज़्यादा सीखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे भी अल्मोड़ा में अधिकतर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कई एकेडमीज भी हैं
0: बिल्कुल
1: जो कि
0: बिल्कुल
1: बच्चों
0: सर
1: को ट्रेन कर रही हैं।
0: जी।
1: आप के अंडर में जो बच्चे हैं इस वक्त, तो उनको कितना टैलेंटेड आप देखती हैं?
0: अब मैं सच बताऊंगी आपको, अभी जो मेरे पास स्ट्रेंथ है उसमें मेरे पास गर्ल्स की ही स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और अभी जो 15 बच्चे जो खेलने गए थे उसमें जो मेडल है वो सारी गर्ल्स हैं। जो हमारा गेम है एकदम, उसमें ऐसा होता है कि जितना बच्चा छोटे से स्टार्ट करता है
1: जी
0: वो उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट देगा। कोई एक बड़ा बच्चा आके, यानी कि 15-16 ईयर्स का आके, मुश्किल है कि वो एकदम उसकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल रहे, वो उसको गेम को कर सके। तो छोटे से बच्चा जो है हमारे पास शुरू करता है और गर्ल्स उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। गर्ल्स, हम ऐसा नहीं करते फाइट, जब प्रैक्टिस होती है तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की हम कराते हैं,
1: जी
0: तो गर्ल्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है इसके इसमें खेलने के लिए और अपना आत्मरक्षा के लिए, तो ये है ही अच्छी
1: जी
0: चीज़।
1: आजकल के माँ बाप चाहते भी कि उनके बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अच्छा करें,
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: खासकर मैं देखता हूँ कि 3-4 बजे के बाद अक्सर एकेडमीज की तरफ जाते हुए देख सकते हैं हम लोग। तो स्टेडियम में क्या रूटीन रहता है बच्चों को सिखाने का?
0: कि 2 घंटा हमें सुबह दिया जाता है बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए, लेकिन थोड़ा बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम आ जाती है। आजकल जो आप देख रहे हैं कि समर टाइम चल रहा है, तो बच्चों की स्कूल्स हैं
1: जी
0: वो 6:30 से उनके स्कूल्स बसें ये आ जाती है। अगर वो मॉर्निंग में नहीं आ पाते, मैं उन्हें इवनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देती हूँ, और प्लस संडे को मैं उन्हें मॉर्निंग में बुला के उनको प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो हमारा जो रूटीन रहता है वैसे, वो मॉर्निंग में 2 आवर्स और इवनिंग में 3 आवर्स हम बच्चों को देते हैं।
1: जी तो कितने बच्चों की एक स्ट्रेंथ आपके पास रहती है?
0: एक्चुअली मेरे पास 50+ तो हो ही जाते हैं बच्चे,
1: जी
0: लेकिन उसमें से बस यही होता है कि स्टार्टिंग में तो सब बच्चा आ जाता है, लेकिन उस प्रैक्टिस को हर कोई झेल नहीं पाता।
1: जी
0: तो कुछ बच्चे उसमें या तो बोर हो जाते हैं या उनके हाथ पैरों में दर्द, इस तरीके की कोई चीज़ें आती है, फिर कुछ बच्चे जो है उसमें से छूट भी देते हैं। तो हमारे पास एटलीस्ट 30-35 चिल्ड्रंस जो है हमारे पास कंटिन्यू रहते हैं, जो कि आज मेरे पास 3 साल से लगातार है।
1: जी मतलब 30-35 बच्चों को आप आराम से एट ए टाइम कोचिंग दे
0: यस
1: सकते। तो आप अब बच्चे आपके पास कोचिंग करने आ रहे हैं, अब उनका एक डाइट का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: स्पोर्ट्स खेलते हैं तो
0: बिल्कुल
1: कुछ ना कुछ
0: बिल्कुल
1: डाइट
0: सर।
1: होगी। तो माँ बाप को भी आप बताते होंगे कि किस तरह की डाइट आपके बच्चों को देनी है। जैसे अब मैं शुरू करूँ कि आपके पास 7 या 8 साल के बच्चे से शुरुआत आप करते हैं,
0: 5 साल
1: 5 साल से,
0: जी
1: तो आप ही मान के चलिए, तो सबके लिए डाइट प्लान भी एक अलग अलग रहता होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो आजकल यही समझाना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि उनको बाहर की चीज़ों के लिए आप अवॉइड करवाइए, जो भी आजकल बाहर चूस, चॉकलेट, चिप्स वगैरह बच्चे खाते हैं, पहले तो इसे ही आप मत दीजिए,
1: जी
0: यही बहुत बड़ा टास्क है। उसके बाद जो डाइट है, तो मैं ये कहूँगी कि उसमें बच्चों को एग वगैरह इस टाइप की चीज़ें उसमें आप उसको प्लस क्या करिए। कुछ बच्चों को 2 किलो वेट कम करना है तो उनको हमें डाइट बतानी पड़ती है कि आप
1: जी
0: 2 किलो जो है एट अ टाइम आप एक दिन में नहीं कर सकते, आप वो कंटिन्यू मेरे पास प्रैक्टिस में है, उसको क्या डाइट खानी है मॉर्निंग में, क्या नहीं खाना है, तो ये चीज़ें हमने उनके पेरेंट्स को सब बताई हुई है।
1: ट्रेनिंग की बात आती है तो किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर आप देती हैं?
0: मैं हूँ क्योरगी। हमारे अब जो टाइक्वांडो है ना, वो 2 इवेंट में डिवाइड हो चुका है,
1: जी
0: एक होता है
1: हाँ
0: क्योरगी, एक होता है पुमसे। तो एक्चुअली मैंने ही क्योरगी ही खेला है, तो मैं क्योरगी ही उनको खिलाती हूँ। क्योरगी मीन्स होता है फाइट,
1: जी
0: तो फाइट के लिए हमें ज़रूरी है किक और पंच का आना। तो स्टार्टिंग में बेसिक उनका यही रहता है कि मैं उनको कैसे भी करके उनकी किक इम्प्रूव करूं, जिसमें हमें पहले उनको एयर प्रैक्टिस देनी पड़ती है, उसके बाद उनको हमने किक पैड में प्रैक्टिस करवानी होती है। जब बच्चे इस तरीके के सीख जाते हैं, फुटवर्क सीख जाते हैं, पंच करना सीख जाते हैं, गार्ड करना सीख जाते हैं, उसके बाद उनका नेक्स्ट लेवल आता है फाइट, यानी कि स्पारिंग। तो उसके बाद उन्हें फाइट प्रैक्टिस दी जाती है। जब फाइट प्रैक्टिस में कहाँ उनको मारना है, कहाँ कितना स्कोर मिलेगा, जैसे ट्रंक में मारते हैं तो कितना स्कोर मिलेगा, फेस में मारते हैं कितना स्कोर मिलेगा, ये तरीके की उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चा जब वहाँ फाइट खेलना शुरू करता है फिर उसके बाद वही उसकी वो किस तरीके से अपने को गार्ड करें, कैसे खेलें, अपने स्कोर कैसे बचाएं और स्कोर कैसे

0: निकालें, ये चीज़ें बताई जाती है।
1: क्योंकि अब नेशनल्स में आपने बच्चों को खिलाना है तो ऑब्वियसली उनको कुछ एक्सपोजर की जरूरत पड़ती है कुछ इससे, तो कुछ टूर्नामेंट भी उनको लोकल में भी खेलने पड़ते होंगे
0: जी,
1: तो इस तरह की सुविधा यहाँ पर है।
0: जी जी, टूर्नामेंट्स की हमारी पूरी सुविधा है यहाँ पे, हम लोग कराते रहते हैं हमारे स्टेडियम में भी। एक साल में करीब 2 या 3 टूर्नामेंट हम स्टेडियम में ही कराते हैं, और बाकी जैसे आपने बताया कि अभी एकेडमीज है हमारी यहाँ पे, तो हम कभी इंटर यूनिवर्सिटी कभी इस तरीके की हम लोग टूर्नामेंट्स कराते रहते हैं।
1: आपके जो बच्चे 8 जो मेडलिस्ट निकले अभी 13th ओपन नेशनल चैंपियनशिप में, तो उनमें कौन कौन से बच्चे में आप प्रतिभा देखती हैं कि आगे तक जाएंगे और हमारे देश को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं?
0: भूमिका जोशी उसमें लड़की का नाम था, सब जूनियर की है, वो करीब 10 या 11 साल की बच्ची है। उसके अंदर टैलेंट दिखता है मुझे कि वो बहुत अच्छा कर रही है।
1: आजकल तो जमाना कंडीशनिंग कोचेस का भी है, मेंटल कंडीशनिंग कोचेस का भी है, सब एक ही कोच की
0: सब एक ही कोच की जिम्मेदारी है।
1: टूर्नामेंट से पहले जब बच्चा आप ज्यादातर रिंग पे उतरता है तो आप क्या बताती है उनको, क्या कुछ करना होता है?
0: पहले तो हम यही मोटिवेट कराते हैं, आपके सामने खेलने आ रहा है, वो भी आप ही की तरह है, वो भी आप ही की तरह ट्रेनिंग करता है, उसके भी 2 हाथ 2 पैर हैं। हमारे बच्चों में पता नहीं, पहाड़ के बच्चों में मुझे लगता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है,

0: का भी है, मेंटल
1: जी
0: कंडीशनिंग कोचेस का भी है,
1: बिल्कुल,
0: सब एक ही कोच की
1: सब
0: जिम्मेदारी।
1: एक ही कोच की जिम्मेदारी है।
0: टूर्नामेंट से पहले जब बच्चा आप ज्यादातर रिंग पे उतरता है तो आप क्या बताती है उनको, क्या कुछ करना होता है?
1: पहले तो हम यही मोटिवेट कराते हैं, आपके सामने खेलने आ रहा है
0: जी
1: वो भी आप ही की तरह है, वो भी आप ही की तरह ट्रेनिंग करता है, उसके भी दो हाथ दो पैर हैं। हमारे बच्चों में पता नहीं, पहाड़ के बच्चों में मुझे लगता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो जो बच्चा खेलने से पहले डर जाता है तो हमें उन्हें मोटिवेट बहुत इनको करवाना पड़ता है कि आप डरिए नहीं, आप अपना, मैं बच्चों से ये भी नहीं कहती हूँ कि आप सिर्फ मेडल की चिंता करिए, मैं
0: जी
1: ये चाहती हूँ आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। हार जीत तो लगी रहती है,
0: जी
1: कोई इतनी वो इशू नहीं है, लेकिन आप अपना गेम तो बेस्ट दीजिए, आप अपना जो प्रैक्टिस में इतना अच्छा फाइट करते हैं आप वहां जाके उसका 50% भी नहीं दे पाते, तो इस चीज के लिए मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करना पड़ता है कि आप अपना गेम बेस्ट कर दीजिए। और खाने से पहले आपने क्या चीज खानी चाहिए, बच्चे जो होते हैं खाने से पहले डर के मारे कुछ खाते नहीं है, हमारे उसमें जो होता है ना सुबह से, सुबह 8 बजे
0: जी
1: से जैसे शुरू हो जाता है, तो बच्चे की कभी कभी रात को 8 बजे फाइट आती है, तो बच्चा जो है उतनी देर तक अपनी एनर्जी को लॉस कर लेता है और वो डर के मारे अभी खाता नहीं है कि अभी क्या पता मेरा नाम कुछ देर में आ जाएगा, इस
0: जी
1: तरीके से तो उसकी एनर्जी सुबह से शाम तक तो ऐसे ही लो हो जाती है। तो इस चीज के लिए भी हमें बोलना पड़ता है कि आपको खाना है तो जबरदस्ती आप खाइए उस चीज को,
0: तो वेट तो पहले ही हो जाते होंगे
1: नहीं
0: टूर्नामेंट
1: वेट
0: से,
1: एक दिन
0: तो
1: पहले हो
0: उसमें फिर
1: जाते हैं।
0: घबराने की कोई बात नहीं है उस
1: नहीं
0: पर।
1: नहीं
0: अगर आप बच्चा बीच में देख रहा है कि 4-5-6 घंटे वो खाली है तो उस दौरान उसको भोजन तो कराने की
1: बिल्कुल
0: जिम्मेदारी
1: बिल्कुल,
0: भी।
1: ये चीज की मुझे अभी फर्स्ट डे यहाँ देखा मैंने, बच्चे ये नहीं खा रहे थे, सेकंड डे में पेरेंट्स भी वहां पे आए हुए थे, तो मैंने उन लोगों से यही कहा बच्चों ने कल जो है जो मिस्टेक करी थी वो आज नहीं होनी चाहिए, आज इनके लिए बनाना जूस ग्लूकॉन डी जो है इलेक्ट्रॉल्स वगैरह ये चीजें जो है आप रेडी रखिए और इनको देते रहिए आप थोड़ी थोड़ी देर में।
0: टूर्नामेंट के दौरान जब
1: जी
0: आप टूर्नामेंट खेलने बच्चे जा रहे होते हैं तो उस दौरान की डाइट का क्या रहता है?
1: सबसे पहले तो हमें वेट एक दिन पहले ही वेट हमें देना पड़ता है बच्चों का, कुछ बच्चों ने वेट घटाना होता है कुछ
0: कुछ
1: बच्चों ने
0: बड़ा
1: वेट बढ़ाना होता
0: जी
1: है,
0: बिल्कुल
1: तो जिन्होंने घटाना होता है तो उनकी तो हम खैर एक दिन के लिए हम थोड़ा डाइट उनकी बंद ही कर देते हैं, उसके बाद जो है उनको फुल जो है एनर्जी लेवल जिसमें उनकी एनर्जी गेन हो जाए तो हम उनको वो सारी चीज़ें खाने के लिए बोलते हैं, और जिनको वेट बढ़ाना होता है तो वो लोग अपनी इस तरीके की बनाना और इस टाइप की चीज़ें खा लेते हैं। तो ये तो हो गया वेइंग से पहले की
0: जी
1: बात, अब आ जाती है फाइट से, तो उसमें हम उसमें लाइट जो है आपका ब्रेकफास्ट रहेगा, जो भी आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह या ब्रेड वगैरह या बनाना सबसे बेस्ट है आप वो ले सकते हैं, जिस बच्चे की फाइट आ गई तो उसके बाद वो तो उस नहीं खाएगा दिन का अगर उसका है, या फिर बिल्कुल हल्की डाइट लेगा नॉर्मल, आप इलेक्ट्रॉल पी सकते हैं उसमें, इस टाइप की हम उनकी चीज़ें बोलते हैं, स्प्राउट्स वगैरह ले सकते हैं बच्चे,
0: जी
1: लेकिन ऐसा होता है ना हम कहीं बाहर दूर गए तो हमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल भी नहीं रहती है, अभी जैसे हम
0: हाँ
1: ग्वालापार गए थे यहाँ कुछ भी प्रोवाइड नहीं हो रहा था, जो बच्चे होटल में रुके थे इस टाइप
0: अच्छा
1: की चीज़ें, और जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रुके थे तो हमने उनको यही बोला कि आप अपना लंच जो है आप अपना लेके आइएगा, इस तरीके की चीज़ें, तो बहुत सी चीज़ों का हमें प्रॉब्लम्स जो है हमें फेस करनी पड़ जाती है।
0: जी साथ ही साथ आप एक नेशनल रेफरी भी हैं। अब आप, मैं चाहूँगा कि बताएं कि कैसे आपका सफर एक खिलाड़ी से कोच, कोच से रेफरी की तरफ गया?
1: खेलते खेलते ही नेशनल रेफरी जो है हमारा कोर्स होता है, इसका सेमिनार अटेंड किया था, फर्स्ट टाइम मैंने लखनऊ में ही इसका सेमिनार जो है अपना अटेंड किया था रेफरीशिप का, हालांकि मैं उस टाइम थोड़ा सा घबराती भी थी सीनियर्स की बॉयज की फाइट में, अगर आप सेंटर रेफरी हैं तो आपका जजमेंट और आपकी जो एक्यूरेसी है वो इतनी फास्ट होनी चाहिए, नहीं तो एक रेफरी जो हमारा गेम है
0: जी
1: हमारी एक छोटी सी मिस्टेक से किसी की जान जा सकती है, अगर हमें लगा कि कहीं पे एक बंदा शार्प खेल रहा है दूसरा लूज कर रहा है, या हमने अगर धीरे बोला उसको सुनाई नहीं दिया दूसरे ने उसे उतनी देर में किक कर दिया कहीं भी, तो इसका बहुत ज़्यादा मतलब एक बच्चे की जान जा सकती है, तो इसलिए इसको रेफरी को बहुत मतलब मैं भी डर रही थी इसमें स्टार्टिंग में, तो धीरे धीरे हमारे जो सीनियर सर थे इसमें एटी राजीव सर हैं बैंगलोर से, वो इंटरनेशनल रेफरी है जो
0: जी
1: हमारा करवाते हैं, सो उन्होंने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिलाया, उनको लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ तो उन्होंने मोटिवेट किया, तो मैंने फर्स्ट सेमिनार तो वहीं पर अटेंड किया, उसके बाद मैं मणिपुर हो गया उड़ीसा हो गया, सब जूनियर इवेंट में नेशनल रेफरी के रूप में मैंने वहां पे अपना दिया, लास्ट ईयर हमारे हल्द्वानी में ही दोबारा से ये सेमिनार हुआ, क्योंकि ये अपडेट होना जरूरी
0: जी
1: रहता है,
0: हाँ
1: हमारे रूल्स चेंज हो जाते हैं बीच बीच में तो हमें भी अपडेट होना पड़ता है उस सब चीजों के लिए, 2018 से पहले जो है करीब 3-4 जगह मैं नेशनल रेफरीशिप कर चुकी हूँ।
0: जी आपको क्या लगा कि जब आपने एज ए खिलाड़ी के बाद रेफरी चुना था तो कितना मतलब कठिन जैसा लगा था कि आपको लगा कि बहुत इजी?
1: मैं कहूंगी कि सबसे अच्छा मुझे सिर्फ खेलना पसंद है, मुझे खेलना ही काफी ज्यादा पसंद है। तो मैं जब रेफरीशिप करी तो उसमें एक जगह बैठे रहो, आप ना इधर देख सकते हो ना आप उधर देख सकते हो, तो आपको बिल्कुल किसी की आप एक स्कोर से आप कोई बच्चा हार सकता है जीत सकता है, मतलब बहुत वो है।

0: तो आपको बहुत उसमें फोकस करना पड़ता है और बिल्कुल आप बंधे रहते हैं। रेफरी का अच्छा है, लेकिन एज अ प्लेयर मैं कहूंगी कि मुझे ज्यादा अच्छा लगता है।
1: जी, तो आने वाला समय आप उत्तराखंड के लिए ताइक्वांडो में कैसा देखती हैं, कोच होने के नाते मैं जानना चाहूंगा।
0: कि हमारा जो अल्मोड़ा है वो पहले से ही, शुरू से ही ताइक्वांडो में काफ़ी अच्छा रहा है। आपने सुना होगा 2004 में हमारे सुरेन भंडारी दादा सर हैं जो काफ़ी सीनियर हैं, वो बुशान से एशियन गेम्स में मेडल लेके आए थे। तो वहीं से हमारा जो है ताइक्वांडो जो है अल्मोड़ा में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। और काफ़ी टाइम बाद हमारा, फिर उसके बाद रिजल्ट थोड़ा सा डाउन हो गया था। हालांकि दौराहाट में भी हमारे यहाँ पर चलती है, उनके भी काफ़ी सर हैं हमारे विजय बहादुर सर, उनके भी बच्चे काफ़ी अच्छा करते हैं, अच्छा रिजल्ट है, हर जगह जॉब में भी निकलते हैं, अच्छा रहा है। और मैं चाहूंगी कि ऐसे ही जैसे सुरेन भंडारी सर ने हमारे अल्मोड़ा का नाम इतना रोशन किया, ऐसे ही हमारे बच्चे जो हैं आगे नाम रोशन करते रहें, यहाँ से भी हमारे बच्चे निकले, अल्मोड़ा का नाम रोशन करें।
1: तो हम ये कहेंगे कि आप इसको एक व्यवसाय के रूप में भी चुन सकते हैं, आपका कैरियर भी इसमें
0: बिल्कुल
1: बन सकता
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल
1: एज आप अगर शौकिया खेलते भी हैं तो खेल खेल से भी आप आगे भी जा सकते हैं, और महिलाओं के लिए तो खासकर बहुत अच्छा है, मैं
0: बिल्कुल
1: कहूँगा।
0: बिल्कुल
1: तो क्या
0: बिल्कुल
1: कहना चाहेंगी आप हमारी बच्चियों से कि वो इस खेल को कितना अपनाएं?
0: ये मत देखिए कि आप देश के लिए मेडल ला रहे हैं, हमारे पास आते बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन बनता कोई एक ही है। तो हम उनको एक अच्छी दिशा में एक अच्छा नागरिक बना रहे हैं। जो बच्चे बड़े होते हैं आजकल गलत संगत में जा रहे हैं, नशे की तरफ को जा रहे हैं, तो बच्चे का एक फोकस रहेगा कि हाँ मैंने ये चीज़ करनी है, मैं फिट, मुझे फिट रहना है, मुझे ये ऐसी चीज़ों में ध्यान नहीं देना है, मुझे नेशनल में मेडल लाना है। तो बच्चा जो है उधर ही की ओर अग्रसित होगा, उसका ध्यान जो है भटकेगा नहीं। और दूसरी तरफ रही बात गर्ल्स की, तो गर्ल्स के लिए जैसा आपने बताया, बच्चा जब यहाँ से स्कूलिंग में पूरा अगर अपना टाइम यहाँ सीखता है, कल के दिन में वो ताइक्वांडो की लाइन में नहीं जाके अपना कोई और कोर्स करने के लिए उसको बाहर जाना पड़ता है। तो गर्ल्स के लिए ये बहुत अच्छा है कि उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस वो रहेगी कि हाँ मुझे ताइक्वांडो आता है, मैं इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंस हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मैं अपना बचाव खुद कर सकती हूँ। बच्चा खेले, 12th तक ही खेले, अगर जिसको फिर उसके बाद उसको कोई और लाइन पकड़नी है तो वो कर सकता है।
1: ये थी वंदना सिंह, और अब बारी है अखिलेश सिंह की, जो कि अब सीनियर टीम के लिए प्रयास कर रहे हैं, और ये 13वीं जूनियर एशियन चैंपियनशिप मलेशिया में आयोजित भारत की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल विजेता रही। आपने 2023 के नेशनल चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और 24 में आपके आप सिल्वर मेडलिस्ट हैं। तो अखिलेश, बात यहीं से शुरू करते हैं, आपकी नेशनल चैंपियनशिप की जो आपने 2023 में गोल्ड जीता था, पहली बात ये आती है कि ताइक्वांडो के प्रति आपका शौक कैसे हुआ?
2: बचपन से ही हो गया था शुरू, क्योंकि मेरी दीदी जो है वो खुद नेशनल चैम्पियन और नेशनल प्लेयर रही हैं, तो उनको देख के फिर मन किया खेलने का।
1: बात आती है नेशनल चैम्पियनशिप की, तो 23 में आपने गोल्ड जीता, तो वो सफ़र आपका कैसा रहा?
2: तो नेशनल चैम्पियनशिप जो है ऑल ओवर इंडिया से सारे बच्चे आते हैं और कंपटीशन बहुत हाई रहता है, टफ रहता है, तो उसके लिए बस गेम के, अपने गेम के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियसनेस और कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लगता है, और सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है टेम्प्रेरी, पढ़ाई और जो मेन चीज़ें हैं उसी पर तुम फोकस कर सकते हो अगर आप प्लेयर और एक स्टूडेंट दोनों हो। तो आपके लिए ऐसा होता है कि आपके लिए जो लाइन है वो थोड़ी टफ़ है, जो नॉर्मल स्टूडेंट है उससे ज़्यादा टफ़ है, क्योंकि आप प्लेयर और स्टूडेंट दोनों हो, आपको दोनों मैनेज करते हुए चलना है। तो पूरे अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट और पूरी मेहनत दोनों जगह, क्योंकि दोनों चीज़ में एक्सेल करना है, अच्छे से बेस्ट देना है, तो टफ़ था नॉर्मल बच्चों से, जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं स्पोर्ट्स उनके मुकाबले बहुत टफ था, क्योंकि नेशनल चैम्पियनशिप थी। और पर बस पैशन था अंदर और ये था कि हार्डवर्क करेंगे तो सब कुछ हो सकता है, मेहनत करते गए।
1: मेहनत करते करते आपने 23 और 24 में आप सिल्वर मेडलिस्ट रहे, गोल्ड के बाद सिल्वर आया, उस दौरान परफॉर्मेंस में थोड़ी हम कहेंगे ड्रॉप रही आपकी, कोई बात नहीं, लेकिन आपका सिलेक्शन हुआ था 13th जूनियर एशियन चैंपियनशिप के लिए मलेशिया में जो आयोजित हुई थी, तो वहाँ पर आप मेडलिस्ट रहे, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट आपने देश के लिए जीता। तो ये मैं जानना चाहूँगा कैसे आपका सिलेक्शन नेशनल टीम के लिए हुआ था उस?
2: तो सबसे पहले जो था हमारा 2025 की नेशनल चैम्पियनशिप जो देहरादून में हुई थी, तो वो था एक सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया था कि जो बच्चा गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज यहाँ पे होगा तो उसके लिए आगे जाके रास्ते खुलेंगे एशियन चैम्पियनशिप के ट्रायल के लिए। तो वहाँ गए और पार्टिसिपेट किया नेशनल चैम्पियनशिप्स में और वहाँ मेडल जीता, वहाँ नेशनल चैम्पियन बना मैं उस टाइम पे। और उसके बाद वहाँ से फिर आगे जाके जूनियर एशियन चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्शन ट्रायल्स दिए, फिर वहाँ सिलेक्शन लिया, और उसके बाद कैंप मिला हमको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में,

0: कैंप लगा था 1.5 महीने का,
1: जी
0: तो फिर वहाँ ट्रेनिंग हुई इंडिया की बेस्ट कोचिज़ के साथ।
1: पहली बार जब एशियन चैंपियनशिप में खेले आप, नेशनल से विदेश में जाकर खेले, तो कैसा आपकी मनस्थिति थी, क्या लग रहा था आपको, मैं इतने बड़े मंच पे खेलने जा रहा हूँ?
0: बस ये था कि अब इतना आगे आ चुके हैं तो अब कुछ और ऑप्शन नहीं है, अपना बेस्ट देने का हमेशा से रहा है दिल में कि अब तो देश के लिए खेल रहे हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि देश के लिए खेलना है, अपना बेस्ट देना है किसी भी हालत में, चाहे कोई भी आ जाए सामने किसी भी कंट्री का।
1: वहाँ पर जब आपके कोचेज होते हैं तो एक आप जब स्थानीय स्तर पे आपके कोच होते हैं अलग होते हैं, आप जब आप एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके साथ कोचेज अलग होते हैं, तो कैसा आपको लगता है कि जो आपने कोचिंग यहाँ ली, जिन कोचेज से और इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं खेलने के लिए, वहाँ पर कोचिंग में क्या अंतर लगा आपको?
0: यही बात है जिससे हम बचपन से सीखते हैं, उनको तुम्हारी कमियों के बारे में, तुम्हारी एडवांस जो तुम जिस चीज़ में अच्छे हो उस चीज़ के बारे में पता होता है, और वो तुम्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझता है एज अ प्लेयर। जो हमारा कोच होता है उससे एक अलग बॉन्ड होता है, हमारी एक अलग रिलेशन होता है जिसने हमें बेसिक से उठाया होता है, तो उसे सब पता होता है। लेकिन जब हम बड़े लेवल पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें थोड़े अलग कोचेज़ मिलते हैं जो एडवांस होते हैं, जो ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, और एक लेवल उनका अप हो जाता है। पर उनसे फिर कुछ टाइम उनके साथ ट्रेनिंग करने के बाद उनके साथ भी थोड़ा रिलेशन अच्छा बन जाता है, क्योंकि वो काफ़ी काफ़ी सारे प्लेयर्स को वो उन्होंने पहले भी ट्रेनिंग दी होती है और उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो उन्हें पता होता है कि हर एक बच्चे को कैसे हैंडल करना है। तो बस इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, पर अपना कोच तो अपना कोच ही होता है लास्ट में।
1: जी इंटरनेशनल में आप फाइट कर रहे हैं, आप जब आप पहली बार फाइट करने गए तो क्या था, कहते हैं बटरफ्लाई इन स्टमक, कहते हैं कि
0: नर्वसनेस थी थोड़ी, वो तो हर फाइट के पहले नर्वसनेस होती होती है।
1: किसके अगेंस्ट फाइट थी आपकी?
0: मेरी पहली फाइट चाइना से थी। हाँ, और मैंने ये देखा है हमारे देश में स्पोर्ट्स की हालत थोड़ी डाउन ही चलती है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जो प्लेयर्स को काफ़ी सारी फैसिलिटीज़, क्योंकि जो और कंट्रियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे है हमसे आजकल, क्योंकि जो हम अभी सीखते हैं वो शायद से 5-10 साल पहले वो लोग करके उसे वो टेक्निक्स और जिस एडवांसमेंट के साथ आज आज हम सीख रहे हैं वो बहुत पहले सीख चुके हैं।
1: जी
0: तो उन एक उनके पास प्लस पॉइंट रहता ही रहता है उनकी फैसिलिटीज़, क्योंकि उनको अच्छी मिलती है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में भी फैसिलिटीज़ नहीं है, पर हो जाता है थोड़ा पीछे क्योंकि बेसिक लेवल पे अच्छी वो नहीं मिलती। भले ही टैलेंट हमारे देश में बहुत ज़्यादा है
1: जी
0: पर
1: मैं ये जानना चाहूंगा, जब पहली फाइट आप कर रहे थे, अपोनेंट
0: चाइना।
1: आपका चाइनीज
0: हाँ
1: था, तो आप कैसे उससे फाइट कर रहे थे, क्या लग रहा था आपको कि क्या उसमें क्या कमी है और मैं कहाँ उसके ऊपर पॉइंट ले सकता हूँ?
0: वही गेम पढ़ना था उसका, सबसे पहले खेलते गए नॉर्मली उसका गेम देखा कि वो किस तरीके से खेल रहा है, और फिर थोड़ा उसकी कमियां देखी कि कहाँ पे वो लैक कर रहा है, और फिर वहीं से स्कोर निकालने का ट्राई किया। वो अपनी लेफ्ट लेग से बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा था, वो बस एक ही लेग से खेल रहा था, तो पता चल गया था कि ये इसका माइनस पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट निकल सकता है हमको, तो वहाँ पे एडवांटेज लिया, वहाँ से पॉइंट निकाला।
1: तो ये एज ए खिलाड़ी तुम खुद जज करते हो या बीच में कोच भी इशारा करते हैं कुछ वहां पर?
0: कोच का बहुत बड़ा हाथ रहता है, क्योंकि कई बार जो पर्सन खेल रहा होता है जैसा प्लेयर, तो कई बार वो नहीं समझ पाता है कि सामने वाला कैसा खेल रहा है, तो कोच कभी कभी आंख बंद करके कोच की बात मानना भी बहुत ज़रूरी है, कि अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कोच पे भरोसा रखो, वो तुम्हें अच्छा ही गाइड करेगा और सही गाइड करेगा, क्योंकि उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है।
1: जी आप अपनी पहली फाइट जीते, आगे की फाइट जीते, तो किस तरह के अपोनेंट्स आप फेस करते गए?
0: चाइनीज़ अपोनेंट थोड़ा टफ पड़ा पहली फाइट में, सेकंड फाइट मेरी इजी रही जो सऊदी अरेबिया के साथ थी, थर्ड फाइट मेरी कोरिया के साथ हुई थी जिसमें मैं हार गया था,
1: अच्छा।
0: कोरिया से मैं हार गया था।
1: कोरियन वाले में ऐसी क्या खासियत लगी जो आपको लगा कि आप कहाँ लैग करें?
0: कोरियन के साथ मैंने देखा, सबसे पहले तो उसके पास एक एडवांटेज था हाइट का, वो मुझसे हाइट में बड़ा था,
1: अच्छा।
0: और उसके पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, स्ट्रेंथ में भी बहुत ज़्यादा, हाइट में भी बहुत ज़्यादा, तो बस यही प्लस पॉइंट था उसका।
1: टेक्निक वाइज
0: टेक्निक वाइज
1: आप
0: मैं कहूँगा
1: टैकल कर रहे थे
0: कि
1: मतलब उनको?
0: हाँ, टेक्निक वाइज मॉडरेट, बस जो नेचुरल वो स्ट्रेंथ थी और वो रॉ स्ट्रेंथ वो उस पर अब बहुत अच्छी थी, तो वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गई।
1: उसके बाद अब आगे आप क्या सोचते हो, आपने क्या करना है?
0: अभी नेक्स्ट मेरा सोचा है सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप्स को टारगेट कर रहा हूँ, उसके लिए वर्क कर रहा हूँ, खुद पर बेहतर कर रहा हूँ हर दिन खुद को। और आजकल ये तो है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है गेम्स में, तुम्हें आर्मी सर्विसेज, आर्मी और काफ़ी सारी रेलवे इन सब चीज़ों में जॉब मिल जाती है।

0: जाती है इजीली.
1: जी जी
0: हाँ तो उसके साथ तुम अपना गेम भी कंटिन्यू कर सकते हो एक तरीके
1: जी
0: से।
1: तो अभी फिलहाल जो क्या तैयारी चल रही है आपकी?
0: फिलहाल तो नेशनल चैम्पियनशिप के लिए तो अब कंपटीशन और डबल है, तो उसके लिए डबल मेहनत भी करनी पड़ेगी, तो बस वही चल रहा है।
1: तो कितना डिफरेंस लग रहा है आपको जूनियर से सीनियर में? अब आप शिफ्ट कर रहे हो तो यहाँ पर किस कोच के अंडर में यहाँ पे कोच
0: मैं
1: किया
0: विक्रम
1: जाए?
0: भंडारी सर।
1: विक्रम भंडारी जी के अंडर में कोचिंग कर रहे हैं, तो किस तरह की? उन्होंने कुछ ना कुछ तो सीनियर्स लेवल पे जो कोचिंग होती है जूनियर से काफ़ी डिफरेंट होती है, तो क्या चीज़ें आपको अलग से सिखाई जा रही हैं?
0: अब जैसे सीनियर एक अलग ही लेवल है, उसका लेवल थोड़ा टफ डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी खेलते हैं, तो एक तो वो हो गया। टेक्निकल ट्रेनिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, थोड़ी टेक्निक सुधारनी पड़ती हैं और अपने आप को और पॉलिश करना पड़ता है, अपने जो कमियां होती है उनको ट्राई करना पड़ता है कि इसको किसी ना किसी तरीके से कम करें और सुधारें, कोई कमी ना रह जाए हमारे अंदर।
1: अच्छा, स्टेमिना भी इसमें चाहिए होता है आपको, उतनी देर रिंग में सस्टेन करना है, तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पे करते हो?
0: स्टैमिना बिल्ड करने के लिए अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग होती है, हमारी एंड्योरेंस ट्रेनिंग होती है जो मेनली स्प्रिंट्स, रनिंग्स, लॉन्ग रनिंग हम लोग करते हैं जिससे स्टैमिना बिल्ड होता है।
1: 3 जून को विश्व साइकिलिंग दिवस आयोजन किया गया। माउंटेन बाइकिंग के बारे में अपने अनुभव को साझा किया हमारी प्रतिनिधि गीता कनवाल से भरत शाह ने।
2: आप काफी समय से साइकिलिंग कर रहे हैं और कई सारे ट्रैक्स आपने साइकिल से किए हैं, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपके मन में साइकिलिंग को अपने जीवन में अपनाने का विचार कैसे आया?
3: ये मेरे बचपन से जुड़ा है और मेरा पहले साइकिलिंग में कोई शौक ऐसा नहीं था। मैं जब झांसी हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ने के लिए गया था तो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे घर से करीबन 8-9 किलोमीटर दूर स्कूल हुआ करता था, तो मुझे वहां साइकिल से ही जाना पड़ता था, इसके लिए मैंने साइकिल सीखी थी। और उसके बाद मैं नैनीताल आ गया आगे की एजुकेशन के लिए, तो साइकिल लगभग छूट गई थी। फिर बाद में मैं एडवेंचर से जुड़ा तो मैंने ट्रैकिंग का काम किया, लेकिन पिछले 12-13 सालों में साइकिल में एक बड़ा परिवर्तन आया कि पहाड़ों में लोग साइकिल चलाने लगे। हम सोचते थे कि लोग प्लेन्स में ही साइकिल चलाते हैं,
2: जी
3: लेकिन पहाड़ों में गियर साइकिल का प्रयोग होने लगा। तो तब मैंने पहली बार 10-12 साल पहले गियर साइकिल चलाने की शुरुआत की, और फिर एक बार जब मैं शुरू हुआ तो फिर रुका नहीं। फिर मैं नए नए तरीके से साइकिल के ट्रेल देखने लगा और साइकिल से पहाड़ों को घूमने लगा।
2: इसके अलावा सर, साइकिलिंग के दौरान आपके खट्टे मीठे अनुभवों के बारे में जानना चाहेंगे और आपने अभी तक साइकिलिंग के माध्यम से कहाँ कहाँ तक की यात्राएं की हैं?
3: अनुभव तो साइकिल में, जब आप घर से निकल जाओ तो बहुत प्रकृति के साथ आपको रहना पड़ता है,
2: जी
3: तो एक तरीके से जैसे फिल्म चेंज होती है उस तरीके से पूरा आपको चेंज एटमॉस्फेयर मिलता है, और नई नई चीजों से आपको मतलब आपको देखने को मिलती हैं, नए लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है और नए स्ट्रगल आपको दिखलाई देते हैं। तो मेरी यात्राओं में जो मैंने शुरुआत की पहाड़ों में, तो आसपास में ही पहले 5-10 किलोमीटर मैंने सफर शुरू किया, जैसे अल्मोड़ा से कसार देवी का। तब मुझे बड़ी हिचक होती थी कि अगर मैं चढ़ाई में कहीं रुक गया तो लोग क्या कहेंगे,
2: जी
3: और फिर धीरे धीरे जब मुझे प्रॉपर गियर साइकिलिंग का तजुर्बा हो गया तो मैंने काफी इधर जो टूर्नामेंट प्रोग्राम्स होते हैं, इनके साइकिल इवेंट्स होते हैं, उनमें मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। उसके बाद मैं गोवा भी गया, नासिक भी गया, और बॉम्बे में भी मैंने पार्टिसिपेट किया। और इसके अलावा मैंने पहाड़ों में जो जर्नी की, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उत्तराखंड के पहाड़ों में सबसे ज्यादा है, तो मैंने बद्रीनाथ की साइकिल यात्रा की, माणा पास मैंने किया साइकिल से, हिमाचल में मैंने काफी साइकिलिंग की और वहां पे मुझे प्राइज भी मिले, और इस तरह से मेरी साइकिल जर्नी काफी अच्छी रही और अभी भी मैं कंटिन्यू साइकिलिंग करता हूँ पहाड़ों को देखने के।
2: आप कई वर्षों से साइकिलिंग कर रहे हैं, तो साइकिलिंग शुरू करने से पहले और उसके बाद आपने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में किस तरह का परिवर्तन देखा?
3: स्वास्थ्य तो साइकिलिंग से बहुत ही बढ़िया मैंने फील किया। सबसे बड़ी चीज जो मुझे साइकिलिंग जर्नी में महसूस हुई कि जब आप पहाड़ों में साइकिलिंग करते हैं तो आपको सिर्फ अपने सांसों की आवाज सुनाई देती है, मतलब आप अपने आप को फील कर सकते हैं, और ये एक तरीके से स्पिरिचुअल फीलिंग भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वैसे तो अधिकतर इंसान जो है जब भी कहीं बैठता है और कुछ पढ़ता है, लिखता है या कहीं कुछ भी कर रहा होता है तो उसके दिमाग में कई तरह के विचार आते रहते हैं,
2: जी
3: लेकिन जब वो साइकिलिंग करता है तो उसको ये लगता है कि उसको उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, वो चढ़ाई चढ़नी है या वो अचीवमेंट करना है वहां तक जाने का, तो उसको बाकी कोई ख्याल नहीं आते। तो कहते हैं जो स्पिरिचुअलिज्म में थॉटलेसनेस, अपने आप को समझना, अपने आप को जानना, अपनी धड़कनों को समझना, ये मुझे लगता है साइकिलिंग एक्टिविटी में सबसे ज्यादा होता है और यही मैंने महसूस।
2: आप हमारे श्रोताओं को साइकिलिंग को अपने दैनिक जीवन में अपनाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: मुझे तो ये लगता है कि साइकिल

0: को दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए। इससे आपका फिटनेस लेवल अच्छा रहेगा, हेल्दी फील करेंगे आप अपने आप को साइकिलिंग करके। और यदि आप हफ्ते में आपके पास समय नहीं है तो आप कम से कम वीकेंड में या संडे के दिन आप एक साइकिल राइड छोटी जरूर करें, जिससे कि एक परिवर्तन आपको खुद अपने अंदर महसूस होगा। यही संदेश दूंगा कि सभी को साइकिल चलानी चाहिए और स्वस्थ रहने की ओर अग्रसर होना चाहिए। और सभी स्वस्थ रहें, साइकिल चलाएं।
1: तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम से अपने मित्र संजय जोशी को अनुमति दें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नए अंक के साथ इसी चैनल इसी फ्रीक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग हमीर में गाया ख्याल, गायक कलाकार पंडित नारायण राव व्यास।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राग हमीर में गाया ख्याल। गायक कलाकार थे पंडित नारायण राव व्यास। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 11 बजने वाले हैं। समाचारों के लिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43%

0: बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
1: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।